0: जबकि किसान अपना परिचय देने से डरता है। मेरा परिवार एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 30-40 लोगों के रहने की व्यवस्था है, और एक वर्ष में मैं मोटे तौर पर आपको बताऊं तो मैं अपने परिवार के साथ 8-10 हजार लोगों से मिलता हूँ, और बाहर के आने जाने में मैं 40-50 हजार लोगों से मिलता हूँ। और मेरी जिंदगी का मैंने कभी डाटा नहीं लिया, लेकिन लाखों लोगों तक मैंने अपनी जीने को देखा है, और मैं भी उनके दिल में बसता हूँ और वो भी मेरे दिल में बसते हैं। इससे बढ़िया और दौलत की जरूरत क्या है।
1: ये आपने एक ऐसे जीवन का हमारे सामने चित्रांकन किया है जिस जीवन के लिए हर कोई तरसेगा, कि कई कई कई हजारों लोगों के दिल में वो बसे और उनके दिल में वो हजारों लोगों के प्रति सम्मान, प्रेम, स्नेह, सौहार्द्र आदि ये सारे अच्छे अच्छे गुण उनके लिए हो। ये एक बहुत उत्तम जीवन है जो हर एक का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि हम आधुनिकता में इतना ज्यादा खो गए कि हमने हमारे संबंधों को बैक सीट पे रख दिया गाड़ी के, और गाड़ी की फ्रंट सीट को हमने उपलब्धियां और तरक्की और पैसा इन चीजों पे लगा दिया, तो हमारा जो पूरा ध्यान था वो उस पे चला गया। श्रोता साथियों, मैं समझता हूँ जो आज भारत भूषण जी ने हमारे साथ शेयर किया बात, कि हमें प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध है, अपने परिवार के साथ जो हमारा संबंध है, स्वयं के साथ जो हमारा संबंध है, ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, उसको हमने बहुत समय तक पीछे वाली सीट पे बैठा रखा था। आज उसे सामने की सीट पे लाने की आवश्यकता है, बाजू की सीट में बैठाने की आवश्यकता, और कहीं कहीं पर उसको ही ड्राइवर बनाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कई जगह पे जहां पर बिल्कुल, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि अकेले मुझसे गाड़ी नहीं घूम रही है लेकिन परिवार का साथ चाहिए, अकेले मुझसे गाड़ी घूम नहीं रही है तो किसी का धक्का चाहिए। तो ऐसे में अगर भारत जी मैं आपको पूछूं कि आपकी इस जर्नी में, आपके इस लंबे अरसे के एक अनुभव से ओतप्रोत यात्रा में आप कई लोगों से मिले, कई किसानों से मिले, कईयों के जीवन में आपने बदलाव देखा, कईयों के समझ में परिवर्तन होते देखा, तो आपने कई घटनाओं को देखा है, कई कहानियों को सुना है, क्या आपके स्मृति पटल से आप एक या दो ऐसे किस्से हमारे सामने पेश करेंगे जो कि आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे यात्रा का एक अभूतपूर्व अनुभव था, इस यात्रा का ये एक चमकता अनुभव था, ये एक गौरवान्वित अनुभव था, एक या दो किस्से ऐसे।
0: मैं एक घटना सुनाता हूँ छोटी सी। मैं कई बार ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करता रहता हूँ। एक बार मैं गाजियाबाद एक लेक्चर देने गया था राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में, तो मैं जिस रिक्शा में बैठा था, जो बच्चा उस रिक्शा को चला रहा था, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी है, क्योंकि मैं उसके कपड़े देखकर मुझे लगा कि ये पढ़ा हुआ है। तो उसने कहा कि मैं MA पास हूं। तो मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, रिक्शा रोको। तो उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूं और तुम MA हो। मैं रिक्शा चलाऊंगे, तुम बैठ दो। मैंने उससे प्यार भाव में कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी ठीक हूँ, क्योंकि मैं पैदल चलना नहीं चाहता लेकिन रिक्शा तो चलाऊंगा, तो मैं रिक्शा चलाऊंगा, तुम बैठो। तो उसने कहा नहीं, तुम मेरे से उम्र में बड़े हो, तो मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, आप बैठे रहो, मैं चलाऊंगा। हमारी ऐसी बात होती रही, और इतने में ही एक भाव ये जग गया कि मैं जब उतर के चला तो मैं अपना बैग भूल गया। मेरे पास एक बैग था, उसमें सामान तो कुछ नहीं था, 2-4 कागज पड़े थे, पैसा भी नहीं था। वो बैग मैं उस रक्षा में छूट गया, वो भी बातों में चला गया। वो थोड़े बहुत कहीं आगे पहुंचकर उसके ध्यान आया होगा, मेरे ध्यान आया नहीं। मैं 2 घंटे लेक्चर देने के बाद में मुझे बैग ध्यान में आया, तो मैंने सोचा बैग कहीं छूट गया, तो मैंने सोचा रिक्शा में छूट गया होगा। तो कोई बात नहीं, मैं बेफिक्र होकर मुझे वहीं से जहां से रिक्शा दिया था वहीं जाकर मुझे बस पकड़नी थी। तो भाई जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो बच्चा 3 घंटे तक वहीं खड़ा रहा उस बैग को लेकर, उसने बैग भी खोलकर नहीं देखा। मैंने उससे पूछा, उसने देखते ही मुझे आवाज लगाई, मैंने उससे पूछा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बोले आपका बैग छूट गया था। मैं उसको सीने से लगाया और उसको बताया कि इस बैग में तो कुछ ज्यादा था नहीं, तुम इसको देख लेते चले जाते देखे। बोले नहीं, मैं आपके साथ थोड़ी देर जिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा धर्म बनता है, आज पैसे नहीं कमाऊंगा तो कोई बात नहीं।

0: लेकिन आप जैसे लोग कहाँ मिलेंगे? तो मैंने भी कहा कि भाई आप जैसे लोग भी कहाँ मिलेंगे, आप भी तो बहुत अच्छे हो। घटना मुझे इसलिए याद आ रही है कि मैंने धरती पर हर व्यक्ति को ऐसे ही देखा। यदि हम अंदर की चेतना को जगा दें तो अंदर से आदमी इतना ही सुंदर है, हर व्यक्ति सुंदर है। उस व्यक्ति की सुंदरता को यदि हम सही ढंग से देख लें तो वो इसी जिम्मेदारी के साथ जीना चाहता है, कोई बड़ी बात नहीं। 3 घंटे का शब्द
1: ये जो सुंदरता आपने ढूंढी उस व्यक्ति में और उस व्यक्ति को अपनी सुंदरता से रूबरू होने का एक जो मौका दिया, शायद यही कला आप में इतनी खूब भगवान ने भरी है कि इस कला की वजह से आप लोगों के जीवन में बदलाव ला पा रहे हैं। और इस कला का ही जो तेज है वो इतना चमकदार है कि भारत सरकार ने 2019 में आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। तो ये सम्मान केवल आपका सम्मान नहीं है, पूरे भारत का सम्मान है। तो इसलिए आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पद्मश्री सम्मान के लिए।
0: भाई जी, दूसरी घटना ये भी है कि मैं भी आपको हृदय से साधुवाद करता हूँ, पर दूसरी घटना ये भी है कि पद्मश्री पुरस्कार के बाद मेरे सर पर कोई बोझ नहीं आया, मेरे अंदर से जिम्मेदारी का भाव जाग गया। हाँ, ये भी एक बड़ी ये भी सुखद घटना है। कई बार सम्मान मिलते हैं तो आवेश आता। तो मैं देखा कि अभी बच्चों ने ये मेरे सारे जो मुझको अवार्ड मिलते रहे पूरा बन रखा। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि इनकी कोई जरूरत है। पहले तो ये बोरी में भरे पड़े रहे, मुझे लगता था कोई काम की चीज तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ जिंदगी जुड़ी हुई है, जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे भी बात करके और आप जिस तरीके से समीक्षा कर रहे हैं बातों की, मैं आपको भी हृदय से साधुवाद करना चाहता हूं कि हमारा कहीं मिलना किसी बड़े काम के लिए हुआ है। और मैं चाहूंगा कि यौगिक कृषि के लिए, हाँ, यौगिक कृषि में उसकी तात्विक संरचना, उसका तार्किक स्वरूप जिसको लॉजिकल बोलते हैं, और उसका एप्लीकेबल डिजाइन किस तरीके से वो किसानों के लिए बहुत सरल हो जाएगी, उस पर कभी भी आप चाहेंगे तो मैं माउंट आबू आ जाऊंगा, क्योंकि एक बार सबके दर्शन भी हो जाएंगे।
1: और जब बाहर से आपका घर है, हम सभी आबू निवासी आपको दिल से स्वागत करते हैं। मैं समझता हूँ जिस दिन आप आएंगे, हमारे कई रेडियो मधुबन के श्रोता साथी जो सुन रहे हैं आपसे रूबरू आके मिलना चाहेंगे। और क्या पता हमारे कई श्रोता साथी ऐसे भी होंगे जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश जा रहे होंगे और बीटा एक बार आपके घर होकर के आए। लेकिन साथियों, मैं आज वीडियो में देख पा रहा हूँ, आप सुन पाएंगे, भारत भूषण जी का जो कमरा जहाँ वो बैठे हुए हैं वहां पर आपको ऐसा लगेगा आप एक सोने के महल में पहुंच गए, क्योंकि चारों तरफ कई स्वर्ण पदक और पुरस्कार सजे हुए हैं। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं दिए गए हैं दोस्तों, ये पुरस्कार, ये सम्मान एक विचारधारा को दिए गए हैं, एक ऐसी विचारधारा को दिए गए हैं जो विचारधारा निस्वार्थ भाव से गंगा की तरफ बह रही है और एक शहर से दूसरे गांव से एक जिले से दूसरे प्रांत को अपनी सींचने की क्षमता से शक्तिशाली बनाते हुए आगे बढ़ रही है। तो यही जो एक जीवन की पद्धति है कि हम जीवन जिए, लेकिन जीते जीते अपने आसपास के लोगों के अंदर किन भावों का हम संचार कर रहे हैं, किन संवेदनाओं को हम सींच रहे हैं, किस प्रकार के मूल्यों का हम रोपण कर रहे हैं, ये हमारे जीवन का एक स्वाभाविक या प्राकृतिक स्वभाव होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आज साधनों की वजह से या बाहिर्मुखता की वजह से हम खोते गए हैं। बट भारत भूषण जी, क्या अभी बहुत लेट हो गए हैं हम? क्या अभी भी हमारे पास ऐसा मौका है कि हम चीजों को बदल सकते हैं?
0: मैं तो अभी ये विचार कर रहा हूँ अपने मन में कि मेरा वो कौन सा दिन होगा जब मेरा सौभाग्य होगा कि मैं माउंट आबू जाऊंगा, क्योंकि मैं माउंट आबू के पास से कई बार लौट आया हूँ। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां से वापस आने के बारे में कहीं मुझे अपनी तैयारी करनी थी, कोई अपनी और अच्छी तैयारी करनी थी। आज आपसे चर्चा हुई है, आप विदेश से वापस आ जाएंगे और मैं भी अपना इरादा बनाऊंगा और उस सौभाग्यशाली समय में मिलकर पूरे देश और दुनिया के लिए एक अच्छी रचना के लिए हम लोग मिलेंगे, ऐसा मुझे अभी भी मेरे मन में एक विचार आ।
1: लेकिन भारत भूषण जी, आप जब पूरे भारत में ट्रैवल करते हैं, इससे पहले कि मैं सवाल पे जाऊं, मैं हमारे श्रोता साथियों को ये कहना चाहूंगा कि भारत जी आपके निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए इस एपिसोड को सुनने के बाद आप जरूर हमें फोन कीजिएगा और रेडियो मधुबन पे अपने अनुभव शेयर कीजिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और भारत भूषण जी के लिए न्योता जरूर अपनी तरफ से रिकॉर्ड करवाइएगा, क्योंकि हम चाहते कि आपके बुलावे पे भारत भूषण जी आबू आए और हम सबसे मिले। खैर, जो मैं सवाल पूछ रहा था भारत जी, वो ये कि भारत भूषण त्यागी के रूप में आपने भारत का खूब भ्रमण किया है, आप कई भारत के प्रांतों में गए हैं, कई गांवों में गए हैं, कई शहरों में गए हैं, हर प्रकार के लोगों से मिले हैं, ना केवल किसान वर्ग, लेकिन आपने कहा राजनेताओं से मिले हैं, नीतिकारों से मिले हैं, युवाओं से मिले हैं, माताओं बहनों महिलाओं से मिले हैं, आपने हर वर्ग को देखा है, और भारत को आज के जमाने में सबसे युवा देशों में से एक देश माना जाता है। आपको ऐसा क्या लगता है, कौन सी, मान लीजिए आपके पास एक जादू की छड़ी होती, तो आप वो जादू की छड़ी घुमा करके कौन सी एक बात आज के भारत में करना चाहते हैं या बदलाव करना चाहते हैं या लोगों में देखना चाहते हैं, जिससे आपको लगता है कि भारत की रूपरेखा बदल सकती है?
0: कृषि को व्यवसायिक रूप में प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना सिखा दे, बस व्यापार की प्रवृत्ति हट जाए और कृषि एक व्यवसाय है जो समझदारी और श्रम के नियोजन से पूरा होगा। ये इतनी बड़ी वास्तविकता है कि यदि हम पूरी दुनिया को इसका संदेश दे दें, तो बात केवल भारत के किसानों की नहीं, पूरी दुनिया में त्राहिमाम है। आज भाई जी मैं देख रहा हूं आर्थिक असंतुलन की इतनी बड़ी पीड़ा है दुनिया को कि वर्चस्व की लड़ाई में पैसे का इतना बड़ा खेल है और लीनियर इकोनॉमी में सर्कुलर इकोनॉमी की भूख सबकी बढ़ रही है, क्योंकि सबको पता है कि जिस दिन युद्ध होंगे उस दिन छीन झपट होगी, विरोध हो जाएंगे, आदमी आदमी का शोषण कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत छोटा सा एक सूत्र है कि मानसिक चेतना में गुणात्मक परिवर्तन के लिए आदमी को बाजार से हटाकर प्रकृति की ओर ले चलो, और उसके लिए पूरे देश में एक ही कार्यक्रम है कि हमको प्रशिक्षण व्यवस्था में प्रकृति की व्यवस्था को केंद्र में लाने की जरूरत है। अभी सारी चीजें बाजार की भेंट चढ़ गई है, आप बिना पैसे के कोई आदमी ना बात सुनने को तैयार है ना बोलने को तैयार है, और पैसे के साथ किसी का जीना पूरा नहीं हुआ। पैसा जिंदगी की केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, मानसिक चेतना को तृप्त करने का कोई भी अंश पैसे के अंदर नहीं होता, वो मूल्यों से पूरा होता है, संबंध से पूरा होता है, जीने की व्यवस्था से पूरा होता है। मैं यदि आपको मित्र के रूप में स्वीकार लेता हूं तो मुझे दुनिया की एक बहुत बड़ी पूंजी मिल जाती है जिसको बाजार में नहीं खरीद सकता, वो बाजार में नहीं मिलती। तो बहुत छोटा सा सूत्र है कि मानसिक चेतना में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए आदमी की मानसिकता में बाजार को हटाकर प्रकृति व्यवस्था को स्थापित किया जाए, बस इतना सा काम है, छोटा सा काम।
1: ये आपने कहा छोटा सा काम, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो मेहनत है वो मानसिकता के बदलाव में ही लगता है। ऊपर ऊपर का बदलाव लोग जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अंदर के बदलाव की तो श्रम ज्यादा है और ज्ञान कम है तो लोग भटकते ज्यादा हैं। लेकिन यही वो रास्ता है जो सही मायने में लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल बदलाव लाता है, एक ऐसा परिवर्तन लाता है जो कि बहुत लंबे समय तक समाज को पकड़ के रखता है, उसको ढहने नहीं देता। भारत जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप भारत के अलग अलग जगहों में गए, सब जगह में एक खासियत होती है, लोगों में खासियत होती है, एक प्रांत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग थोड़े बिहार से अलग हैं, बिहार के लोग थोड़े बंगाल से अलग हैं, बंगाल के लोग आसाम से अलग हैं, और इस तरीके से अगर आप, मैं तो एक राज्य के बाद एक एक राज्य को मैं पकड़ता जा रहा हूं, तो बदलाव मैं बोलते समय ही अनुभव कर रहा हूं। ऐसे ही जैसे हम दोहे में सुनते हैं कि घाट घाट में बदले पानी या कोस कोस में बदले पानी चार कोस पे बानी, तो भाषा भी बदल रही है, पानी भी बदल रहा है, भूमि की संरचना में भी बदलाव आ रहा है, हर चीज में चेंज है। ऐसे में कोई एक चीज आपको ऐसी लगती है जो पूरे भारत को एक बनाती है?
0: सारी दुनिया की, मैं भारत की बात नहीं कह रहा, सारी दुनिया में मनुष्य की चाहना एक ही है, हर आदमी सुखी से जीना है, खुशहाली से जीना।
1: लेकिन फिर भी अगर भारत की विशेषता अगर देखनी हो, कौन सी एक वो विशेषता आपने पाई जो पूरे भारत को जोड़ती है? अलग तो बहुत चीजें करती हैं, लेकिन जोड़ने वाली विशेषता कौन सी है आपके तरीके से?
0: जोड़ने वाली चीज में जब मानसिक स्वभाव में एक रूपता आ जाएगी, यही जोड़ता है। स्वभाव क्या है? निरंतर सुख के भाव में जीना, ये जो आदमी की मौलिक स्वीकृति है, यदि हम इसको छेड़ते हैं तो वो एक जैसा ही है। तो आदमी की मानसिकता का स्वरूप एक जैसा है, शरीर का भेद है। वाणी बदलेगी, पानी बदलेगा, शरीर बदलेगा, पर मन नहीं बदलता। मानसिक चेतना का स्वरूप इतना ही है, वो जो भी सोचता है वो केवल सुख के लिए सोचता है, खुशी के लिए सोचता है, और अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचता है। फर्क ये है कि वो सुख को पहचान नहीं पाया, वो सही क्या है उसको पहचान नहीं पाया। तो इसमें भी दोष और जिम्मेदारी अपनी आता है, अपनी ओर ही आता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो मुझे तो सारी दुनिया का आदमी एक जैसा लगता है, और वो एक ही है। उसी एक रूपता में ही अपनी जिम्मेदारी ये है कि हम उनकी मानसिकता को किस तरीके से इस प्रकृति के वैभव के साथ जोड़ दें, वो अपने स्वरूप को भी देख ले। क्योंकि हर आदमी अपने में पूरा है। ये आदमी जो है ये ईश्वर की कृति है, ये प्रकृति का वैभव है। ये आदमी को आदमी ने बनाया ऐसा कुछ है नहीं, ये तो एक प्रकृति के वैभव में आदमी की उत्पत्ति है।
1: दोस्तों आपने सुना भारत जी ने कितनी अच्छी बात कही कि प्रकृति का वैभव ये शरीर, और इसमें बैठा जो प्राणी है, जो चैतन्य सत्ता है, वो परमात्मा का अंश। इतना सुंदर हम सब, मैं आप, हम सब इतने सुंदर अपने आप में है। बस जरूरत है अपने सुंदरता को अनुभव करने की और उसको जीने की। एपिसोड के बिल्कुल शुरुआत में भारत भूषण जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरे माता पिता ने मुझे सदा से यही शिक्षा दी है कि सुख से जीना है, सुख के लिए जीने के लिए नहीं कहा था, सुख से जीने के लिए कहा था। और सुख के लिए तो सब जीते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सुख से जीना सीख जाता है वो सदा सुखी होता है। और सुख से जीना मतलब क्या? यही खुद से खुद को जानना, खुद के साथ सुखी रहना, और अपने अस्तित्व से अपने आसपास के देश में, अपने आसपास के परिवेश में एक शुभ परिवर्तन का संचार करना, जिसकी शुरुआत भारत भूषण जी ने की और आज तक भी वो करते आए हैं। उन्होंने कई कृषकों के जीवन में बदलाव लाया, और आप सुन ही रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि एक एपिसोड तो भारत भूषण जी के साथ बहुत कम है, जहां पर हम उनसे उनके इतने सारे अनुभवों के खजाने को लूट सके, मैं ऐसा कहूंगा। लेकिन भारत जी ने जो बहुत मौलिक सी चार बातें बताई, जो प्राकृतिक नियमों में से प्रमुख चार नियम है, जिनका पालन करने से या जिनको ध्यान में रख करके अगर नीतियों का निर्माण किया जाए, या अगर आप किसान हैं और आप अपने कृषि पे ध्यान देना चाहते हैं, इन चार बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके किसानी में भी परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, और सबसे बड़ी बात आपके परिवेश में परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि जो मानसिकता का बदलाव हुआ इन चार नियमों को पकड़ने की वजह से, उस ये चार नियम समझिए दोस्तों ऐसे कि जैसे पारस मणि है। इन चार नियमों को आपने अगर पकड़ लिया तो आपकी मानसिकता भी सोने जैसी निखर जाएगी, आपकी धरा भूमि जहां पर आप खेती कर रहे हैं वो भी निखर जाएगी, सोने की उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी, और जो फसल आएगा वो विषैला अन्न नहीं होगा, वो अगेन सोने की सुनहरी अन्न से आपका भंडार भरा होगा। और जो देश इस प्रकार के अन्न को स्वीकार करता है वो सोने की चिड़िया बनकर के उड़ सकता है। आज के यशस्वी भारत कार्यक्रम में हमारे साथ भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं, और अभी हम भारत भूषण जी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे, जहां पर हम आपको एक सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आपको एक शब्द में देना होगा। और मैं समझता हूँ भारत जी, आप जितने विद्वान, अनुभवी और मनीषी व्यक्ति के लिए ये तो बहुत आसान सा खेल होगा। आप रेडी हैं?
0: जी।
1: चलिए, तो पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: सेवा एक जिम्मेदारी है, संबंध पूर्वक जीने।
1: बहुत बढ़िया, मतलब ये तो बहुत गहरा सेंटेंस है, इस पे तो बहुत विचार किया जा सकता है। दूसरा सवाल, शांति क्या है?
0: परिवार में संबंधों में विश्वास ही शांति।
1: वाओ, ट्रस्ट, निष्ठा, परिवार में संबंधों में जो
0: विश्वास है,
1: वही शांति है। बहुत सुंदर। सुख क्या है?
0: निरंतर स्वीकृति का भाव ही सुख है।
1: एक्सेप्टेंस, निरंतर स्वीकृति, बहुत सुंदर। श्रम क्या है?
0: शरीर में प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था के साथ जुड़ने का नियम है।
1: और आराम क्या है?
0: आराम तृप्ति ही आराम, मानसिक तृप्ति ही आराम।
1: बहुत सुंदर कहा कि प्रकृति के नियमों के साथ शरीर के अंदर जो उत्पादन क्षमता है वो श्रम है और तृप्ति जो है वो आराम है। बहुत सुंदर। तो फिर अध्यात्म क्या है?
0: आत्मबोध की साधना।
1: कृषि क्या है?
0: प्रयोजन पूर्वक अपनी आवश्यकताओं को समझकर उत्पादन करना।
1: बहुत सुंदर। न्याय क्या है?
0: संबंधों में समानता के भाव से जीना।
1: अन्याय क्या है?
0: असमानता ही अन्याय है।
1: बहुत सुंदर। प्रकृति कौन है?
0: प्रकृति स्वयं स्फूर्त व्यवस्था है, व्यापक सत्ता अथवा परमात्मा में संपूर्ण प्रकृति संप्रक्त होने के कारण वह स्वयं में ही स्वयं स्फूर्त है, इसलिए वो व्यवस्था के रूप में।
1: भारत क्या है?
0: भारत एक भूखंड है, संस्कृति के रूप में वो संपूर्ण विश्व है।
1: भारत को यशस्वी बनाने वाली एक चीज?
0: मानसिक चेतना में गुणात्मक परिवर्तन, जीव चेतना से मानवीय चेतना की ओर उदय, यही संसार चाह रहा है, यही भारत का गुरुत्व भी है।
1: आखिरी सवाल, भारत भूषण त्यागी कौन है?
0: ये सवाल मेरे लिए है, मैं व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए एक इकाई हूँ जो मानव के रूप में हूँ और परस्परता में मुराद मेरा संपूर्ण प्रकृति के साथ एक संबंध है।
1: ये तो एक वाक्य में आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी परिभाषा रखी, लेकिन एक शब्द में अगर कहना हो भारत भूषण त्यागी कौन है तो क्या कहेंगे?
0: मैं एक मानवीय चेतना हूँ।
1: बहुत सुंदर। मुझे लगता है आपको भी ये गेम खेल करके मजा आया होगा, या क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा है आपसे सवाल पूछने में, और कई इतने गहरे और इतने तथ्यपूर्ण जवाब आपने दिए जिनको की सोचना और जिस पे विचार चलना अनिवार्य हो जाता है। भारत जी, जाते जाते अगर आप हमारे श्रोता साथियों को, पूरे भारत को, अगर कोई एक ऐसा सुझाव या एक मैसेज देना चाहेंगे तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मेरे पास संदेश तो नहीं है पर जिज्ञासा जरूर है। जिज्ञासा यही है कि मैं कभी आपके दर्शन कर सकूं, आपके साथ मिलकर अपनी जिंदगी का कोई सहयोग ले सकूं, दे सकूं, ताकि हम भारत के ये यशस्वी भारत कार्यक्रम की श्रृंखला को और बहुत ज्यादा मजबूत कर सकें, और मैं अपने हृदय से आप सभी को शुभकामनाएं करता हूं।
1: साथियों, भारत जी ने आज हमारे साथ एक लंबा समय अपने जीवन के अनुभवों को शेयर किया, साथ ही साथ उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए हमें ये भी समझाया कि जीवन का ध्येय जो है वो केवल कमाने में और खाने में और खत्म करने में नहीं, बट उसका असली मजा तो एक दूसरे के साथ समय बिताने में है, एक दूसरे की परेशानियों में सहयोगी बनने में है, परेशानियों को खत्म करने में सहयोगी बनने में है, ना कि परेशानियां बढ़ाने में। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब आप प्रकृति के नियमों को मान करके उसके हिसाब से चलते हैं, तो जीवन बड़ा सरल बन जाता है। जैसा भारत जी का व्यक्तित्व है, सादा जीवन, सरल जीवन, सरल विचारों वाले हैं वो, ऐसे ही उनके उत्तर भी थे। और जो गौर करने वाली बात थी दोस्तों, वो ये कि भारत जी की हिंदी बड़ी साफ, शुद्ध और बड़ी प्रखर, पावरफुल है। मैं भी बीच बीच में सोच रहा था कि इतनी साफ हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका प्रयास करते रहना, अभ्यास करते रहना, ये अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय एक प्रयास है। भारत जी, आपने हमारे ध्यान को आपकी शुद्ध हिंदी की तरफ भी आपने खींचा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि केवल ये एक एपिसोड नहीं, आने वाले दिनों में भी कई बार अगर मौका मिले आप जरूर हमें समय दें, हमारे श्रोता साथियों से मिले दोबारा दोबारा दोबारा। और आप स्वस्थ रहें, दुखी रहें, और आप जो सेवा कर रहे हैं, जो त्याग तपस्या का जीवन आपका है, उस जीवन में आप लोगों के जीवन को इसी प्रकार से बहुत ही सुखी बनाते चले, ऐसी शुभ भावना के साथ रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, आपके लिए, और जब भी आप कहेंगे मैं तैयार हूँ।
1: जी बिल्कुल। साथियों, आज यशस्वी भारत कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे भारत भूषण त्यागी जी, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बीटा गांव से हैं, लेकिन एक छोटे से गांव बीटा से होते हुए उन्होंने इस पूरे भारत में जो अलग जगाई है वो है ऊर्जावान यथार्थ कृषि पद्धति की, एक ऐसी कृषि पद्धति की जो पूरे भारत के रूपरेखा को ही नहीं पूरे विश्व के रूपरेखा को बदल सकती है। और उनके इन्हीं प्रयासों की वजह से भारत सरकार ने उन्हें 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। अब तक जो भी उन्होंने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, उसमें से अगर कुछ बात आपको अच्छी लगी तो वो जरूर अपने जीवन में उसका गांठ बांधिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें भी कॉल करके फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आज अपने इस एपिसोड के बातचीत से लेकर के जा रहा हूं वो ये कि कोई भी कहीं भी आपके साथ आपके जीवन को अति वैभवशाली गौरवशाली बनाने में मदद कर सकता है। चाहे वो आपके ऑटो को चलाने वाला ऑटो वाला हो या रिक्शा को खींचने वाला रिक्शा वाला हो, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ एक ऐसा है जो मेरे जीवन को बहुमूल्य बना सकती है। क्या मैं समय लेकर के साहस के साथ, सद्भावना के साथ और बड़े स्नेह से अपने पास में बैठे या उस गाड़ी को चला रहे व्यक्ति से बात करता हूँ, या मैं सिर्फ बैठ जाता हूँ अपनी गाड़ी में और मोबाइल में बिजी हो जाता हूँ और भूल जाता हूँ कि मुझे मेरे ध्येय स्थान तक, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने वाला वो व्यक्ति कौन है, क्या है उसकी कहानी। भारत भूषण जी के इस जीवन की छोटी सी घटना से हमें ये सीख मिलती है कि बात करना जरूरी है। बात करने से ही जो है मैं और आप नजदीक आते हैं। बातें करने में मेरे से ज्यादा होशियार शायद कोई नहीं, क्योंकि मैं कब से बातें किए जा रहा हूँ आपके साथ और आप भी सुन रहे हैं। लेकिन जरूर हाँ, आप भी बात कीजिएगा अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें आप नहीं जानते उनके साथ भी। उम्मीद करते हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आपके साथ जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बातें करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, आप आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: धक धक
1: जैसे
0: धक धक
1: चिरा परी सावन बरसे।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो। प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता, और आज मैं आपके सामने मौन इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुई हूं। मौन यानी चुप्पी, शांत रहना। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। हमारा जीवन शोर से भरा हुआ है, बाहरी शोर जैसे गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, और आंतरिक शोर जैसे हमारे विचारों की हलचल। इन सब के बीच मौन एक ऐसी जगह है जब हम खुद को पा सकते हैं, जहां हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। मौन सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, यह एक शक्ति है। यह हमें आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। मौन हमें धैर्य सिखाता है, हमें सोचने की क्षमता देता है, और हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मौन के महत्व को सदियों पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने ध्यान और योग के माध्यम से मौन की शक्ति को अनुभव किया। आज के तनावपूर्ण जीवन में मौन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। यह हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। मौन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संवाद। जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में बोले, तो हम उसे सम्मान देते हैं। यह एक प्रकार का मौन संवाद है, जहां हम शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कह पाते हैं। अक्सर हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बातें बिना शब्दों के समझी जाती है। एक माँ का अपनी संतान को देखना, एक मित्र का दूसरे मित्र को सहानुभूति से देखना, यह मौन की शक्ति है जो शब्दों से परे है। मौन का दुरुपयोग भी हो सकता है। जब हम अन्याय के खिलाफ चुप रहते हैं, या जब हम अपनी बात नहीं रखते, तो मौन कमजोरी का प्रतीक बन जाता है। हमें यह समझना होगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। सही समय पर सही बात कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही समय पर मौन रहना। मौन और वाणी के बीच संतुलन बनाना एक कला है, और यह कला हमें अपने जीवन में सफलता और शांति दोनों प्रदान कर सकती है। मौन हमें प्रकृति से भी जोड़ता है। जब हम प्रकृति के बीच शांत बैठते हैं, तो हम उसकी सुंदरता और शांति

0: महसूस करते हैं। पक्षियों का चहचहाना, हवा की सरसराहट और नदियों का कलकल, यह सब मौन में ही सुनाई देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मौन एक अनमोल उपहार है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और इसकी शक्ति को महसूस करें। यह आपको शांति, स्थिरता और आत्मज्ञान प्रदान करेगा। हमें मौन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और समृद्ध बना सके। मौन में छिपी शक्ति को पहचाने और अपने जीवन को एक नई दिशा दे। धन्यवाद।
1: रेडियो श्रोतागण, अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: हम जब कहते हैं ना, क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम। उनकी गलती इतनी बड़ी थी और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं। सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी, दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है, ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti and welcome to Being Shakti.
1: Thank you so much.
0: मैं आज एक बहुत खूबसूरत लाइन से ये एपिसोड स्टार्ट करना चाहता हूँ. प्लीज लिसन टू दिस. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप अ ग्रज अलाइव.
1: ये पावरफुल लाइन है ना?
0: आगे बहुत पावरफुल है.
1: अच्छा.
0: इससे ज्यादा पावरफुल है. द लॉन्गर देर इज अ लैक ऑफ फॉरगिवनेस द मोर बिटरनेस एंगर एंड सेल्फ पिटी पॉइजन्स द ब्लड एंड ईट्स द हार्ट. हैंड इट ओवर टू गॉड एंड अलाउ हिम टू शो यू द पाथ टू ऑफ फॉरगिवनेस.
1: सच अ ब्यूटिफुल लाइन ना.
0: कितना सुंदर.
1: एंड इवन जिस चीज को हम नेचुरल समझते हैं एंड वो लाइन कितनी ब्यूटिफुल है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप अ ग्रज अलाइव. और हमारे अगर हम आज सिर्फ दो मिनट रिफ्लेक्ट करें हमारे पास कितनी यहाँ ग्रजेस पड़ी हैं जो अलाइव हैं आज.
0: अब हमेशा कहते हैं ना डिप्लीट डिप्लीट डिप्लीट. मैंने कहा था ये डिप्लीट एनर्जी क्या बोलती है सिस्टर.
1: सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप वन ग्रज अलाइव. और यहाँ हमारे पास तो पता नहीं कितनी सारी पड़ी हुई है. एंड इट सेज एंगर रिजेंटमेंट सेल्फ पिटी. क्योंकि यही तो चलेगा ना. इट पॉइजन्स योर ब्लड एंड ईट्स योर हार्ट अवे. कितना इम्पैक्ट. और हमने कहा ये तो नेचुरल है.
0: और मैं सोचता था इतने हमारे पास इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, मैं एक आत्मा हूँ तो फिर मैं इतने खराब काम क्यों करता हूँ.
1: yes.
0: मतलब डिप्लीट कर करके कर करके एक एनर्जी की तो बात कर रहे हैं. मेरे पास तो मिलियंस ऐसी एनर्जी हैं.
1: ऐसी है.
0: मतलब फ्रॉम सो मेनी जन्मस
1: ग्रजेस है ना इतने सारे जो पकड़ के रखे हुए.
0: जन्म के भी पहले के मिला के तो फिर आत्मा का हाल क्या हो गया होगा.
1: इसीलिए ना हाल है. इसीलिए हाल है. और इसीलिए ठीक करना भी बहुत ईजी है. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. इंस्टेड ऑफ ऑलवेज थिंकिंग कि अब हमारा क्या हाल हो गया.
0: थैंक गॉड इज रिपेयरेबल.
1: इट्स नॉट ओनली रिपेयरेबल इट विल बिकम एब्सोल्युटली व्हाट इट ओरिजिनली वॉज. कई चीजें तो रिपेयर होके कभी भी ओरिजिनल की तरह नहीं बन सकती.
0: कमजोर है.
1: लेकिन आत्मा तो बिल्कुल वैसी हो जाएगी जो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी थी.
0: रीबॉर्न.
1: यस. एंड दिस फॉरगिवनेस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द पावर टू लेट गो. जब हम किसी बात को लेट गो करेंगे पुरानी बातों को खत्म करेंगे ऑटोमेटिकली हमने क्या कर दिया. हमने उस आत्मा को फॉरगिव किया. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने खुद अपने आप को फॉरगिव किया फ्रॉम ऑल द पेन दैट आई हैड गिवन टू माई सेल्फ. जब हम लेट गो करने की बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हमें लेट गो करनी है आर दी एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैव फ्रॉम पीपल. वी हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल अराउंड अस. वेदर इट्स फैमिली वेदर इट्स फ्रेंड्स वेदर इट्स पीपल इन सोसाइटी. आप देखो सारा दिन में हम कहते हैं आई एक्सपेक्ट कि उनको इतना तो करना चाहिए था. एक प्रोग्राम में बैठे आई एक्सपेक्ट कि सब लोग मोबाइल तो ऑफ करेंगे. आई एक्सपेक्ट मीन्स क्या. कि मीन्स दुनिया जैसा मैं सोचती हूँ वैसे चलेगी.
0: गुड मॉर्निंग नहीं किया तो कम से कम स्माइल ही कर देता.
1: आई एक्सपेक्ट
0: मेरी तरफ देख ही लेता. न्यूज पेपर पढ़ता जा रहा है अपना.
1: ये छोटे छोटे ग्रजेस है ना. हम तो अभी वो देख रहे थे कि जो जीवन में कोई बड़ी बात हुई हो और हमने यहाँ दर्द पकड़ के रखा. यू नो सम इंसिडेंट सम पावरफुल चीज कोई हुई और हमने वो दर्द पकड़ के रखा. लेकिन ये छोटे छोटे जिसको हमें लगे
0: दिस ड्रॉप्स आल्सो ऐड टू दैट बिगर वन.
1: हर बार हमने क्या थॉट क्रिएट की.
0: नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव
1: नेगेटिव. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जितनी बार हम अपनी एक्सपेक्टेशंस हमारी फुलफिल नहीं होंगी हमें अच्छा नहीं लगने वाला है. तो क्यों ना हम इस पर पुरुषार्थ करें थोड़ा सा. इस पर थोड़ी सी मेहनत करें कि दूसरी आत्मा मेरे अनुसार चलने वाली
0: नहीं है.
1: तो आई हैव टू लेट गो ऑफ माई लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. एंड उसको भी जब जैसे ही ये थॉट आए उनको ऐसा तो करना चाहिए था ये तो होना चाहिए था इतना तो कर देते इतना नहीं तो इतना ही कर लेते. मैंने उनके लिए इतना किया वो इतना भी नहीं कर सकते थे. उस समय भी आई लेट गो ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन टूडे. अगर एक्सपेक्टेशन को ही लेट गो करना शुरू कर दिया ना तो उसके बाद दर्द आएगा और फिर फॉरगिव करना पड़ेगा और फिर उस बात को लेट गो करना पड़ेगा. उधर तक जाना ही नहीं पड़ेगा. क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन रखी फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ही कुछ अलग ही हो गया, फिर हर्ट हुए, फिर उसको लेट गो किया, फिर फॉरगिव करना पड़ा, कितना लंबा काम है।
0: एक्चुअली आपकी जो एक्सपेक्टेशन की बात सुन रहा हूँ मैंने अगर जैसे बोला कोई मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, ठीक है, यहाँ मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, यहाँ मेरी कहीं ना कहीं उसकी एक बुराई दिखी मुझे, और डीप में चला गया अभी सोचते सोचते कि एक्चुअली वो एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, मैं अगले पर्सन की एक बैड हैबिट या बुराई कमजोरी दिखा रहा हूँ कि देखो इतनी अकल नहीं है, तमीज नहीं है, कौन से स्कूल में पढ़ा, किस घर से आया, बता, गुड मॉर्निंग में नहीं बोल सकते,
1: वीकनेस ही ढूंढ रहे हैं ना सामने वाले की। यस, क्योंकि वो वीकनेस भी हमें, वो चीज हमें वीकनेस क्यों लगेगी, वो चीज हमें वीकनेस इसलिए लगेगी क्योंकि इट डजंट मैच विद माय लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस।
0: अब वर्ड याद आ गया, निंदा, ये मैं निंदा ही कर रहा हूँ,
1: लेकिन निंदा भी निंदा इसलिए कर रहे हैं, निंदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आप अपेक्षा रखते हैं लोगों से, जब वो उस अनुसार नहीं चलते तो वो लोग गलत हैं, और फिर हम उन लोगों की निंदा करेंगे जिन लोगों की लाइफ में एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि किसी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, उनको नहीं है एक्सपेक्टेशन, तो फिर उनको वो वाली बात भी सामने वाले की गलत लगेगी नहीं,
0: ना गलत लगी ना अच्छी,
1: तो वो
0: पता
1: निंदा
0: भी नहीं चलेगा,
1: हाँ, तो वो रजिस्टर ही नहीं होगा ना यहाँ पे कुछ भी। तो इट कम्स डाउन टू हमने क्या क्या अपेक्षाएं रखी हुई है। ये तो बहुत छोटी वाली है, इसको तो हम काउंट भी नहीं करेंगे, लेकिन सारा दिन में आप देखो हम हर्ट किस बात से होते हैं, जब दूसरे हमारी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करते हैं। और हम जीवन भर उस दर्द में रह सकते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ से, चाहे ओल्ड एज में पेरेंट्स बच्चों से, वो बहुत डीप है वहां पर पेन, क्योंकि आज समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, आज जो आत्मा है उसकी शक्ति भी कम है। सी, आज एक पेरेंट, क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग नाउ, क्योंकि आज जो पेरेंट्स है एल्डरली, वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बच्चों से, एंड उनके हिसाब से वो एक्सपेक्टेशन रखना तो नेचुरल है ना, कि बच्चा है, हमने उसके लिए इतना किया, इतना हमारा प्यार है उसके साथ, इतना हमने केयर किया, आज वो मुड़ के दो बात भी प्यार से नहीं कर सकता, वो कहना नहीं मानते, तो चलो वो तो हम, वो फिर कहेंगे चलो हम उतना तो एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन दो मिनट प्यार से भी बात नहीं कर सकता, इतना भी नहीं कर सकता, पूछ भी नहीं सकता आके कि आप ठीक हो कि नहीं। अब ये एक्सपेक्टेशन
0: जाती है कम से कम मैं जा रहा हूँ, आने के बाद मैं आ गया, दो ही टाइम मिल ले,
1: इतना ही कर ले, ये जो छोटे छोटे एक्सपेक्टेशन है जिसके लिए हम कहेंगे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करे क्या हम बच्चे से, फिर यू नो दैट्स हाउ नाउ दिस इज वेयर इट कम्स, दैट सेल्फ पिटी, ये सेल्फ पिटी है कि हम इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करें। एक पेरेंट के नजरिए से हम देखें तो यस, हम चाहेंगे कि वो बच्चा आकर दो मिनट प्यार से बात करे, वो करे, लेकिन अगर हम कई बार दूसरे तरफ से देखें कि आज का वो बच्चा जो 30-40 साल का है, जिसके वर्क पे इतने स्ट्रेस है कि वो अपने वर्क को आज हैंडल नहीं कर पा रहा, इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी है आज,
0: वर्क है, बीवी है, बच्चे हैं,
1: बीवी है, फिर बच्चे हैं, आज रिश्ते वैसे नहीं है हस्बैंड वाइफ के जो वो पेरेंट के अपने हुआ करते थे, आज जो उस छोटे बच्चे को संभालने के स्ट्रेस है वो वैसे नहीं है जो उस पेरेंट के हुआ करते थे जब वो अपने बच्चे को संभालते थे। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि आज की आत्मा 40 साल पहले से कमजोर है, तो उस कमजोर वीक आत्मा के लिए हर चीज मुश्किल है, एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप निभाना उसके लिए आज मुश्किल हो रहा है, बच्चे को संभालना उसके लिए आज मुश्किल हो रहा है। आज लोग कहते हैं पेरेंटिंग सबसे डिफिकल्ट चीज है, 50 साल पहले लोगों को पेरेंटिंग तो एक मतलब क्या, इट्स एज नेचुरल एज ब्रीदिंग, नेचुरल चीज हुआ करती थी, आज वो स्ट्रेसफुल चीज हो गई है। तो वो बच्चा आज बहुत बहुत तनाव में है, बहुत दर्द में है, इस बच्चे से, आत्मा से एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय हम इस आत्मा से हम प्यार से बात करें, तो अगर वो उस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दे, लेट गो कर दे, तो वो उस बच्चे को सही पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे।
0: और सपोर्ट भी तो मांगता है ना बच्चा उस वक्त,
1: वो मांगेगा नहीं ना, वो हमें अपने आप समझना पड़ेगा कि वो दर्द में है। इसी दिस इज नॉट अ सपोर्ट,
0: मतलब उस वक्त उसको जरूरत है,
1: नीड ऑफ द आवर, यस। लेकिन ऐसे ही हम सबके साथ ये देखें कि कितनी एक्सपेक्टेशंस जो हमने रखी,
0: वो किस जल्दी में था होगा, किस टेंशन में था होगा, निकल गया
1: पर्टिकुलर सिचुएशन
0: नहीं, जब मैंने आपसे
1: शुरू में हो सकता ना कई बार,
0: जैसे आपसे मैंने शुरू में बात की थी कि भी जाते जाते हेलो कर दे, बाय बाय कर दे, या मिलके पहले तो जाता था, पहले तो पांव छू के जाता था, पहले हग करके जाता था, ये अब तो पूछता भी नहीं है. यू नो वी स्टार्ट डूइंग ऑल दैट, एक्चुअली हो सकता है वो कितना टेंशन में हो, ऑलरेडी लेट हो गया हो, किधर से फोन कितने आए होंगे, भाई तू निकल, लेट गो,
1: लेट गो. सी अच्छा वर्ड है ना, लेट गो,
0: लेट गो.
1: क्या पकड़ के रखा हुआ है, और वो भी किसके प्रति पकड़ के रखा हुआ है, अपनों के प्रति. क्या वाइब्रेशन उन्हीं को भेज रहे हैं जिनके लिए हर रोज दुआ करते हैं, उन्हीं को कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं, रोज उन्हीं के लिए प्रार्थना की, उन्हीं को आशीर्वाद दिया, उन्हीं के लिए दुआ मांगी, और उन्हीं को ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं.
0: फ्रीडम,
1: फ्रीडम अपने को देना है, अपने को इन थॉट्स से फ्रीडम देना है.
0: बेटर लाइन जो आपने कही, ये फ्रीडम अपने को देना है,
1: अपने को देना है कि ये बंधनों से उलझन जो यहाँ पर हम बांध लेते हैं ना, इससे अपने को फ्रीडम देना है. तो लेट गो, जो अपेक्षाएं हमने औरों से रखी है उनको धीरे धीरे, एकदम से नहीं हो जाएगा ये, धीरे धीरे आएगा माइंड में, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते जाना है. एक और चीज जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन उसको बड़ी गहराई से देखना है, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट अदर पीपल हैव फ्रॉम अस.
0: The other people have from us.
1: हम बहुत ज्यादा सारा दिन लोगों की अपेक्षाओं को मीट करने की कोशिश करते जा रहे हैं.
0: हो सकता है मेरी खुद की अपेक्षा है कि मुझे लोग तारीफ करें.
1: हाँ, वही यही तो ये हम
0: मेरी तारीफ हो तो मैं इतना अच्छा करूं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है. लोग तो बोलते हैं वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, मर्जी से खाना पका रहे हैं, मर्जी से हमको कुछ करने की,
1: जब हम वो करते हैं तब हमें लोगों से अप्रिसिएशन मिलती है, महिमा मिलती है, या हमें लगता है, हम तो उसको महिमा और अप्रिसिएशन नहीं बोलते, हम कहते हैं हमें प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है, बिकॉज वी कंफ्यूज बिटवीन ऑल दीज वर्ड्स. तो हमें लगता है हम प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है और उसके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की अपेक्षाओं को मीट करते जाना इसका कोई अंत नहीं है. और अगर जीवन का लक्ष्य दूसरों की अपेक्षाओं को मीट करना बना देंगे
0: एंड एक्सपेक्टिंग एप्रिसिएशन एवरी टाइम,
1: तो देन इट्स नॉट पॉसिबल टू बी पीसफुल. ये मन हमेशा, क्योंकि ये भी तो एक क्रेविंग ही है ना, हमेशा ये हमेशा एक क्रेविंग बनी रहेगी. हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, हरेक के लिए अच्छा सोचेंगे, लेकिन हरेक जो हमसे एक्सपेक्ट करेगा उसको हम हर बार मीट नहीं कर सकते, और उसका बोझ हम अपने ऊपर नहीं लेकर चलेंगे. वी विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज दैट विल ब्लॉक आर वाइब्रेशंस ऑफ प्योरिटी टुवर्ड्स देम.
0: आई एम डूइंग माय बेस्ट, पे नहीं कर सकते.
1: डूइंग माय बेस्ट ना
0: बस,
1: एंड लेट मी डू माय बेस्ट अकॉर्डिंग टू माय ओरिजिनल आइडेंटिटी. आज हम फिजिकल आइडेंटिटी, मैं सो एंड सो हूं, वो इमेज और उसके साथ जुड़ी हुई इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस कि आप ये हैं तो आपको ऐसे होना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे पहनना चाहिए, आपको ऐसे काम करना चाहिए. दीज आर ऑल एक्सपेक्टेशंस विच कम विद द इमेज ऑफ हु आई एम एज अ फिजिकल एंटिटी.
0: एक सिंपल एग्जांपल है, बहुत छोटा सा. मेरे घर में दो ड्राइवर है, एक गाड़ी भी चलाता है, स्कूटर भी चला लेता है. एक ड्राइवर है बड़ा अच्छा ड्राइवर, बोलता था मैं स्कूटर नहीं चला सकता. बच्चे साइकिल चलाते, लड़के मैं मुझसे नहीं चलाई जाती, मैं गाड़ी चला लूं. एक्सेप्टेड हिम और कर रहे काम
1: सिंपल.
0: तो इतना मतलब वो भी क्लियर हुआ, मैं भी क्लियर हुआ.
1: बिल्कुल.
0: हमने ऐसे हम जीवन में क्यों नहीं कर पाते.
1: आप देखो सारा दिन में, ये बहुत सूक्ष्म है लेकिन इसको तो हमें, हम अवेयर ही नहीं है क्योंकि ये हम नेगेटिव में नहीं रजिस्टर करते. यू नो दिस डजंट गिव अ वेरी नेगेटिव अनकंफर्टेबल.
0: आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि एक आदमी बोलता है ना, भी मेरी लिमिटेशंस ये हैं, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ.
1: बिल्कुल.
0: तो ये अगर हम अपने लिए जान लें और हर बार लोगों से एक्सपेक्ट करें और खुश करने की कोशिश करें.
1: हर बार लोगों से एक्सपेक्ट करें वो तो फिर भी इजिली दिखाई देता है हमें कि हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम जो हर बार लोगों के अनुसार और लोगों के एक्सपेक्टेशन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, दिस इज हाउ पीपल शुड सी मी, दिस इज वॉट पीपल थिंक अबाउट मी, दिस इज वॉट पीपल शुड थिंक अबाउट मी, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचें, लोग मुझे ऐसा देखें, लोग समझें कि मैं ये हूं, ऐसा बनने की कोशिश करते जाना अपने ओरिजिनलिटी से हमें दूर लेकर जाता है। हम इसीलिए आज हम कहते हैं कि बहुत आर्टिफिशियल, बहुत सुपरफिशियल इन चीजों में हम खुशी और शक्ति को देख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ये हूं तो मैं बड़ा हूं, तो मैं पावरफुल हूं, तो मैं रिस्पेक्टेड हूं। ये है लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करना,
0: यानी कि सिंपल लैंग्वेज में सबको खुश करने की कोशिश करना।
1: सबको खुशी देनी है, खुश करना नहीं है, दो चीजों में बहुत फर्क है। सबको खुशी देने के लिए मुझे सिर्फ खुश रहना है, मुझे कुछ करना नहीं है उसके लिए। आई ओनली हैव टू बी लाइट एंड हैप्पी। जैसे आपने पिछली बार कहा कि आप लाइट थे तो ऑटोमेटिकली आसपास के लोगों को फील हुआ कि कुछ चेंज है, सो दे फेल्ट नाइस। तो आपने खुश रहकर ऑटोमेटिकली खुशी दी। और एक है आप अंदर भारी रहकर लेकिन कुछ कुछ करने की कोशिश करते जाएं दूसरों को खुश करने के लिए, देयर इज नो एंड, यहाँ बोझ बढ़ता जाएगा। एक इमेज अपने बारे में क्रिएट कर लेते हैं और उसको सैटिस्फाई करने की कोशिश करते जाना, नो आई हैव टू बी लाइक दिस, आई हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसे कर दिया, इवन इफ आई एम कंफर्टेबल डूइंग इट। हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, इसका कोई अंत नहीं है और ये हमें लाइटनेस से बहुत बहुत बहुत बहुत दूर चल ले जाता है। वी हैव टू ट्रैवल लाइट। ट्रैवल लाइट इज द सिंपलेस्ट वे टू बी हैप्पी एंड पीसफुल इन लाइफ। तो कितनी सारी चीजें लेट गो करनी है अब हमने देख ली इतने सारे एपिसोड्स में। लेट गो ऑफ पुराने बिलीफ सिस्टम्स कि लोग जिम्मेवार हैं हमारे दर्द का, दुख का। लेट गो ऑफ पास्ट मेमोरीज, पुरानी बातें, पुरानी सिचुएशंस जो हुई। लेट गो जो दूसरे के बारे में हमने नजरिया उनके बारे में बना के पुराना रखा हुआ है, उसका लेट गो। लेट गो एक्सपेक्टेशंस हमने जो दूसरों के बारे में रखी हुई है, लेट गो वो एक्सपेक्टेशंस जो दूसरों ने हमारे बारे में रखी है। जीवन में जितना मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ ये याद रख के जीवन में जितना चलेंगे,
0: और दूसरा भी एक आत्मा है
1: तो ट्रैवल लाइट नेचुरल हो जाएगा। अगर हर बार ये सोचेंगे मैं ये हूँ, ये ऐसे होना चाहिए, मुझे ऐसे करना है, लोगों को मेरे साथ ऐसे व्यवहार करना है क्योंकि मैं फला हूँ, तो फिर लाइट रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके लिए लेट गो के लिए जो क्वालिटीज हमने देखी, एक तो करेज, हिम्मत चाहिए पुरानी बातों को छोड़ने की, और एक जो आपने इतना आज ब्यूटीफुल सुनाया, फॉरगिवनेस, क्षमा करना,
0: उसमें भी हिम्मत चाहिए।
1: करेज तो इज ऑलवेज, दैट्स व्हाई लाइक वी सॉ अर्लियर,
0: बीइंग शक्ति तो हमें हमेशा चाहिए।
1: सारा दिन में जितना ये बार बार याद रखेंगे, मैं आत्मा हूँ, ये जीवन जी रही हूँ, वो इमेजेस, वो पोजिशंस, सोसाइटी ने जो एक्सपेक्टेशंस रखी उस पोजिशन से, उस लेबल से, वो सैटिस्फाई करना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य है आत्मा की क्वालिटीज को यूज करना। हमने वो चीजों की एक्सपेक्टेशन को मीट करते करते कोशिश करने में आत्मा की क्वालिटीज को छोड़ते गए। जितना सारा दिन में ये जो आइडेंटिटीज हमने ओवर क्रिएट कर ली ना अपने बारे में, उसको सैटिस्फाई करने की कोशिश करते, फादर हो तो ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड हो तो ऐसा होना चाहिए, आप एक्टर हैं तो एक्टर हो तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, कितनी चीजें हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कंफर्टेबल भी नहीं है करने में। दे डोंट कम नेचुरली टू अस, बट वी विल डू इट ओनली फॉर अदर पीपल।
0: दिस काइंड ऑफ बिहेवियर के स्कूल भी है अमेरिका में कि एक एक्टर को ऐसा बिहेव करना चाहिए, एक क्रिकेटर को, एक पब्लिक जो मैं फिगर बन गया है, और टेनिस के जो चैंपियंस हैं उनको भी क्लासेस देते हैं कि भाई आपको ऐसा बिहेवियर करना चाहिए, कोई न्यूज़पेपर वाला आपसे बात करे तो इस तरह इतना जवाब देना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहां नहीं चाहिए, इतनी लाइफ को थका देते हैं।
1: तो फिर जब तक अंदर लाइट नहीं होंगे ना, अंदर हल्कापन नहीं होगा, ये हम ट्रेनिंग्स भी कर लें कितने भी, जैसे आपने सपोज सेलिब्रिटीज के लिए भी कहा कि अखबार वाले से क्या बोलना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, लोग मिले तो क्या, इतनी सिंपल चीज भी अगर देखें, अंदर अगर लाइट नहीं होंगे, परिस्थिति आई, अंदर स्ट्रेस है, प्रेशर है, सामने वाले से वो प्रेस मीडिया वाले ने कुछ लाइन कह दी, तो आपको याद लगता है ये सारी ट्रेनिंग याद रहेगी उस टाइम?
0: हाँ, मुंह खुल जाता
1: है. दिस इज व्हाट विल हैपन.
0: कई बार लोग हाथ उठा देते हैं, लड़ लेते हैं.
1: एंड द अदर वे राउंड, अगर आप अंदर लाइट है, पीसफुल है, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि किसके सामने क्या कहना है.
0: यही ट्रेनिंग कितनी सुंदर,
1: आपके मुख से गलत निकलेगा ही नहीं. ये अभी ट्रेनिंग क्या हो रही है, आउटसाइड से हो रही है, कि अंदर भले आप टेंशन में हैं, भले आपको गुस्सा आ रहा है, उसकी बात पर आप जवाब ऐसे देना. दिस ट्रेनिंग विल नॉट वर्क एवरी टाइम, विल नॉट वर्क. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन तो फिर भी चारों तरफ फैल रही है ना. अगर आपने रोक के, दबा के बोल भी दिया, करेक्ट बात कर भी ली, लेकिन थॉट में तो कितना कुछ भेज दिया. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने अंदर कितना प्रेशर अक्यूमुलेट करके चला. जब ये ट्रेनिंग हमें मिलती है कि अंदर कुछ भी सोचो, लेकिन बाहर ऐसे बात करो. कस्टमर केयर इंडस्ट्री, पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उनको ये ट्रेनिंग नहीं मिल रही कि अंदर कैसे सोचना है, उनको ये ट्रेनिंग मिल रही है कि बाहर कैसे मुस्कुराना है.
0: सेल्समैन को है ना,
1: लेकिन वो सप्रेशन जो होता है कि अंदर गुस्सा भी आ रहा है, इंसल्ट भी फील हो रही है, नफरत भी क्रिएट हो रही है, ऊपर से स्माइल करना है, ऊपर से प्यार से बात करनी है, ये ट्रेनिंग हम मेजोरिटी सब कर रहे हैं. रिश्तेदारों के साथ प्यार से बात करनी है, अंदर से मन कर रहा है उसको, तो ये जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं.
0: थोड़े दिन पहले एक यंग मैन था, एक पहचान का था, तो ही वॉज गेटिंग प्रमोशन आफ्टर प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन. यहां से उसको सिंगापुर भेज दिया, वहां भेज दिया, ऑल इंडिया का हेड बना दिया. ही टाइड
1: एट अ वेरी यंग एज,
0: बस सोता सोता मर गया.
1: प्रेशर, प्रेशर टू परफॉर्म,
0: कह रही है ना.
1: एंड दिस इज
0: इंडस्ट्री
1: बिकमिंग कॉमन. तो ये हमें रियलाइज करना हो कि बाहर अचीव करते गए लेकिन अंदर लाइट नहीं रहे, तो आत्मा और शरीर ले नहीं पाएगा इस चीज को बहुत ज्यादा. तो ये ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए आज से जो हमारी फर्स्ट पावर है वो है पावर टू लेट गो. और इस पावर के बारे में परमात्मा हमें, सारी जो बातें हमने डिस्कस की वो तो परमात्मा का ही ज्ञान है जो हमें हर रोज मिलता है. लेकिन डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य उसके बारे में क्या है वो थोड़ा सा सुनते हैं.
0: एक लाइन में बोलूंगा आप शुरू करने से पहले कि अगले एपिसोड में सिस्टर मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि बीइंग ओरिजिनल.
1: हाँ.
0: मैं आज तक समझता आ रहा था कि मैं ओरिजिनल गुस्से वाला पैदा हुआ था, ओरिजिनल मैं ऐसे चलता हूँ, ओरिजिनल मेरे मुंह पे लोगों की बात कर देने की आदत है, तो आई एम बीइंग ओरिजिनल, आई एम बीइंग नॉर्मल एंड नेचुरल. लेकिन आपने आज जो बोला कि ओरिजिनल क्या है, वो अगले एपिसोड में जरूर आपसे पूछूंगा. अब ये पढ़ते हैं प्लीज. थैंक यू सो मच.
1: जो पावर टू लेट गो, जिसको हमने देखा पावर टू पैक अप भी, कि समेट, इसको कहते हैं हिंदी में समेटने की शक्ति, कि जो यहाँ है उसको समेट लिया. तो परमात्मा कहते हैं जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है. सरल स्वभाव,
0: सरल स्वभाव वाले
1: जो सरल है, इजी नेचर है, बातों को पकड़ के नहीं रखते. जो सरल स्वभाव वाला होगा वो सभी का सहयोगी भी होगा, हर एक के साथ कोऑपरेट करेंगे. जो सभी का स्नेही होता है उनको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त भी होता है. एक वो सबके सहयोगी होंगे और फिर सबका सहयोग भी उनको प्राप्त होगा. इसलिए सभी बातों को सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है. वो सरल रहेगा, इजी रहेगा, तो सभी बातों को इजीली समेट लेगा. जो जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी. माया मतलब अपनी वीकनेसेस, अपनी नेगेटिविटीज. हम सरल हैं, इजी नेचर है, लेट गो कर रहे हैं बातों को, तो नेगेटिविटी तो हमारा कोई सामना फिर करेगी ही नहीं. वो सभी को प्रिय लगता है. सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता. नेगेटिव वेस्ट थॉट्स होंगे ही नहीं. समय व्यर्थ नहीं जाता, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरादेशी रहती है. व्यर्थ नहीं है यहाँ कुछ भी, वेस्ट नहीं है, तो मन और बुद्धि कैसे रहेगी? विशाल और
0: अलर्ट भी रहेगी, आगे का भी सोचेगी,
1: क्लैरिटी, विजन, दूरादेशी। इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकते। जितना सरल होंगे उतना स्वच्छ भी होंगे।
0: ब्यूटीफुल।
1: क्योंकि मन और चित्त को कैसे रखेंगे?
0: क्लीन
1: रखेंगे। स्वच्छता सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जितना मन चित्त स्वच्छ होगा ना, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव, लाइक अ चाइल्ड।
0: कैसे आकर्षित करते हैं बच्चा? हम इधर 25-50 आदमी हो, छोटा सा बेबी सारे लोग को आकर्षित करता है।
1: क्योंकि मन चित्त पर अभी अक्यूमुलेट करना शुरू नहीं किया ना कुछ भी, तो उसका मन चित्त साफ है। स्वच्छता सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई, ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड
0: क्लीनलीनेस।
1: सोल, सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। इजी नेचर, खत्म, छोड़ दिया, लेट गो किया, डिलीट किया, इजी नेचर होगी, सच्चाई और सफाई होगी, तो ऑटोमेटिकली सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे।
0: इसका तो मंत्र है, लेट गो,
1: लेट गो,
0: ड्राइवर लेट आया, लेट गो, गाड़ी उसने खड्डे में डाली और गलती से बम्प ज्यादा मार दे, लेट गो।
1: चित्त को साफ रखना है, और ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेट गो करते जाएंगे ना, तो फिर बड़ी बात को लेट गो करने का इतना इजी हो जाएगा, क्योंकि लेट गो करना हमारा संस्कार बन जाएगा। एब्सोल्युटली। तो मंत्र लेट गो, और जितना ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली हल्के होकर फरिश्तों के जीवन जिएंगे। एंजल्स हमेशा उड़ते हैं। उड़ते हुए क्यों उनको दिखा रहे हैं? वो कोई फिजिकली थोड़े उड़ते हैं, मन उड़ रहा है क्योंकि वो इतना हल्का है। तो जो जितना लेट गो करेगा ना,
0: उड़ने के बाद चीजें भी छोटी छोटी लगने लगती है।
1: जितना
0: परिस्थितियां, दुनिया, वर्ल्ड,
1: बात छोटी लगेगी,
0: सब कुछ छोटी लगेगी।
1: राइट।
0: थैंक यू सो मच सिस्टर।
1: ओम शांति।
0: थैंक यू।
2: इन एवरी सीन एंड सिचुएशन वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल अराउंड अस, एक्सपेक्टेशंस of how they will respond in situations, expectations of how they will be with us, expectations of what they will do for us. Expectation means wanting people to be the way we want them to be. When people are not as we expected them to be, we hold grudges and create hurt. We then have to let go of the grudge and heal the pain. But if we let go of the expectations in the first place, then there will be no pain. When family and friends are not according to our expectations, the hurt we create radiates as constant negative vibrations to them. We become instruments of sending strong negative energy to those whom we love the most and for whose happiness we pray daily. Let us do our best for each soul and radiate our purity and love to everyone. But if we live our life trying to meet up to the expectations of others, even if it is not in our capacity, then we will not be happy. Our unhappiness will also radiate pain to those whose expectations we are trying to meet.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हम कहां तुम कहां हम कहां ताल कहां सम कहां तुम कहां हम कहां तरकर तुम नलगर तुम तरकर तुम नलगर तुम हम तुम लता हाथ की पाता लता हाथ पता पाता मेरा कच करामत
1: पापे ठेका पापे ठेका

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं रेडियो प्रोग्राम खाबों का सफर। जी हां, आइए आज के इस सफर को भी बनाएंगे यादगार, बहुत ही खूबसूरत सुंदर बनाएंगे हम लोग। 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज आप सुनते रहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत ही पुराने, बहुत ही सुंदर सिलेक्टेड सॉन्ग आप तक पहुँचे। तो आइए आज भी हम लोग जे अक्षर वाले गानों को सुनेंगे और 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंतर आत्मा को छू लेते हैं, हमारे दिल को स्पर्श करते हैं। बहुत ही सुंदर लिरिक्स होते हैं जो हमें याद भी रह जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ 1946 की ओर चलते हैं, जहाँ पर एक खूबसूरत फिल्म आई थी जिसका नाम था अनमोल घड़ी। जी हाँ, ये नाम भी अपने आप में बहुत ही कमाल का है। बचपन की प्रेम कहानी को बताया गया है, जहाँ पर लता और चंदर दोनों बचपन में बहुत आपस में प्यार करते हैं, लेकिन बड़े होते ही वो अलग हो जाते हैं। जब लता बम्बई जाती है, वो उपनाम रेनू के तहत कवियत्री बन जाती है और चंदर उसकी कविता से प्रभावित होता है और उससे मिलने की इच्छा रखता है। तो कहानी बड़ी ही सुंदर मोड़ लेकर आती है। जब चंदर मुंबई पहुंचता है तो उसे अपनी बचपन की प्रेमी नए नाम से मिलती है। ये फिल्म की कहानी है। तो आइए, इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो तन्वीर नकवी साहब ने लिखा है, नूरजहां की आवाज में और नौशाद साहब का संगीत। 11 नवंबर 1946 को ये फिल्म रिलीज हुई थी महबूब खान के निर्देशन में। बॉक्स ऑफिस पर उस समय 1946 में 10 मिलियन रुपए का बिजनेस किया था इस फिल्म ने। और इस फिल्म में कलाकार है नूरजहां, सुरैया, सुरेंद्र और मुराद। नौशाद साहब का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके नाम, न दूर हमसे जाया करो, न दूर हमसे जाया करो, दिल तड़प जाता है, आपके ख्यालों में ही हमारा दिन गुजर जाता है, पूछता है ये दिल एक सवाल आपसे कि क्या दूर रहकर भी आपको हमारा ख्याल आता है। खुश रहो, खुशियां बांटो,

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। नमस्कार, खाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना अनमोल घड़ी इस एल्बम से। आइए अब बात करते हैं एक और खूबसूरत फिल्म जो 1955 में आई थी, जिसका नाम था मुनीम जी। जी हाँ, ये नाम अपने आप में एक अलग फील कराता है। देवानंद, नलिनी जयवंत, प्राण, निरुपमा राय और अमिताभ पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत फिल्म। एस मुखर्जी के निर्देशन में, एल डी बर्मन का संगीत, मुनीम जी का किरदार जो है इसमें अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है और पूरा फिल्म इसी पर आधारित है। तो 1951 में बनी ये फिल्म अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। तो आइए, इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है, साहिर लुधियानवी साहब का लिखा, किशोर कुमार का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत, आपके लिए खास। चिंगारी का खौफ न दो हमें, दिल में आग का दरिया बसाए बैठे हैं, जल जाते कब के इस आग में, मगर खुद को आंसुओं में भिगोए बैठे हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। आइए आगे बढ़ते हैं। तुमसा नहीं देखा 1957 की इस फिल्म को, ये फिल्म एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है जो रोमांस नाटक फिल्म है, जो कि शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित और फिल्मिस्तान प्राइवेट के नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित है। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये भी उस समय फिल्म जो है 10 मिलियन रुपए का बिजनेस किया था। इसमें कलाकार थे शमी कपूर, अमिताभ, प्राण, राज मेहरा और व्यास जी ने इसमें काम किया था। तो आइए इस फिल्म का एक गीत जिसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, ओपी नैयर का संगीत आपके लिए अभी। खुश रहो, खुशियां बांटो।

अपने सीने से अलग हुए उम्मीद की तलाश, अपने सीने से अलग हुए उम्मीद की लाश, मुद्दतों जिसको नशाद किया है मैंने, तूने तो एक ही सदमे से किया था दो चार, दिल को हर तरह से बर्बाद किया है मैंने। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज और खाबों का सफर, मैं हूं आपका हम सफर सनी। 1959 की बात करते हैं, उस समय एक फिल्म आई थी गूंज उठी शहनाई। जी हाँ, गूंज उठी शहनाई 1959 में विजय भट्ट द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म, जिसमें राजेंद्र कुमार, अमिता, अनीता गुहा और आईएस इन्होंने काम किया था। ये फिल्म भी उस समय बहुत हिट रही और वसंत देसाई का संगीत था। उस जमाने में इस फिल्म ने 18 मिलियन का बिजनेस किया था। तो आइए इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगा अभी, जिसे भरत व्यास जी ने लिखा है, लता और रफी साहब ने इसे गाया है। वसंत देसाई का संगीत आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते, होठों से कुछ कह नहीं सकते, कैसे बयां करें हम आपको ये दिल का हाल की तुम ही हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आप सुन रहे हैं। अभी आपने सुना गूंज उठी शहनाई का गीत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा, शोला और शबनम। शोला और शबनम ये एक फिल्म थी जो बॉलीवुड फिल्म बनी 1961 में। रमेश सहगल द्वारा लिखित और निर्देशित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, तरला मेहता, अभी भट्टाचार्य, विजय लक्ष्मी और एम राजन ने मुख्य रूप से काम किया था। तो आइए, इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है, मोटिवेट करता है हम सभी को। इसके लिरिक्स का पहला लाइन ही है, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। कैफी आजमी का लिखा ये खूबसूरत गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, खय्याम का संगीत, शोला और शबनम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लोग प्यार दिल से नहीं चेहरे से करते हैं, वो दिल पे नहीं सुंदरता पे मरते हैं। हम सुंदर नहीं पर दिल के साफ है, इसीलिए बहुत कम लोग हमें पसंद करते हैं। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, रेडियो प्रोग्राम खाबो का सफर आप सुन रहे हैं। तो आइए 1964 की मैं बात करूंगा अभी, जिसमें सती सावित्री एक फिल्म आई थी। ये एक हिस्टोरिकल कहानी इसमें बताने की कोशिश की गई है। मृत्यु के देवता एक आदमी की आत्मा को लेने के लिए आते हैं, तब उसकी पत्नी को अतिरिक्त मील जाकर उसके लिए वफादारी और प्यार को साबित करना पड़ता है। तो इस फिल्म में ये कहानी बताई गई है। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इस फिल्म में जो कलाकार थे वो महिपाल, अंजलि देवी, जीवन, बीएम व्यास, अरुणा ईरानी, मोहन छोटी, निरंजन शर्मा, रामायण तिवारी, इन सभी ने काम किया। भरत व्यास का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सती सावित्री, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जीवन डोर तुम्हें संग बांधी। खूबसूरत गाना आपने सुना सती सावित्री का। आइए आगे बढ़ते हैं। खोया इतना कुछ कि फिर पाना ना आया, प्यार कर तो लिया पर जताना ना आया। आ गए तुम इस दिल में पहली ही नजर में, बस हमें आपके दिल में समाना ना आया। अब बात करते हैं 1967 की, रात और दिन। इस नाम से एक फिल्म बनी थी उस समय। इस फिल्म में नरगिस, प्रदीप कुमार, लीला मिश्रा और अनवर हुसैन साहब ने काम किया था। जाफर हुसैन के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और शंकर जयकिशन का संगीत। बहुत ही प्यारा सा फिल्म, जीना हमको रास न आया। खूबसूरत गाने को आप सुनेंगे जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा था, लता मंगेशकर जी ने गाया था, शंकर जयकिशन का खूबसूरत संगीत आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जीना हमको।

दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। आइए, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने अभी सुना, और अब मैं आपको ले चलता हूँ आशीर्वाद फिल्म का एक गीत सुनाने। जी हाँ, 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। एक भूपति की पत्नी उसे उसकी बेटी से अलग कर देती है। उनके मिलाप से पहले वो एक बलात्कार को उतारू व्यक्ति की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। वो अपने बच्चों से मुलाकात के सपने देखता है। तो कहानी इस तरह की बनी हुई है। तो ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में ये फिल्म बनी, 1968 में रिलीज हुआ। इस फिल्म का कहानी गुलजार, ऋषिकेश मुखर्जी, अनिल घोष तीनों ने मिलकर लिखा था, और इस फिल्म को उस समय फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अशोक कुमार को दिया गया था। तो अशोक कुमार, संजीव कुमार, सरिता और सुनीता सुनायाल ने इसमें काम किया था। तो आइए, इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत जिसे गुलजार साहब ने लिखा है और मन्नाडे साहब ने गाया है, वसंत देसाई का संगीत, आशीर्वाद 1968 का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो,

दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रिश्ते का मुकाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ तो कसम से कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, ख्वाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हाँ, बात करते हैं 1969 की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर। जी हाँ, किशोर कुमार का गाया हुआ एक खूबसूरत गाना है इस फिल्म का, जिसे इंदिवर साहब ने लिखा है, और ये गाना अपने आप में एक अलग फील देता है। तो आइए, इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताई गई है। एक प्रेमी जोड़ा जो है प्रेम करते हैं, उनकी बातें चलती हैं, उसी बीच एक डॉक्टर के साथ प्रेमी को मिलना होता है और प्रेमी को कैंसर है ये पता चलता है। तब प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से अपने आप को अलग करता है और दूसरे उसके दोस्त के साथ उसका संबंध बनाने में उसे हेल्प करता है। तो कहानी इस तरह की है। आसित सेन का निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। इस फिल्म के निर्माता मुशीर आलम मोहम्मद रियाज थे। बहुत ही खूबसूरत गाना इस फिल्म का मैं अभी आपको सुनाता हूँ। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। याद करते हैं तुम्हें तन्हाइयों में, दिल डूबा है गमों की गहराइयों में, हमें मत ढूंढना दुनिया की वीर में, हम मिलेंगे तुम्हें तुम्हारी परचाई में। तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत, बहुत ही अच्छी बातें आपसे हुई आज के इस शो में। हमने काफी गाने आपको सुनाए हैं, आशा करता हूँ आप सभी को आज के गाने बहुत पसंद आए हैं। कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ बातें रह जाती हैं, अच्छा है कुछ रह जाता है, तभी तो अगले एपिसोड में हम फिर से पूरा करते हैं। जीवन में हर चीज अधूरा हो तो उसे पूरा करने में भी अच्छा लगता है, जब कोई चीज पूरा हो जाता है तो कुछ नया ढूंढना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको एक खूबसूरत गाने के साथ छोड़े जाऊंगा। दिल मेरा अगर रोया न होता, हमने भी आंखों को भिगोया न होता। शैलेंद्र साहब का लिखा, मुकेश साहब का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत, मेरा नाम जोकर, इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना, जीना यहाँ मरना यहाँ। इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत, सलाम नमस्ते, शब खैर, शुभ रात्रि, आनंदी रहा आनंद लुटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक नए ट्रेड के बारे में बातें करेंगे और ये ट्रेड भी बहुत ही पॉपुलर है और आज के समय में युवाओं को काफी ये ट्रेड आकर्षित कर रहा है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर। जी हाँ साथियों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनर के बारे में। एक रचनात्मक और सुनहरा करियर आज है। आज के समय में डिजिटल युग में ग्राफिक डिजाइनर का करियर न केवल रचनात्मकता से भरा हुआ है, बल्कि इसमें नाम, पहचान और अच्छी आय भी बहुत संभावनाएं बन गई है। जब भी हम कोई पोस्टर, लोगो, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन या पैकेजिंग देखते हैं, उसके पीछे किसी न किसी ग्राफिक डिजाइनर की सोच और मेहनत होती है। तो आइए आज हम लोग इसी विषय को लेकर बात करेंगे। एक ग्राफिक डिजाइनर का मतलब केवल सुंदर चित्र बनाना नहीं है, बल्कि विचारों, भावनाओं और संदेशों का दृश्य रूप विजुअल फॉर्म में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य होता है। साथियों, तो आइए इस विषय को लेकर गहराई से बात करते हैं, कैसे कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं और कितना पैकेज मिल सकता है और कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज आपको देंगे। जी हाँ, करियर इन ग्राफिक डिजाइन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ। ग्राफिक डिजाइनर के बारे में बातें करने वाले हैं हम लोग कि किस तरह से हम ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है। साथियों, ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जो पेशेवर होता है, जिसके अंदर रंगों, फॉन्ट, चित्रों और लेआउट और डिजाइन टूल्स की मदद से किसी भी ब्रांड, उत्पाद या विचारों को आकर्षक रूप प्रस्तुत करता है। उसका नाम लोगों का ध्यान खींचवाने और सही संदेश पहुंचाने का होता है जो एक ग्राफिक डिजाइनर काम करता है। तो साथ ही उसके साथ में अगर बात करूं तो ग्राफिक डिजाइनिंग में मुख्य कार्य होता है, जैसे कि शुरू मैंने बताया, लोगो बनाना, पोस्टर या बैनर बनाना, सोशल मीडिया क्रिएटिव्स जो बैनर्स होते हैं या पोस्ट होते हैं वो बनाना, वेबसाइट और एप्लीकेशन, ऐप डिजाइनिंग, UI/UX जो स्पेशल डिजाइन्स है, ब्रोशर, फ्लायर और विजिटिंग कार्ड जैसी चीजें बनाना, पैकेजिंग डिजाइन करना, मैगजीन और बुक लेआउट बनाना, ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग का मुख्य कार्यों में से है। तो साथ ही ये सारी चीजें आज हम लोग जो है बारीकी से अगर देखेंगे तो ये सारी चीजें निकल के सामने आती हैं। वैसे देखा जाए तो किसी भी चीज का कार्ड या इनविटेशन या फ्लायर बनाना हो, बैनर बनाना हो, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आता है। तो आज देखेंगे कि जितना ज्यादा काम इन लोगों के पास है कि आज हर कोई अच्छा दिखना चाहता है या अपना ब्रांड को अच्छा बनाना चाहता है, तो एक डिजाइनर का, ग्राफिक डिजाइनर का वहां पर अहम रोल आ जाता है। साथ ही इसमें एक और बात, यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए जो कौशल है, जो स्किल्स है, वो क्या क्या होना चाहिए आपके पास, है ना। सबसे पहला तो टूल के अलावा एक अच्छी सोच होना चाहिए, जैसे कि क्रिएटिविटी, नए और यूनिक आइडिया सोचने की क्षमता इस क्षेत्र में आत्मा है। अगर आप नया कुछ सोच नहीं पाते हैं तो इस क्षेत्र में आप पुराने हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा क्रियात्मक, रचनात्मक, क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। सेकेंडरी फिर आता है जैसे सॉफ्टवेयर का ज्ञान। अब कोई भी बंदा कंप्यूटर लेगा तो सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ के ही काम करेगा, तो जब डिजाइनर की बात आती है, ग्राफिक डिजाइनर की, तो उनके लिए कुछ टूल्स होते हैं, आजकल रेडीमेड टूल्स भी मिलने लगे हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एडोब फोटोशॉप ये सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर ये देख लेते हैं, एडोब इनडिजाइन ये सॉफ्टवेयर को अगर आप कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम आता है अभी के समय में। और पुराने समय में थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो कोरल ड्रॉ भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें, ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद अभी लेटेस्ट में अगर देखें तो कैनवा, ये भी अच्छा है शुरुआती लोगों के लिए, और इसमें आजकल बहुत सारे रेडीमेड डिजाइन्स आ गए हैं, टैम्पलेट्स आ गए हैं, जिस तरह से आप जो भी चीज़ सोचेंगे उसका रेडीमेड टैम्पलेट होता है और आप उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन इनको अगर अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकते हैं। तो ये जो स्किल्स हैं ये एक ग्राफिक डिजाइनर के पास होने चाहिए। रंगों और फॉन्ट की समझ होना बहुत जरूरी है, कौन सा रंग या फॉन्ट किस भावना को दर्शाता है, ये समझ आपके पास बहुत जरूरी है। जब आप इस कोर्सेस को करते हैं तब ये चीजें आपको समझ में आ जाती है। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट की जरूरत को समझना और उसे डिजाइन में उतारना, ये भी बहुत जरा यूनिक है, क्योंकि अगर कोई बंदा बताया है आपको तो आप उसे समझ लिया और तुरंत उसको 3-4 डिजाइन बता दिया, तो उसमें से एक पसंद करना उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्या बोल रहा है, किस तरह की चीज बता रहा है, वो अगर आपके समझ में नहीं आता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। समय प्रबंधन, डेडलाइन पर काम पूरा करना एक प्रोफेशनल डिजाइनर की पहचान होती है। अगर आप 10 दिन में अगर किसी को डिजाइन देने वाले हैं तो 10 दिन में जरूर दीजिए। इवन मैं तो कहूँ
नौवे दिन उसको बुलाकर डिजाइन दे ही दीजिए, ताकि एक दिन आपके पास फ्री हो और समय बचे और आप कस्टमर यानी ग्राहक का दिल जीत सके। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोग कैसे सीखे इस पर बातें करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करें इस पर बातें करेंगे, ऑनलाइन कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं इसके बारे में बात करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रोग्राम करियर ऑप्शन जीवन कौशल, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे सीखें, इस पर अगर बात करूं तो पहला है डिग्री डिप्लोमा कोर्स BFA अप्लाइड आर्ट्स, दूसरा है डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग। ये दोनों कोर्स है आप कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब, स्किल शेयर, ये सारे प्लेटफॉर्म पर भी कुछ कोर्सेस अवेलेबल है, इन्हें भी आप सीख सकते हैं। तीसरा, स्व अभ्यास सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोजाना नए डिज़ाइन बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर या किसी पोर्टफोलियो में डालना बहुत ज़रूरी है, किसी पोर्टल पर भी आप अपना डाल सकते हैं ताकि लोग कितना पसंद करते हैं आपके डिज़ाइन को, ये आपको नो हो जाएगा। माने आपको अपने स्किल्स के माध्यम से आपकी डिज़ाइन लोग कितना पसंद कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा। इसीलिए भी आपको ये चीज़ें सेल्फ प्रैक्टिस में लाना चाहिए और रोज़ एक डिज़ाइन बना के पोस्ट करना चाहिए। साथियों, अब ये पूरा कार्य और कौशल आपके पास आ गया, डिग्री आपके पास है, तो आप अवसर कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ मिलेंगे एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। तो सबसे पहला, आपको विज्ञापन एजेंसी में ज़्यादा आपको डिमांड रहती है, यहाँ पर एक ग्राफिक डिज़ाइनर की हमेशा वैकेंसी खुली रहती है। दूसरा, मीडिया हाउस, यहाँ पर भी आजकल मीडिया हाउस में आप देखेंगे सोशल मीडिया हो गया है, टीवी में आता है और फिर फिल्मों के लिए भी, या एडवर्टाइजमेंट हर जगह होती रहती है, हर जगह की न्यूज़ मीडिया में जाती है और आजकल देखेंगे हर जगह पे बहुत सारे मीडिया वाले मीडिया हाउसेस बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत डिमांड होती है। इसके बाद आता है आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, इसमें भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर की हमेशा वैकेंसीज मिलती रहती है। फिर आता है चौथा, फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री, यहाँ पर भी बहुत डिमांड होती है ग्राफिक डिज़ाइनर की। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में भी आपकी वैकेंसीज बनी रहती है। फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप्स में भी आपको बहुत ज़्यादा जो है डिमांड होती है। तो ये सारे फील्ड हैं जहाँ आपको अवसर मिलता है। तो साथियों, इन अवसरों पर आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप डिज़ाइनिंग में रुचि रखते हैं तो अवश्य इन चीज़ों पर काम करें और आगे बढ़े। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में और एक बहुत ही सुंदर सक्सेसफुल स्टोरी भी शेयर करूंगा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। मंगल कामनाएं करते हैं साथियों। ग्राफिक डिजाइनर बनना एक सुखद अनुभूति देता है, क्योंकि जिनकी रुचि होती है वो अपना पेंट ब्रश लेके काम करते रहते हैं। वैसे ही ग्राफिक डिजाइनर को अपना कंप्यूटर ओपन किया और फिर कैनवा या फिर एडोब ऑडिशन खोल कर अपना सॉफ्टवेयर आपने डिजाइनिंग शुरू कर लिया। आपकी रुचि के विषय है तो आपको समय का पता नहीं चलता, थकान नहीं होती है, आराम से आप इन चीजों को कर पाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी राहुल की आपको बताना चाहूंगा। राहुल एक छोटे से गांव से था, उसके पास महंगे कॉलेज में पढ़ने के लिए साधन भी नहीं थे, पैसे भी नहीं, लेकिन उसे बचपन से ही ड्रॉइंग और रंगों का बड़ा शौक था, रंगों से बड़ा प्यार था। उसने मोबाइल और पुराने कंप्यूटर पर यूट्यूब से ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना शुरू कर दिया। शुरुआत छोटी छोटी चीजें देखकर की उन्होंने। शुरुआत में उसके डिजाइन साधारण थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज नए पोस्टर बनाता, सोशल मीडिया पर डालता, और एक दिन एक छोटे स्टार्टअप ने उसका काम देखा और उसे पहला प्रोजेक्ट दिया। साथियों, ये एक छोटा प्रोजेक्ट, यहां से राहुल के जीवन में एक परिवर्तन आ गया, एक यूटर्न आ गया, क्योंकि एक छोटा स्टार्टअप वालों ने काम देखा, उन्हें बहुत पसंद आया और तुरंत राहुल को प्रोजेक्ट भी दे दिया। अब धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्ट उनको मिलते गए, छोटे छोटे वो करते गए, और आज राहुल एक सफल फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है जो देश विदेश के क्लाइंट्स के साथ काम करता है और अपने परिवार का सहारा बना है। उसकी कहानी बताती है कि डिग्री से ज्यादा जरूरी लगन और अभ्यास है। तो साथियों, इस तरह से आप भी अपने जीवन में YouTube से कोर्स सीखकर भी काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आय की बात करें तो शुरुआत में आपको 15,000 से 25,000 प्रति महीना मिल सकता है, और अनुभव होने के बाद आपको 50,000 से 1,00,000। और फ्रीलांसर के रूप में अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप काम करते हैं या प्रोजेक्ट लेते हैं तो लाखों रुपए आपको मिल जाती है। और जैसा जैसा अनुभव और पोर्टफोलियो मजबूत होता जाएगा, आपकी पहचान और आय दोनों बढ़ती जाती है। साथियों, यहाँ पर एक और कहानी मैं बताना चाहूंगा नेहा की। नेहा एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट थी, पढ़ाई के साथ साथ उसने ग्राफिक डिजाइन का ऑनलाइन कोर्स कर लिया। कॉलेज के इवेंट्स के लिए वह पोस्टर और बैनर डिजाइन करने लगी, और धीरे धीरे उसका काम इतना पसंद आया कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से जॉब ऑफर उसको मिलने लगा। नेहा ने उस ऑफर को ठुकराया नहीं, बल्कि उसको पार्ट टाइम जॉब के रूप में करना शुरू कर दिया। फिर इस तरह से नेहा ने वहां पर ब्रांडिंग और सोशल मीडिया डिजाइन में अपनी जगह अलग पहचान बनाई, और उनकी ये पहचान ने उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद की। और फिर आज नेहा एक सीनियर ग्राफिक डिजाइनर है और कई युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनका मानना है अगर आप अपने काम में दिल डालते हैं तो डिजाइन खुद बोलने लगते हैं। तो इस तरह से ये कहानी थी। और ग्राफिक डिजाइनिंग के फायदे जो है, रचनात्मक आजादी मिलती है, घर से काम करने का अवसर मिलता है, ग्लोबल क्लाइंट्स मिलते हैं, लगातार सीखने का मौका मिलता है, आत्मसंतोष और पहचान प्राप्त होती है। कुछ चुनौतियां यहाँ पर भी हैं, कड़ी प्रतिस्पर्धा है, लगातार नए ट्रेंड सीखना होता है, समय पर प्रोजेक्ट पूरा करके दिखाना होता है, इसका दबाव रहता है। लेकिन जो लोग सीखने और मेहनत करने से नहीं डरते, उनके लिए चुनौतियां भी अवसर बन जाती है। ग्राफिक डिजाइनर का करियर उन लोगों के लिए वरदान है जो रचनात्मक सोच, नए विचार और तकनीक को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। ये केवल नौकरी नहीं बल्कि एक कला और पहचान है। अगर आपके अंदर रंगों से खेलने का, कुछ नया बनने का, बनाने का और दुनिया को अपने डिजाइन से प्रभावित करने की इच्छा है तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प है। साथियों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। फिर मिलेंगे एक नए ट्रेड के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी। और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी का, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: असली थोड़ा हमसे सुनो।
1: सही काम तो सही तो सही काम तो सही तो सही काम तो सही तो सही।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर आनंदी रहा, आनंद वाटा.
1: एक ख्वाब था और उस ख्वाब की एक आवाज थी. आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे बहुत लंबे ख्वाब में सफर कर रही थी. एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने.

0: से और कभी लड़ती भी है ऐसे के बस खेल रही है मुझसे और आगोश में नन्हे को लिए
1: विल यू शट अप।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयरएवर, एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वांट, सो देन इट्स माय चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस। आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ये बाजू मेरे आज।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आला आला आला।
3: ओहो काय आला।

जरूरत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 10

0: पुराने स्तंभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अपने एक्सपर्ट जी से जानते हैं वो हमें क्या नई बातें बताते हैं बाजीराव पेशवा के बारे में।
1: श्रीमंत बाजीराव पेशवे नावातच केवढी मोठी श्रीमंती आहे का। त्यांची फार प्रसिद्ध वाक्य मला असं वाटतं की अनेकांना माहिती असतील। ते म्हणतात, लक्षात ठेवा, रात्र ही झोपे करता नाही तर ती बेसावत शत्रूच्या छावण्यांवर हल्ला करण्याची देवाने दिलेली नामी संधी आहे। झोप ही काय, घोड्यावर बसल्यावर सुद्धा घेता आली पाहिजे। हे उद्गार ऐकले ना कीच डोळ्यासमोर एक महापराक्रमी तेजस्वी अशी छबी उभी राहते। असा हा महापराक्रमी बाजीराव पेशवा, मराठी साम्राज्याचा अतुलनीय सेना नायक। उण्या पुऱ्या 40 वर्षाच्या आयुष्यात 47 लढाया जिंकलेला हा सम्राट, आणि म्हणूनच यांच्यासाठी असं म्हटलं जातं की छत्रपतींनी स्वराज्य स्थापन केलं पण त्या स्वराज्याला दिशा दिली बाजीराव पेशव्यांनी। अवघं 11 वर्षाचं कोवळं वय, त्यावेळेला राजकारण, तलवारबाजी, निपुण घोडेस्वार आणि सर्वोत्तम रणनीतीकार असा बहुरंगी आणि बहुडंगी व्यक्तिमत्वाचा हा धनी अत्यंत राजबिंड्या रूपाचा। उभ्या भारतात बाजीरावाच्या शमशेरीचा डंका डुमडुमत होता आणि सगळ्यात महत्वाची पुणेकरांसाठी अतिशय जिव्हाळ्याची असलेली अशी गोष्ट म्हणजे पुण्यनगरीची ऐतिहासिक वास्तू शनिवारवाडा। हा शनिवारवाडा बांधण्याचा मान त्यांचाच आहे आणि त्यामुळेच साताऱ्याच्या राजगादी इतकेच महत्व त्यांनी पुण्याला मिळवून दिलं। शाहू महाराजांनी त्यांच्याबद्दल काढलेले जे गौरवोद्गार आहेत ना, ते ऐकले की बाजीरावांच्या पराक्रमाची साक्ष पटते। शाहू महाराज म्हणाले, मला जर 1 लाख फौज आणि बाजीराव यांच्यात निवड करायला सांगितलं तर मी बाजीरावाची निवड नक्कीच करीन। यातूनच समजतं नाही का, प्रचंड पराक्रम, विद्वत्ता, भविष्याचा वेध घेण्याची इच्छाशक्ती या त्रिवेणी संगमाने त्यांनी अटके पार झेंडे लावले। असं म्हणतात की जगात 2 ब्राह्मण नावाजले गेले, एक परशुराम ज्याने उन्मत्त क्षत्रिय सत्ताधीशांना बुडवलं नमवलं, तर दुसरा बाजीराव पेशवा ज्याने तुर्कांची पण तीच स्थिती केली। असा हा बाजीरावाचा झंझावात, संपूर्ण दिल्लीला हादरवण्याची ताकद या नरवीरामध्ये होती, या शूरवीरामध्ये होती। पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे देवाधर्माचं त्यांनी कधी आवडंबर नाही केलं की कधी जातीपातीच्या परिघामध्ये ते अडकले नाहीत, तर उलट बहुजन समाजातील सरदारांच्या मांडीला मांडी लावून ते जेवायचे, त्यांच्यात ते खूप रमायचे।
0: एक्सपर्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ मनु। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं बाजीराव पेशवा के बारे में। बाजीराव पेशवा की कहानी ऐसी है जैसे मानो अनंत हो, जिसका कोई अंत ही ना हो। उन्होंने इतने युद्ध किए, अपनी वीरता को हर युद्ध में उन्होंने सिद्ध किया, कभी कोई जंग नहीं हारी। सुनकर ही उनके व्यक्तित्व की छवि अपने मन में निर्माण कर लेते हैं ना हम सभी। आज उनकी एक क्वालिटी जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी वो है दूरदृष्टि। जब हमारा माइंड क्लियर होता है दोस्तों, तो हम कभी कभी आगे आने वाली परिस्थिति को आंक पाते हैं और उससे बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, जैसा बाजीराव पेशवा जी ने किया। उन्होंने बाद की परिस्थितियों को आंका, अपनी पावर्स का उपयोग किया और सही डिसीजन भी लिया। सही डिसीजन लेना तो लाइफ में हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन वो हम ले कर पाएंगे? दूरदृष्टि हमारी साफ कैसे होगी? मुझे लगता है जब हमारा माइंड क्लियर होगा, जब उसमें डर नहीं होगा, हम अपने आप को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं समझेंगे, बल्कि एक थर्ड पर्सन की तरह खुद के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको जज कर पाएंगे बिना किसी अटैचमेंट के, तो हम भी करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं दोस्तों। आखिर हमसे बेहतर हमें कौन जानता है? और कई बार ऐसा होता है कि हम ना कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में तो बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, मैं ये करूं ये नहीं करूं, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, ओपिनियन लेना और जो अनुभवी लोग हैं उनसे जीवन के मायने सीखना बहुत जरूरी है, फिर भी अपनी क्षमताओं और अपने व्यक्तित्व से हमसे ज्यादा वाकिफ और कोई भी नहीं है। बस हमें थर्ड पर्सन की तरह वो ओपिनियन खुद को देनी है जो हमारा दिल और दिमाग दोनों मंजूर करे, और फिर देखिए हम भी अपने हर निर्णय में सफल जरूर होंगे। चलिए दोस्तों, मेरा वक्त हो चला है आपसे विदाई लेने का। आप सुनते रहिए रेडियो पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा, आनंद लुटा।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. इस पूरे सफर को हम देखें तो रिश्तों को नए अंदाज में देखने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं. जब हमने समझा कि हम मैं कौन हूं, मेरी अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा का साथ मिला, तो रिश्तों को भी एक नई जान, एक नया अंदाज, एक नई खुशबू मिली. घर तक जब सीमित थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अपनी पिछली कड़ी से हमने बात शुरू की है कि घर के बाहर कदम रखा जाए और जब हम अपने कर्म क्षेत्र या ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे विश्वास की एक डोरी उनमें भी डाल सकते हैं. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज एक बार फिर इस सफर को आगे बढ़ाते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. हर बार की तरह हमारे साथ हैं रमा कुमारी, सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
2: ओम शांति.
1: सिस्टर शिवानी, पिछली बार अगर हम देखें तो हम ऑफिस पहुंच गए थे और ऑफिस पहुंच के हमने ये जाना था कि जब हम ऑफिस में एंटर कर रहे हैं या जब ऑफिस जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव है कि जाना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिशन की भावना, एक बोझ लेकर हम जाते हैं और फिर वो पूरा दिन हमारे साथ चलता रहता है, जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की बात आपने की थी. एक बार आगे बढ़े और उस पूरे सिलसिले को और जाने, थोड़ा सा रिवाइव करते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है, क्यों घर और ऑफिस के माहौल में या ऑफिस जाने में हमें इतनी प्रॉब्लम आती है.
2: कहा जाता कि होम इज वेयर द हार्ट इज, यू नो, एंड नॉर्मली वी लीव द हार्ट एट होम when we go to work. And nowadays in the offices it is said, bring your heart to work. Kyunki ek samay tha jab kaha jata hai ki bring your hands to work, sirf, you know, ki yahan par hai intelligence, hum sare ideas denge, top management sare ideas degi, jisko hum pyramid structure kehte the, ki jo top ke log hain, ideas sirf unhi ke honge, aur jo lower level par aayenge, unko sirf us idea ko implement karna hai. आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, आपको जो कहा जाए वैसे का वैसे उसको करना है. दिस वॉज द कॉन्सेप्ट वे बैक, जस्ट ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क. फिर जैसे जैसे परिवर्तन आता गया तो इट सेज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क बट ब्रिंग योर हेड टू वर्क ऑल्सो. अपना दिमाग भी साथ में लेकर आइए, आपका आइडिया भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है. और तब हम अब जो समय पर चल रहे हैं कि हर एक के आइडिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि वो आइडिया, यू नो, लोअर लेवल से आया या टॉप मैनेजमेंट से आया. एवरीबडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, सो ब्रिंग योर हेड टू वर्क. बट देन व्हाट हैपेंड, वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग आवर हैंड्स एंड हेड टू वर्क. अर्लियर वी वर ब्रिंगिंग ओनली हैंड टू वर्क. इट वॉज वेरी सिंपल, एक व्यक्ति का दिमाग ऊपर, बाकी सब
1: कई सारे हाथ काम करने वाले,
2: तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें. एक ने बताया, सब ने उसको सिर्फ फॉलो करते
1: गए. जरूरत भी शायद वही थी.
2: अब जब सो मेनी हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, यू नो, क्योंकि हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पे आ गए कि सब लोग एक ही लेवल पर हैं एज फार एज गिविंग द आइडिया इज कंसर्न. तो जहां इतने सारे हेड्स केम टू वर्क, तो दैट मीन्स हेड अर्थात ईगो, इतने सारे ईगोस केम टू वर्क ऑल्सो. माई आइडिया इज बेटर देन योर आइडिया, या आपका आइडिया क्यों लिया गया, मेरा आइडिया क्यों नहीं लिया गया, मेरा आइडिया ज्यादा बेटर है. तो जहां सिर्फ हाथ आ रहे थे ना, ईगो प्रॉब्लम कम थी क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं था. लेकिन वेयर ऑल द हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, तो सारी जो आई क्यूज थी, ईगोज थी, वो सारी क्लैश होने लग गई. और जहां इतनी सारी ईगोज क्लैश होने लग गई, तब प्रॉब्लम्स आने लग गई. और फिर हम काम तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. एंड सो नाउ द करंट ट्रेंड इज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, ब्रिंग योर हेड्स टू वर्क, बट ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क ऑल्सो. हेड्स, हैंड्स एंड हार्ट टू वर्क. क्योंकि हार्ट टू वर्क से क्या होगा, यू आर नॉट जस्ट ब्रिंगिंग योर आइडियाज, आपकी ईगो सिर्फ नहीं, लेकिन बिलोंगिंगनेस. हार्ट जहाँ है अर्थात क्या, कि बिलोंगिंगनेस है.
1: दिस इज योर ऑफिस.
2: हम एक पॉसिबल है ये कि हम अगर चाहें तो अपने ऑफिस को अपना घर बना सकते हैं.
1: लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये भी कहा जाता है कि ऑफिस के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो जाना चाहिए, ऑफिस को इतना सब कुछ नहीं बना देना चाहिए.
2: जहाँ तक अटैचमेंट की बात आती तो वो तो हम वैसे भी अब डिटैचमेंट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि हमें सब कुछ करना है लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए. ऑफिस के साथ भी आज हम कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन दर्द कितना है सारा दिन ऑफिस में. बिकॉज अटैचमेंट मे नॉट बी टू द ऑफिस बट अटैचमेंट इज टू माय इमेज, अटैचमेंट इज टू माय आइडिया. आप मेरा आइडिया स्वीकार नहीं करो आज, मुझे कितना दर्द होने वाला है. क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट अपने आइडिया से है. आपसे भले ना हो, इस ऑफिस से भले ना हो, इस पोजिशन से ना, अपने आइडिया से तो है. मेरी एक इमेज है इस ऑफिस के अंदर. आप अगर आकर कुछ और कह गए, लेट्स से मेरी इमेज है दैट आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अगर आपने आज आकर कह दिया कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, आई एम हर्ट, मुझे बहुत दर्द होने वाला है क्योंकि आई एम अटैच्ड टू दैट इमेज. तो अटैचमेंट तो हमारी बहुत सारी चीजों से है, लेकिन अटैचमेंट और बिलोंगिंगनेस दो अलग अलग बातें हो गई. अगेन, अटैचमेंट वो जहाँ दर्द है और बिलोंगिंगनेस वो जहाँ प्यार है लेकिन दर्द
1: नहीं है. और अभी भी अटैचमेंट, अगर जो हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं वो मुझसे ही रिलेटेड थे.
2: बिकॉज अटैचमेंट है क्या? फिजिकली तो अटैचमेंट ही है ना. यहाँ हम किसी चीज को अपना समझकर, आइडेंटिटी को अपना समझकर पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि दिस इज माय आइडिया, या मेरा आइडिया सबसे अच्छा है, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो सबसे अच्छा है. इन्होंने उसके अंदर गलती निकाली कैसे? सारा दिन तो सबसे ज्यादा हर्ट इसी बात पर है कि मेरे काम को आपने क्रिटिसाइज किया कैसे. अटैचमेंट्स. और ये सारी अटैचमेंट्स किस लिए? क्योंकि ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ. सो माई आइडिया, माई पोजिशन, माई स्टेटस, सो मेनी थिंग्स, वो सारी अटैचमेंट्स यहाँ. लेकिन बिलोंगिंगनेस वो एक अलग चीज है. बिलोंगिंगनेस हुई कि जैसे ये मेरा परिवार है वैसे ये भी मेरा परिवार है. है तो परिवार ही ना. और वास्तव में देखा जाए तो आज हम घर से ज्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं. अब के समय पर जो हम चल रहे हैं तो शायद हम घर तो रात्रि को सोने ही जाते हैं. यू नो, बाय द टाइम वी रीच होम इट इज 8:30 व्हाटएवर टू ईच वन, एंड वापस सुबह 8:30 बजे हम निकल जाते हैं. तो जो मेजर पोर्शन है वेकिंग अप टाइम, क्योंकि वो जितनी देर घर गए वो तो सोने का समय, वो सारा तो ऑफिस में है. तो शायद अ मोर इम्पोर्टेंट फैमिली इज हियर, क्योंकि उनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं. तो वहाँ हाउ टू फील गुड, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अपने जीवन को इंजॉय करना.
1: वहाँ तो मैं हमेशा ऑन टोज हूँ. वहाँ इफ वी लुक एट, एक्चुअली तभी तो कहते हैं कि इतना स्ट्रेस है ऑफिस में, इतना स्ट्रेस है. अगर हम देखें, बिल्कुल देखा जाए, तो वहाँ हम कभी भी बिलोंग फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि वो कभी भी आपकी पीठ पे छुरा भोंक दे.
2: तो ये डर यहाँ है. ये डर हमें है. क्यों? क्योंकि हम इनसिक्योर है, हमारी सेल्फ एस्टीम लो है. अगेन, हर सिचुएशन में जो ऑफिस में आने वाली है, हर व्यक्ति जो ऑफिस में हमें मिलने वाला है, उसमें पर्सपेक्टिव को चेंज करके उधर से हटाकर अपने ऊपर लेते जाइए. ऑफिस और घर में क्या फर्क है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, घर में एक बच्चा या एक मेरा यंगर ब्रदर या छोटी बहन गलती कर देती है, हम सारे घर में बैठते हैं और हम कहते हैं घर की बात को घर में रखना, ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए, और वो बात सच में घर में रह जाती है. बड़ी से बड़ी गलती छुप जाएगी, क्योंकि परिवार वाले कहते हैं ये हमारी परिवार की इज्जत का सवाल है, इसको घर में रहना चाहिए. ऑफिस में भी कोई छोटा नया रिक्रूट आया, छोटा बच्चा है मेरे कंपैरिजन में, मे बी आई एम 30 एंड ही इज जस्ट 20 और व्हाटएवर, वो एक गलती करता, व्हाट विल आई डू?
1: सारी जगह फैलाया जाए.
2: नाउ दैट इज द डिफरेंस. क्यों? क्योंकि ये मेरा भाई था और ये नहीं है. तो देयर द एटीट्यूड विल बी, उसकी गलती को हाईलाइट कर दो, उसकी गलती को हरेक को सुना दो, सीनियर्स तक रिपोर्ट कर दो. ये सब किस लिए? बिकॉज ही इज नॉट माई फैमिली मेंबर, he was my family member. Difference. यहाँ उल्टा मुझे चांस मिला है कि उसने गलती की. It's actually as if I will keep waiting कि वो जो मेरे colleagues हैं या जो भी जिनके साथ मुझे जो insecurity feel होती है वो गलती करे और मैं सबको बता दूँ कि देखा. And plus I get a chance to keep on also pulling him down, ये गलती की. तो वो एक undercurrent कैसा बिल्डअप हो जाएगा, और ये जो मैं करूँगा तो उसके बाद मुझे कैसा फील होगा, और जिसके प्रति मैंने ये किया तो उससे मुझे कैसी वाइब्रेशन आएगी. तो हाउ कैन आई फील गुड इन द ऑफिस इफ आई टेक दैट सेम रिलेशनशिप देयर a younger brother or a younger sister or even same age, whatever, galti ki, help the person out and just keep it between the two people. Kya hoga us relationship mein? This is cooperation. Wo tha competition.

0: कन्फेशन। अब ये जो अगर हमने कर लिया एक बार कि किसी ने गलती की और हमने उसको किसी को नहीं बताया, बिल्कुल किसी को नहीं बताया, जहां तक जरूरत नहीं है रिपोर्ट नहीं की उसकी, और उसको सिखाकर समझाकर सॉर्ट आउट करके बिल्कुल उसको भी हल्का कर दिया, व्हाट यू हैव अ फैमिली मेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट टिल यू आर ओनली इन दैट ऑफिस, यू हैव अ फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बट वी डोंट वॉन्ट टू बिल्ड दीज रिलेशनशिप्स बिकॉज वी आर इन दैट बिलीफ सिस्टम कि सबको पीछे गिराना है और खुद आगे भागता जाना है। तो अगर ऑफिस में वो जो लोग हैं उनको भी परिवार की तरह भी नहीं, परिवार ही, दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई ऑफिस, दिस इज माई होम, तो वो ऐसे होने लगेगा कि जब आप सुबह घर से उठेंगे तो आप एक घर से उठेंगे
1: दूसरे परिवार
0: में, दूसरे घर में पहुंच जाएंगे, एंड संडे को आप उस परिवार को मिस करेंगे क्योंकि आप उनसे नहीं मिलते हैं, एंड मंडे मॉर्निंग You will look forward to meeting them again. It is possible. And for that, I don't have to wait ki pura office kab aisa ban jayega. No, kyunki wo hone nahi wala. It's again like waiting for the world to change. It's not going to happen. Just my way of looking at the people. And that person who can do this is a leader. Wo chahe junior most vyakti ho us office ka. That person is a leader in the office who can do that. It's possible. And then I would love to go to work.
1: Actually, I can feel the, you know, vibrations. अगर एक परिवार से उठ के हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो पूरा का पूरा attitude, पूरा का पूरा हमारा देखने का नजरिया बदल चुका होगा जब हम अपने office में enter करेंगे।
0: और जब आप पहुंचेंगे ना सारा दिन में तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, यू नो दैट फीलिंग, क्योंकि वो आपको यही नहीं लगेगा कि आप ऑफिस में हैं। कोई भी चीज अगर आप इंजॉय करते हैं कोई भी ग्रुप के साथ, लेट्स से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो हल्का कितना लगता है, क्योंकि आप
1: घर पे भी जो काम कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम
0: बिल्कुल नहीं लगता, तो थकावट नहीं होती है, एनर्जी सारा दिन ऑफिस में एनर्जी ड्रेन आउट क्यों हो जाती है, ये छोटी छोटी बातें जो हम करते हैं, इसको नीचे खींचना, इसको नीचे गिराना, इधर से उधर तक गए, वेंडिंग कॉफी मशीन तक गए, उसके वहां खड़े हुए, कॉफी पी, जब तक वो इतना सा कॉफी का कप होता है जब तक वो पिया, चार लोगों के बारे में डिस्कस करके आ गए, दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट देन व्हाट विल हैपन, माय एनर्जी गेट्स पुल्ड डाउन, हाउ कैन आई फील गुड, तो कैसा अच्छा लगेगा, तो मैंने अपने लिए ही, किसी और ने नहीं। लोग नॉर्मली कहते हैं जी क्या करें हमारे ऑफिस का वायुमंडल ऐसा है, ना, इट्स एन एनर्जी फील्ड विच आई क्रिएट, नाउ माय चॉइस कि मैं किस तरह की एनर्जी फील्ड अपने लिए क्रिएट करना चाहती हूँ। तो टुमारो व्हेन आई गो बैक टू वर्क, लेट मी गो बाय दिस थॉट, आई एम गोइंग टू माय फैमिली,
1: बट देन इफ आई गेट ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशंस,
0: इट्स ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट टू गिव
1: एंड हाउ स्ट्रांग आई एम।
0: जब वो नेगेटिव अगर आ भी रही है अभी तो मेरी फिर भी चॉइस है कि मुझे क्या देना है। सी नॉर्मली जब दो लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ईच वन इज कैरिंग एन एनर्जी फील्ड, एक ऑरा तो है हर एक का, तो अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, दोनों का ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव है, तो बहुत जल्दी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो नेगेटिव ही एक दूसरे से कैच करते हैं। अब अगर हमने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, अपनी थॉट को चेंज करके और थोड़ा मेडिटेशन भी प्रैक्टिस अगर करें तो हमारा ऑरा धीरे धीरे, एनर्जी फील्ड चेंज होता जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, एंड मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। नाउ व्हेन आई कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस पर्सन, इनका नेगेटिव ही है, दे हैव नॉट चेंज्ड, मे बी द होल ऑफिस हैज नॉट चेंज्ड, लेकिन मेरा ऑरा पॉजिटिव है एंड मेरे पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है कि अब आपका ऑरा
1: मुझ तक नहीं पहुंच
0: रहा, आई एम स्टेबल, आपको जो बोलना है आप बोलते जाइए, मेरे को एक विधि आ गई है जिससे मैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकती हूँ, अब आप मुझे ओवर पावर नहीं कर सकते, तो आप यहाँ नेगेटिव हैं लेकिन आई मेंटेन माय स्टेबिलिटी। ये सेकंड स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज थी मैं आपके कांटेक्ट में आई, आपकी नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर ओवर पावर किया, सेकंड स्टेज आप जहां हैं वहां हैं, आई रिमेन स्टेबल, नाउ आई कीप वर्किंग मोर ऑन माय सेल्फ, लीकेज नहीं होने दू सारा दिन। थर्ड स्टेज क्या पहुंचेगी,
1: मेरी आप तक पहुंचेगी, आई ओवरपावर यू,
0: एब्सोल्युटली माय पॉजिटिविटी आपको ओवर पावर करेगी और तब ये लोग कहेंगे कि इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, दिस पर्सन इज नाउ अ लीडर, क्योंकि इनके साथ काम करके औरों को अच्छा लगता है। नाउ व्हाई विल दिस पर्सन नॉट मूव अप इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट लैडर, क्यों नहीं जाएंगे ऊपर, क्यों इनको प्रमोशन नहीं मिलेगी। इनफैक्ट जब इनको प्रमोशन मिलेगी तो ये लोगों को जेलसी नहीं होगी, इनको खुशी होगी।
1: लेकिन अगेन जो ये था, मैं भी उसी पे आ गई, उनको जो भी वो प्रमोट कर रहे हैं इंटरनली और आउटर बोथ शुड बी सेम इन सिंक।
0: हियर वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ इनर,
1: यू नो हर बार क्या होता है ऊपर से तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऑफिस में ये बहुत एक पूरा का पूरा एस्पेक्ट ये चलता है कि हम ऊपर से तो वी आर लाइक वेरी पॉजिटिव वेरी नाइस, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ ऐसा चलता
0: है। हम एक ऑफिस के ग्रुप में, कंपनी में ग्रुप के साथ वर्कशॉप कर रहे थे, तो हमने कहा कि सपोज वी हैव लिटिल लिटिल मशीन जिससे आप सबकी थॉट्स इस समय रीड हो जाए, तो एवरीबडी लुक्ड एट ईच अदर लाइक दैट एंड देन दे सेड फिर हम सब एक रूम में नहीं बैठ सकेंगे, यू नो। एंड बाहर से देखें तो एवरीबडी इज परफेक्टली फाइन, बट जो हम एक दूसरे के प्रति सोच सकते हैं उसकी तो लेवल
1: वही आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
0: बट वो ही तो वायुमंडल है, ऑफिस कल्चर और क्या है। लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि सारे कब चेंज होंगे। इफ आई चेंज
1: एंड आई हैव टू चेंज एक्चुअली इंटरनली, बहुत
0: ओनली इंटरनली, क्योंकि अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट कि मुझे बोलना पॉजिटिव है, कि कहीं मेरे मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं निकल जाए। वो कैसे निकलेगा, यू नो, उसका बीज नहीं है अंदर। अभी एफर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बीज नेगेटिव है यहाँ, तो एफर्ट करना पड़ता है कहीं गलती से बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ सारा दिन अटेंशन रखना पड़ता है कि आई शुड टॉक प्रॉपरली, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, आई शुड वर्क प्रॉपरली। लेकिन जब रॉ प्रोडक्ट, यू नो, रॉ मटेरियल ठीक होगा तो आपको एंड प्रोडक्ट पर मेहनत
1: के बाद करनी पड़ेगी। वंडरफुल, एक्चुअली दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, यू नो। ये माइंडसेट दिमाग में आते हैं कि मैं एक परिवार से निकल के दूसरे परिवार में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक पूरा यू नो बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। अब हम उस परिवार में जा रहे हैं जहां मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले रिलेशनशिप में देखा है कि जब हम घर में थे तो उन रिश्तों में इतनी मुश्किलें थी, तो वो मुश्किलें आएंगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका मतलब वो मेरा परिवार है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। यू नो, हम पहले चीज ऑफिस में क्या करते हैं, आई वांट टू लीव, आई डोंट वांट टू वर्क हियर, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। घर पे तो मैं नहीं कहती कभी भी कि मैं घर में नहीं रहना चाहती,
0: बिलोंगिंगनेस नहीं है ना। देखो, घर पे बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए, यू नो, बच्चे कितनी बार झगड़े में गुस्से में मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन छोड़कर कौन जाता है, कोई नहीं जाता। अगले दिन वापस वही उतना ही प्यार, हस्बैंड वाइफ भी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, वाइफ तो कितने प्यार से अपना सूटकेस भी निकाल लेती है, सारा पैक कर देती है, मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर के बाद वापस। वाई, इट्स ओके, सी कॉन्फ्लिक्ट इन, यू नो, छोटी छोटी बातों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट्स गोइंग टू ऑलवेज बी देयर। लेकिन जहां वो बॉन्डिंग है तो वो झगड़ा अगले दिन तक भूल जाता है, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग नहीं है ऑफिस में, तो वो छोटी सी बात भी वो इतनी यहाँ इम्पैक्ट कर देती है, वो हर्ट इतना डीप हो जाता है, और क्योंकि बिलोंगिंगनेस नहीं है तो छोड़ना बहुत इजी हो जाता है।
1: पहली चीज, पहला थॉट आता है लीव,
0: आई लीव, या क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है ना। तो जहाँ बॉन्डिंग नहीं है तो उस रिश्ते को तोड़ना बहुत इजी है।
1: बहुत सुंदर, आई थिंक दिस रियली गिव्स अनदर विजन टू माय रिलेशनशिप इन द ऑफिस and my relationship to the office, you know, my belonging, feeling ki I belong to that office. अगर ये mindset लेकर चलते हैं, अब पहला तो हमने पहला पड़ाव पार किया है कि हमारा attitude जब हम office जा रहे हैं वो क्या होगा। अब हम उन problems पे आते हैं, जैसे हमने रिश्तों के घर में बात की थी, वैसे यहाँ पर भी जब interpersonal relationship में हम आते हैं तो different हैं थोड़ी problems, लेकिन problems solve करने का मुझे लगता है कि हम solutions उसी में ढूंढ सकते हैं। First is कि मेरे project को, या मैंने जो जितना जहां तक पहुंचा था, मेरी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया गया, दैट्स द बिगेस्ट हर्ट।
0: अगेन आई विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑन अ जर्नी, एक प्रोजेक्ट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। एक चीज की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है, और अप्रिसिएशन मुझे किससे चाहिए, मोटिवेशन। कई बार लोग बोलते हैं मोटिवेट ही नहीं कोई करता है, अप्रिशिएट नहीं करता है, तो हम मोटिवेट कैसे होंगे। तो वर्तमान समय एक चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, वो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं रिश्तों में, कि जो चीज औरों के पास नहीं है उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें। मे बी दे डोंट हैव दैट मोटिवेशन इन देम राइट नाउ, तो वो हमें कैसे मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेशन या अप्रिसिएशन ये पॉजिटिविटी है, लेकिन अगर मेरा सीनियर खुद ही बहुत नेगेटिव है, खुद ही बहुत स्ट्रेस्ड है, तो वो कहाँ वो अप्रिशिएट करे, उस तो अपने ही प्रॉब्लम्स में इतना घिरा हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा काम अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैंने उसको राइट पर्सपेक्टिव में नहीं लिया, अब ये रिलेशनशिप है, अ जूनियर एंड अ सीनियर, लेट्स से एंड घर में एक फादर एंड अ चाइल्ड. ओके, अगर एक बच्चा घर में समझ सकता है कि मैं भी मेरे पापा किसी बात से परेशान है, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरी चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, और उसके मन में कंपैशन है, गुस्सा नहीं आएगा कि पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, क्यों वो परेशान है, कोई बात नहीं मैं कल डिस्कस कर लूंगा. वाई कैन अ जूनियर नॉट थिंक द सेम थिंग अबाउट हिज सीनियर, कि मे बी ही इज अपसेट अबाउट समथिंग, वो किसी और कॉन्फ्लिक्ट में है, क्या बात है जो उन्होंने रिकग्नाइज ही नहीं किया मैंने ये किया. क्या होगा उससे, इमिजिएटली आपके यहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी. अभी क्या था, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, जान के खींचने चाहिए ये, हाँ मुझे आगे नहीं, क्या गया,
1: खुद डर गए हैं. सबसे बड़ी इनसिक्योर, हाँ खुद इनसिक्योर है क्योंकि मैं ज्यादा हूँ. तो हो सकता है आप ज्यादा,
0: दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि सच में ये रीजन हो इफ यू फील लाइक दैट, लेकिन ऑफ कोर्स ये जजमेंट हमें एक या दो बार में कभी भी किसी के लिए पास नहीं करने चाहिए. मेजोरिटी टाइम्स आज वर्तमान समय लोग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में अंदर ही है. कई बार तो वो अपने घर की किसी प्रॉब्लम से डिस्टर्ब है, वो बैठे हुए हैं ऑफिस में लेकिन उनकी वो घर की प्रॉब्लम, कई बार उनकी तबियत, कुछ भी, सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर कि वो सब चीजें उनके माइंड पर है, और उस समय उनका मूड ही नहीं होता अप्रिशिएट, क्योंकि आपको कोई चीज उस समय बहुत ज्यादा अच्छी लगती नहीं है, आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है. तो पहले तो आप वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, फिर अगर आपके अंदर करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जाकर बात कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया इस तरह से, आपको कैसा लगा, डू यू थिंक इट वॉज ओके, आप मेरे बड़े हैं, यू कैन गिव मी ऑल वॉट यू फील कि इसमें क्या क्या रॉन्ग था. वेन विल आई डू दिस, इफ आई वॉन्ट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, इफ आई वॉन्ट टू, नॉट आई हैव टू. लेकिन क्योंकि हम वो सब नहीं करना चाहते, हम बस चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके अगेंस्ट सोचना शुरू कर देते हैं कि इनको तो चाहिए ही नहीं था, ये तो करेंगे ही नहीं अप्रिशिएट. तो उससे क्या होगा, हमारा डायलॉग नहीं होता, हम और ही विड्रॉ हो जाते हैं. अब अगर कई बार ऐसा हो गया है, मेनी मेनी मेनी मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, एंड आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया कि देयर इज सम स्ट्रेटजी या इनसिक्योरिटी, अब क्या कर सकते हैं, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू स्टिल हैव टू कीप डूइंग योर वर्क, व्हाट इज द चॉइस, क्योंकि आपकी विशेषता है. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दूसरे का इनसिक्योर होना हमारे प्रति, ये हमारी

0: व्हाट इज हैपनिंग कि ये नेगेटिविटी मेरे ऊपर ओवर पावर हो रही है. ये तो सारा दिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, वो चाहते थे कि मेरा काम खराब हो जाए. इफ इफ वी फील के वो चाहते थे मेरा काम खराब हो जाए एंड दे सक्सीडेड, क्योंकि मेरा मूड ऑफ होता गया होता गया होता गया, मैं डिप्रेस्ड होता गया, तो मेरा काम से माइंड हट गया और मेरा मन इन्हीं बातों में चल गया कि ये ऐसे क्यों वैसे क्यों. तो वो जो क्रिएटिविटी मेरे काम में थी, जिसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी थी, अब वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई एंड नाउ ही सिक्योर. अब वो सिक्योर हो गए कि हाँ, इनकी जो विशेषता थी वो खत्म हो गई. तो आई लेट हिम विन ओवर, आई लेट हिम ओवर पावर मी एंड देन आई से उनकी वजह से मैं नीचे गया या उनकी वजह से मैं ऊपर नहीं गया. किसी की वजह से नहीं, मैंने होने दिया ऐसा. आई गेव इन, आई यू नो आई गेव इन टू दैट पावर. दूसरे ने कोशिश की, मे बी इंटेंशनली अनइंटेंशनली, दूसरे ने कोशिश की मुझे क्रिएटिविटी से हटाने की या मेरी विशेषता को खत्म, मैंने वो होने दिया. अगर मैं चाहता प्रोटेक्शन, वो करते रहेंगे अपना इनसिक्योरिटी में. मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी मोटिवेशन की वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड कि वो मोटिवेट करने वाले नहीं है. तो अब मुझे मोटिवेट कौन करेगा?
1: मैं खुद.
0: हर चीज इज गोइंग टू कम बैक टू माई सेल्फ, सेल्फ मोटिवेशन. व्हेन विल आई बी एबल टू डू दैट? जब मेरे को ये समझ में आ जाए आई एम नॉट वर्किंग फॉर हिम, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ. ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा बनना, ये किसी और को अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. एम आई हैप्पी विद इट?
1: लेकिन इससे मेरे जो ग्रोथ के जो रास्ते थे वो बंद हो गए.
0: ग्रोथ के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप अपनी पावर को मेंटेन करेंगे, किसी को वो अथॉरिटी नहीं देंगे आपकी एनर्जी को डिप्लीट करने की, तो जहां पावर है, एनर्जी है, वहां ग्रोथ है. जहां पावर ही खत्म हो जाती है तब ग्रोथ फिनिश हो जाती है, आप रुक जाते हैं या फिर पीछे जाना शुरू कर देते हैं. आप एज लॉन्ग एज अपनी पावर को मेंटेन करते हैं, अपनी मोटिवेशन को मेंटेन, आप करते जाएंगे, इन द प्रोसेस आप नया सीखते जाएंगे. एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, वो एक व्यक्ति करे या नहीं करे. एंड फिर भी इफ आई वॉन्ट टू लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, विच विल नॉट हैपन, बट इफ आई लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, देन मे बी नॉट हियर, मे बी इन सम अदर जॉब, लेकिन माई होल प्रोसेस ऑफ maintaining that, learning, working hard, going on, वो अगली जगह पर use हो जाएगा. लेकिन वो कभी भी waste नहीं जा सकता. Truth does not have to be justified. Truth will reveal itself. तो उसको give up नहीं करे. इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि जो सच की नाव है, परमात्मा हमेशा कहते हैं सच में चलने में थोड़ा सा obstacle आता है, तो कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं. लेकिन जब वो हिलती डुलती है तो थोड़ा सा डरना नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रखना कि ये डूबेगी नहीं. सत्यता को प्रत्यक्ष करना नहीं पड़ता कि मुझे प्रत्यक्ष करना पड़ेगा मैं कितना अच्छा, सत्यता स्वयं प्रत्यक्ष हो जाती है. सो जस्ट लिटिल पेशेंस, गो ऑन ग्रोइंग इनसाइड एंड वर्किंग हार्ड.
1: वंडरफुल, आई थिंक इट गिव्स अ न्यू रियल न्यू डायमेंशन. शिवानी, अभी तो वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जो आज वर्क कल्चर की बात करते हैं, तो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इज नीडेड देयर. हम ये सोच रहे थे कि घर तक सही है, लेकिन काम में मेरा ये क्यों आए? लेकिन अगर काम भी अब घर या एक परिवार बन गया है, तो वहां ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. किस तरह से किया जाना चाहिए, यहाँ किस तरह से ग्रुप एनर्जी जो है वो पूरे माहौल को बेहतर कर सकती है, इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे अपनी अगली कड़ी में. अब इजाजत लेते हैं. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं, अगर ऑफिस का जो कल्चर है उसे भी हम अपने हिसाब से ये मान लें कि वो मेरा एक परिवार है, तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किल इतनी नहीं लगेगी. जो सारे आपके सामने अड़चने आ रही हैं, उन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप हथियार नहीं डाल देंगे और ये नहीं मान लेंगे कि जहां एक प्रॉब्लम आई आई विल चेंज, बिकॉज दैट्स वेयर योर डेस्टिनी इज. अगर आपने ऑफिस ज्वाइन किया है तो उसको पूरा वक्त देने की कोशिश कीजिए और पूरा एनर्जी देने की कोशिश कीजिए, एक पूरी पॉजिटिविटी के साथ. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स है 09999344555, 09999344555.

4444-6096-7366-555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। वक्त बदला है और आज जब हम एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ मेडिटेशन कितनी जरूरी हो जाती है और कितना स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट वहाँ पर भी होना जरूरी हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे और किस तरह की प्रॉब्लम्स ऑफिस में हम और आप फेस करते हैं, कैसे उनसे निकल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरवस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। क्या है जिसे हम तलाश रहे हैं, यही सवाल है जिसे जानने की कोशिश हमारे इस प्रोग्राम में चल रही है। कल आपको याद होगा हमने खुशी की बात की थी और आज फिर उसी खुशी को तलाशने की कोशिश जारी रखेंगे। हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका एक बार फिर स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति शिवानी जी। और कल की अगर हम बात करें या पिछले एपिसोड की चर्चा करें तो बात यहाँ पर आई थी कि खुशी जिसे हम मानते हैं कि वो खुशी है वो कहीं ना कहीं खुशी नहीं है। अगर हम फिजिकल कंफर्ट्स की बात करें तो वो भी एक कंफर्ट है,
1: वो साधन है। हाँ। वो आराम के साधन है।
0: बिल्कुल। और आपने रिश्तों की बात की थी कि रिश्ते भी जो है वो रिश्तों में रहना हमें खुशी दे सकता है, लेकिन रिश्ता या मेरी खुशी उस रिश्ते पर डिपेंड नहीं कर सकती। खुशी इंटरनल है, अंदर है, खुद ही तलाशनी है, कस्तूरी
1: है। सबसे बड़ा हमारा रॉन्ग जो एक इल्यूजन वो था, वो ये था कि खुशी बाहर है, इसलिए उसकी खोज बाहर चल रही थी। अब समझ में आया कि वो तो अंदर है, आंतरिक है, मेरी अपनी चीज है, तो ऑटोमेटिकली फोकस ही चेंज हो गया ना। बिल्कुल, बाह्य की जगह आंतरिक हो गया।
0: एक और बात जो हमने ये जानी थी वो ये कि कंडीशनल नहीं है।
1: हाँ।
0: खुशी किसी पे निर्भर नहीं कर सकती और एटर्नल होना चाहिए।
1: आप देखिए सारा दिन आप अपनी लैंग्वेज को ही चेक कीजिए। हम सारा दिन जो बातें करते हैं ना, ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो ऐसा कह देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, मतलब हर समय ये हम इस बात को री इन्फोर्स अपने अंदर से पक्का कर रहे हैं कि जब ऐसा कुछ होगा तब मैं खुश होऊंगा। मतलब मेरी खुशी इस परिस्थिति पर या इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट है, तो कंडीशनल हो गई, क्योंकि हमेशा वो व्यक्ति और परिस्थिति मेरे अनुसार तो नहीं चलने वाले हैं। तो हम अपने आप खुद ही ये कंडीशंस जेनरेट कर देते हैं और हम अपने अंदर फिर वो प्रोग्रामिंग जैसे एक फीड कर देते हैं कि वो ऐसा होगा, 90% मार्क्स मिलेंगे तो मैं खुश होऊंगा, 85 मिला
0: अगर ये हो गया तो आई विल बी वेरी हैप्पी।
1: आई विल बी, सी इट्स अ लैंग्वेज द होल डे, इफ दिस हैपेंस आई विल बी वेरी हैप्पी, व्हाई कांट आई बी हैप्पी विदाउट इट। आप देखो कई बार ना बच्चों को या बड़ों को भी हम लोग कॉम्पिटिशन्स में करते हैं, विच वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, या आपकी वो कौन सी खुशी की मिंस है। अभी अभी अगर हम सोचें तो आप देखेंगे एक लिस्ट बनेंगे, 8, 10, 20, 100, कितने मोमेंट्स आप निकाल, आप खुद कितने निकाल पाओगे
0: पूरी जिंदगी में। अगर मैं सिर्फ 10 या 100 लम्हे भी निकाल पाऊं तो ये गलत बात है।
1: तो ये कैसी जीवन हुई, मतलब 365 days a year और इतने years हमने ऑलरेडी स्पेंड कर दिए, इसमें से हम 10, 20 और 100 क्षण निकालेंगे और एक्चुअली होना कितनी देर चाहिए,
0: जितनी हमने उम्र चाहिए,
1: हर क्षण उस जीवन के हर क्षण मेरे खुशी में बीतने चाहिए थे, क्योंकि मेरा ये जीवन ही उस पर्पस के लिए है।
0: बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद ही अंदर से खुशी हूँ, ये एक इंटरनलाइज करने की बात है कि उसे
1: सबसे
0: एहसास
1: बड़ी ये जो बिलीव सिस्टम जो हमारी थी ना कि ये कंडीशनल है तो टेम्पररी हो गई, इसलिए इटर्नल नहीं हो पाई और इसीलिए वो फ्लक्चुएट भी होती रही।
0: When we talk like this, it's very easy. You know, I understood it like in the last episode that yes, मुझे ये समझ लेना चाहिए कि भाई समझना क्या, it's like just a mindset. एक बार अगर दिमाग में आ गया तो ये बात समझ में आ जाती है और फिर खुशी अपने आसपास रहती है, अपने अंदर ही रहती है। लेकिन the moment I step out, दुनिया में जाते ही फिर से मेरा बिलीफ सिस्टम जो है मुझे खुशी देने की जो चीजें हैं, चलिए ठीक है मैं फिजिकल उसको भी कंफर्ट का मान लूं, फिजिकल अचीवमेंट्स को, इन सब बातों को एक कंफर्ट मान लूं, लेकिन इमोशनल जो डिपेंडेंसी है, बहुत लोग अलग अलग स्तरों पर जीते हैं, कोई इस स्तर पर जीता है कोई, तो जो इमोशनल जो रिलेशनशिप्स में ये होना या वो होना वही खुशी देगा, उससे बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं लगा मुझे। उस बिलीफ सिस्टम को मैं कैसे, उससे कैसे बाहर निकलूंगी,
1: क्योंकि मेजोरिटी जो अनुभव हमें सारा दिन हो रहे हैं ये हमारी मान्यताओं पर आधारित है। जैसे आपने कहा आई बिलीव दिस, अभी तक भी आई बिलीव दैट अदर्स विल गिव मी हैप्पीनेस, तो देन आई लुक्ड फॉर इट देयर, दूसरे ही मुझे खुशी देंगे, ये मेरी मान्यता थी और इसीलिए मैं दूसरों की तरफ उसको ढूंढने में चलती गई। अब थोड़ा सा उस पर वर्क किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो समझ में आया दूसरों से खुशी नहीं मिलने वाली है, ये मेरी अपनी आंतरिक चीज है, तो बिलीफ चेंज हो गया। जैसे ही बिलीफ चेंज होगा अनुभव चेंज हो जाएगा, मेरे जीवन में जो प्राप्ति होने लगेगी वो चेंज हो जाएगी। तो हर स्टेप पर हम क्या बिलीफ बनाकर चल रहे हैं ये बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है।
0: Okay.
1: आप सारा दिन में देखो व्हाट इज द वन थिंग विच यू आर डूइंग कंटिन्यूसली, क्या चल रहा है सारा दिन अंदर, क्या चलता है सारा दिन, आप सोचो। आई विल जस्ट वर्क विद यू ऑन दिस कि व्हाट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली।
0: आई एम थिंकिंग, लाइक
1: थिंकिंग, तो थॉट संकल्प शक्ति ये एक ऐसी चीज है जो एक क्षण भी बंद नहीं हो रही है. इवन हम जब रात को सोने जाते हैं तो मन सोचना बंद नहीं करता. ये हो सकता है कि उसकी गति थोड़ी सी कम हो जाए. जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि हमारा मन 1 मिनट में 25 से 30 संकल्प जेनरेट करता है. 1 मिनट 25 to 30 थॉट्स. दिस इज इन द नॉर्मल स्टेट. ओके, अभी की स्थिति. अगर हम टेंस्ड हो जाएं किसी बात पर तो दिस फिगर विल गो मच हायर. इफ आई एम रिलैक्स्ड तो ये फिगर थोड़ा सा कम हो जाएगा. लेकिन एवरेज इट इज 1 मिनट में 25 से 30 थॉट्स. थ्रू आउट द डे इट विल कम टू अप्रोक्सीमेटली 40,000 to 50,000 थॉट्स इन अ डे. 40,000 से 50,000 संकल्प एक दिन के अंदर. आर वी अवेयर उनकी क्वालिटी क्या है?
0: और एक और बात है, क्या वो अलग अलग है या वो सिमिलर ही रहेंगे?
1: वो ये नहीं, हो सकता है कि आप एक ही विषय को लेकर आप उस पर सोचते रहे. सपोज कल मेरा एग्जाम है तो आज मैं 90% ऑफ द डे आई एम थिंकिंग अबाउट द एग्जाम, बट देयर विल बी डिफरेंट थॉट्स. एक थॉट नहीं होगा. तो थिंकिंग इज समथिंग विच गोज ऑन कंटिन्यूसली. तो हमारी फर्स्ट स्टेज है थॉट. अब जैसे ही हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, वॉट ऑटोमेटिकली गेट्स जेनरेटेड, उसके फलस्वरूप क्या क्रिएट होगा अंदर. जैसे ही आप एक थॉट, एक्शन में भी हम थोड़ा सा बाद में आते हैं. थॉट जेनरेट हुआ, मुझे आइसक्रीम खानी है, लेट्स से. ओके, दिस इज अ थॉट. व्हाट ऑटोमेटिकली गेट्स क्रिएटेड इनसाइड?
0: आई विल गो एंड ट्राई टू,
1: दैट्स आल्सो सेकेंडरी. आई विल गेट अप एंड गो में भी आधा मिनट या 1 मिनट लगेगा, है ना. या सपोज किसी ने मुझे कहा कनुप्रिया आ रही है, इट्स अ थॉट. Now, depending,
0: acknowledgement of it that it has come. Haan. I acknowledge it.
1: Right. So immediately, what will get generated inside first? You know, एक thought create होते ही वो

0: हाथ में है, लेकिन इम्पोर्टेंट है एक थॉट, थॉट के साथ इमिजिएटली फीलिंग. अब सारी मेरी फीलिंग्स जो होती है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, देश के प्रति, दैट विल डेवलप माय, लाइक लेट्स से एवरीथिंग दैट आई फील अबाउट कनुप्रिया विल डेवलप माय एटीट्यूड टुवर्ड्स यू. What is my attitude towards Kanupriya? Kanupriya is a nice person. Kanupriya is not a very nice person. Two different attitudes. ये दुनिया बहुत अच्छी है, ये दुनिया बिल्कुल बेकार है. भारत एक बहुत अच्छा देश है, भारत का कुछ नहीं हो सकता. You know, different attitudes. उसी चीज के बारे में, उसी व्यक्ति के बारे में different attitudes. क्यों? Based on my thoughts about that. तो एक thought generate हुई, उसके फलस्वरूप एक feeling create हुई अंदर. एक चीज के बारे में सारी मेरी जो फीलिंग्स है दैट डेवलप्स माय एटीट्यूड. तो हम कहेंगे मेरा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है या इनके प्रति मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा अच्छा नहीं है. अब जो मेरा एटीट्यूड होगा वो ही फिर
1: एक्शन में
0: आएगा. वो एक्शन एक शब्द के रूप में हो सकता है, वो एक्शन एक कर्म के रूप में हो सकता है, बट इट विल कम आउट नाउ. टिल नाउ दीज थ्री स्टेप्स वर इनसाइड. आई क्रिएट अ थॉट, जनरेट अ फीलिंग, डेवलप एन एटीट्यूड. तीन चीजें अंदर हो गई, ये तीन चीजें रेडी है. एंड नाउ बेस्ड ऑन माई एटीट्यूड आई एम आउट इन टू एक्शन. तो इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स या एक्शन. अब कोई भी एक्शन अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, यू नो स्मोकिंग है, एक्शन है,
1: हैबिट बन जाती
0: है. हैबिट, तो एनी एक्शन बार बार किया, बार बार किया,
1: एंगर भी एक्चुअली वन ऑफ द हैबिट बिकम्स.
0: एब्सोल्युटली. आप देखो एक बार एक ये हो जाए ना कि गुस्सा करना है, गुस्सा करना है, गुस्सा, थोड़े टाइम के बाद गुस्सा करना आपकी एक आदत बन जाएगी.
1: एक्चुअली मैं अगर ये भी कहूँ कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, बार बार ये कहती
0: बार बार, राइट. तो बार बार ये सोचना, कहोगे भी आप बाद में, पहले आप सोच रहे हो. सी वी वन, अभी तक क्या हो रहा है, हम बाहर वाली स्टेजेस की अवेयरनेस है कि हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन सोचने वाली स्टेज की उतनी अवेयरनेस नहीं है अभी. तो जैसे आपने कहा गुस्सा, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, या ये काम गुस्से से हो सकता है, ये काम गुस्से से हो सकता है, ये सोच है. ये सोच बार बार जनरेट करने से मेरा एटीट्यूड क्या बन गया
1: कि मैं गुस्से वाली ही हूँ.
0: तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स कैसे होंगे, बिहेवियर कैसा होगा, और जो बार बार वो हमने किया तो हमारी हैबिट, फिर हम धीरे से हमें ये लेबल मिल जाएगा कि ये तो हर बात में गुस्सा करते हैं. या मैं भी खुद के लिए कहने लगूंगी कि मुझे तो छोटे छोटे बात में गुस्सा आ जाता है. तो गुस्सा करना मेरी आदत है. यू नो वी कम टू दैट. एंड इफ समबडी सेज के यू नो चेंज अ लिटिल बिट, जी नहीं मैं नहीं बदल सकता. You know, now,
1: ये तो मेरा मूल है. You know, like we actually at times say that this is my basics. You can't change your
0: habit. This is my habit. और ये जो सारी habits हमारी बन जाती है, देखो कहाँ से start हुई, एक thought से, thought, feeling, attitude, action, and then habit. Now ये सारी habits put together, all my habits, I have so many habits. तो ये मेरी सारी आदतें जो है, this all put together is a package. And this package is my personality.
1: It's me.
0: It's me. I'll say this is my personality. This is me. So where did the personality start from?
1: From a thought.
0: From a thought. So aaj main jo bhi hu, it all starts from a thought. So agar main jo hu usko badalna chahti hu, to it will start from a
1: thought.
0: So thought went up to personality. Personality taiyar ho gayi. ठीक है. अब ये पर्सनालिटी बहुत जगह जाती है, सारा दिन ऑफिस में डील कर रही है, घर पे डील कर रही है, हर स्टेप पे क्या क्रिएट हो रहा है. मेरा थॉट से पर्सनालिटी तक तो बन गए, पर्सनालिटी हर तरफ कर्म क्षेत्र में जा रही है. तो हर तरफ कर्म करते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए, एट एवरी स्टेप आई एम क्रिएटिंग माय
1: डेस्टिनी. ओके.
0: एट एवरी स्टेप
1: my thought takes me to my destiny.
0: Absolutely.
1: Oh, that's great.
0: That's the truth. That's absolute the truth. And jab hume ye samajh mein aa jata hai, to hume samajh mein aata hai ki my destiny is
1: within me.
0: It's in my hands.
1: Because if I change my thoughts,
0: it will change. There is no such thing as baithkar apne bhagya ko kosna, ji mere to bhagya mein nahi hai.
1: Lekin ek, how is that possible? I like, okay. It's like what? It's a whole cycle.
0: Simple बात है ना. आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, एंटर करते हैं, एंड जैसे ही आप एंटर होते हैं, कोलीग आपसे मिलते हैं जिनका मूड शायद थोड़ा सा आज डिस्टर्ब्ड है. नाउ यू आर कैन बी इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड. वो आपसे मिलते ही थोड़ा सा कुछ
1: रूड है
0: गलत तरह से
1: हाँ
0: उन्होंने बात कर दी, कुछ भी कह

0: हत्या, अगर आप अपने अभी भी पुराने थॉट पैटर्न के साथ चल रहे हैं कि जब उन्होंने गुस्सा किया तो मैं भी वैसे ही बात करूंगी, मैं थोड़ी हूँ कि ऐसे सहन कर लूंगी, मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ चीज, यू नो, उसने ऐसा कह दिया और मैं चुप कर लिया, ये तो कमजोरी की निशानी है, यू नो, दोज ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग. तो मैंने तुरंत
1: being reactive towards you or being, you know, little rude towards you, you are in fact three times right. more cold and rude.
0: हाँ, तो अब जैसे ही वो thought मैंने create की कि आपने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा करना चाहिए, वो मेरी personality में आया, तो मैंने भी आपसे उसी तरह से व्यवहार किया. Have I got a friend now?
1: No. No.
0: You have moved away. My destiny. A person just moved away from me right now. My destiny. ठीक है? यही अगर मेरा thought थोड़ा different होता कि नहीं कोई बात नहीं, ये वैसे बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आज मूड ऑफ है, और भले उनका मूड ऑफ है, मेरा मूड तो बिल्कुल ठीक है. आई कैन मेक हर हैप्पी. यू नो, उनका मूड या वट एवर, या तो क्या हुआ, गुस्सा कर दिया तो कोई बात नहीं. My behavior will be different. And जब आप उस स्थिति में हैं, जब आप, you know, गुस्से में हैं, and you're feeling down, and still if I can accept you, and still if I can be nice with you, what have I just got?
1: A friend.
0: A friend. Destiny.
1: Oh, one.
0: Two different destinies, ना? एक में आप मेरे नजदीक आ गए संबंध में, और एक में बिल्कुल दूर चले गए, तो दो different destinies ही तो हैं. लेकिन इनको create किसने किया?
1: मैंने खुद कर दिया. Great. So हम
0: at every step, at every step, every relationship, every job, every career opportunity, everything.
1: पर ये हम उसको अपने आप को उस वक्त कैसे बताएंगे, you know, like...
0: नहीं, but it's not कि हम सारा दिन conscious होके उसमें चलते हैं कि I'm creating my destiny, I'm creating my destiny, but it's a fact. मतलब अगर हमें अपने साथ कुछ ऐसा होता हुआ लग रहा है जो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, I cannot sit back and say कि you know ये तो मेरे हाथ में नहीं है, it's totally in my hands. That's one thing.
1: I should take a pause.
0: Yeah, stop, look at it and देख लें कि इसको कैसे rectify करना. Let's say कि आपका व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है. I cannot sit back and say कि जी मेरी तो इनसे नहीं बनती. मेरे को अपना effort करना पड़ेगा by going into that cycle. कि मेरी thought आपके प्रति क्या होगी. अब इसमें भी एक और stage आ जाती है, जैसे thought से हम personality तक पहुंचे, personality से destiny पर हम आए. Thought भी किस basis पे create होगी? थॉट भी आज जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे क्वालिटी के थॉट्स कैसे क्रिएट करें, तो उनका भी तो कोई सोर्स होना चाहिए ना. किस क्या स्रोत है,
1: जैसे हम
0: फर्स्ट आई नीड टू नो द सोर्स. जो हमारे थॉट्स का या संकल्पों का स्रोत है, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस. यू नो, सपोज आप, मैं आपसे 10 बार मिली हूँ पहले, और 10 बार आपने मेरे से ठीक से बात नहीं की, तो जब आप 11वीं बार मिलेंगे वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस वो थॉट ट्रिगर करेगा कि नहीं ये तो ठीक से बात नहीं करते. तो दैट थॉट विल गेट जनरेटेड, इट विल कम इनटू माय पर्सनालिटी. तो एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, दूसरा है इन्फॉर्मेशन. यू नो, सारा दिन में चारों तरफ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सपोज आपके आने से पहले मुझे चार लोगों ने आपके बारे में बता दिया, एंड इट्स ऑल फिल्ड इन. तो जैसे ही आप आएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे अंदर भरी हुई है वो एक थॉट को ट्रिगर करेगी कि नहीं, जैसे कि मेरा आधा एटीट्यूड तो ऑलरेडी आपके प्रति बन चुका है बेस्ड ऑन व्हाट इन्फॉर्मेशन आई हैड गॉट. तो दूसरी स्टेज है इन्फॉर्मेशन. सारा दिन में मेजोरिटी आज जो हमें नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, दैट्स बिकॉज मे बी वी आर सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन चारों तरफ से. यू नो, सभी आप देखो, शाम को आपका बच्चा घर लेट आए, पहली थॉट आपको आएगी
1: कि कुछ होना गया हो.
0: सी, इट वाज सो नेचुरल.
1: या
0: इट वाज सो नेचुरल. एंड बच्चा मोस्टली घर पहुंच जाता है, लेकिन जितनी बार वो लेट आएगा,
1: yes.
0: तो हम उसी प्रोसेस से गुजरेंगे कि कुछ ना कुछ बुरा हुआ है. कुछ अच्छा हुआ होगा और वो लेट हो गया,
1: ऐसा नहीं हो सकता,
0: ऐसा हो नहीं सकता.
1: इट्स बिकम
0: सो, इट्स बिकम सो कि नहीं, हो ही नहीं सकता, कुछ बुरा ही हुआ है. क्यों, ये क्यों थॉट आता होगा? यू नो, दिस ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों अगर कोई लेट है तो एक्सीडेंट हुआ है या व्हाटएवर, यू नो, एक्स वाई जेड, इस तरह के थॉट्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम सवेरे सवेरे उठते हैं और जब हम सबसे पहले अपना अखबार सुबह पढ़ते हैं, हमारा माइंड इतना फ्रेश होता है उस टाइम, और सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो उसमें भरते हैं, यहाँ ये हुआ,
1: ब्लू लाइन से यहाँ मारा, ये एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, सो वी आर लाइक सुबह सुबह, यू नो,
0: सुबह सुबह हमने वो भर लिया, माइंड एकदम क्लीन था. फाउंडेशन वाला समय है, फाउंडेशन के टाइम आप क्या भरेंगे उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है. सुबह

0: के लगभग 1.5-2 घंटे हमारी जो ग्रहण करने की शक्ति है वो बहुत हाई है, उसमें हमें बहुत ध्यान से भरना चाहिए। पेपर पढ़ना, मीडिया, न्यूज़ देखना, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट देयर इज टू बी अ लिटिल गैप। माय फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी पॉजिटिव, सैचुरेट हो जाना चाहिए वो ब्लॉटिंग पेपर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि सवेरे के 2 घंटे के बाद हम ये सैचुरेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम कुछ ज्यादा भरते भी हैं तो वो बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करता। अब क्या हो रहा है, हम फाउंडेशन लेयर ही नेगेटिव डाल देते हैं। जितना भी आज हम पढ़ते हैं सवेरे, इट्स मोर नेगेटिव। अब उसके बाद आप कितना भी एफर्ट करो कि मुझे पॉजिटिव सोचना है,
1: नहीं आएगा पॉजिटिव।
0: भोजन ही वही वाला खाया था ना सुबह, तो वही वाली शक्ति का निर्माण होगा। तो इसलिए इंफॉर्मेशन हमारे थॉट्स पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक हुआ पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक हुआ इंफॉर्मेशन, एंड तीसरा है बिलीफ सिस्टम।
1: बिलीफ
0: बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यता क्या है। हमारी मान्यता है कि गुस्से से ही काम बनता है, ये मान्यता है। लेट्स से,
1: ये गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं या
0: हाँ,
1: कोई
0: गुस्सा
1: बात
0: नहीं
1: नहीं।
0: करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, ये किसने बताया, कुछ नहीं, ये हमारी अपनी धारणा है। और अगर मैंने ये धारणा है तो मैं उसी धारणा को तो लेकर काम करूंगी ना। गुस्से से ही काम होगा, प्यार से लोग बिगड़ जाते हैं। हमें क्या अच्छा लगता है कि लोग हमें हमसे किस तरह से बात करें, प्यार से, लेकिन दूसरों के प्रति हमारी क्या धारणा है कि गुस्सा करने से ही काम होगा, प्यार से बिगड़ जाते हैं। नाउ दैट्स माई बिलीफ। नाउ विद दिस बिलीफ आई गो टू वर्क, तो हाउ विल आई वर्क विद माई कोलीग्स, हाउ विल आई वर्क विद माई जूनियर्स। उसी तरह ना, कि गुस्से से ही काम करना है, गुस्से से ही काम
1: ओके, सो
0: करना
1: वी आर एक्चुअली इट्स अ होल
0: है,
1: प्रोसेस
0: इट्स
1: वी
0: अ
1: आर
0: होल प्रोसेस।
1: अंडरस्टैंड
0: तो
1: थॉट
0: पर्सनालिटी कैसे
1: जनरेशन।
0: हो गई आपकी, डेस्टिनी क्या हो गई आपकी, कि आपकी वर्क फोर्स कैसी है, क्यों, क्योंकि आपने ये बिलीफ रखा था
1: इट्स ऑल
0: कि
1: नेगेटिव
0: गुस्से
1: यू नो
0: से काम।
1: एंगर। हाँ
0: बहुत सारी ऐसी बिलीफ्स हैं। सुबह सुबह हम उठते हैं, हम हॉरोस्कोप पढ़ते हैं,
1: हाँ और वो पढ़ते ही सबसे पहले चीज, ओहो क्या होगा आज, कैसा होगा। यस
0: राइट, है ना।
1: डेफिनेटली,
0: एंड जब हम उस हॉरोस्को, एंड वी ऑल्सो नो के हाउ फार इज इट प्रैक्टिकल,
1: यस यस यस
0: राइट।
1: डेफिनेटली।
0: 600 to 700 crore पीपल डिवाइडेड बाय 12 zodiac signs कुड नॉट हैव द
1: नो
0: सेम
1: नो एंड
0: फ्यूचर फॉर
1: इट्स
0: द
1: लाइक
0: डे।
1: एवरीबडी नोज दैट व्हाई इट्स
0: एवरीबडी
1: लाइक
0: नोज। एंड आप मोस्टली अगर सोचो ना, तो लोग कहते हैं जी हम पढ़ रहे हैं, हम बहुत ज्यादा बिलीव नहीं
1: नो
0: करते
1: नो नो बट
0: इसमें,
1: इट्स समवेयर
0: बट इट
1: स्टिल।
0: फिट्स। फर्स्ट इट्स इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन आपने अंदर भरी, आपने पढ़ लिया, आज का आपका दिन वैसे काफी ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से रहना, शायद कोई व्यक्ति आपको धोखा दे के चला जाए, यू नो समथिंग लाइक दैट। आप गए अपने काम पे, गए फ्रेंड सर्कल में गए, लेकिन सारा दिन यू आर लुकिंग आउट फॉर दैट पर्सन सबकॉन्शियसली, कि कोई ना कोई आज धोखा देने वाला है, कोई ना कोई आज धोखा देने वाला, विदाउट इवन बीइंग अवेयर
1: सो
0: वो
1: नाउ
0: है।
1: दिस
0: लेकिन
1: थॉट हैज क्रिएटेड एंड मे बी यू नो कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है उसे मैं धोखेबाज समझ के अपनी डेस्टिनी पर।
0: बिल्कुल,
1: ओ माई गॉड,
0: क्योंकि जो जितनी, एंड ऐसा भी होता है कई बार कि जो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक वाइब्रेशन है। तो अगर आप मेरे पास आए हैं और एक्चुअली आपका कुछ धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, झूठ बोलने का कोई इंटेंशन भी नहीं था, बट आई एम सेंडिंग आउट दैट एनर्जी टू यू कि आप मुझे धोखा देंगे, आप मुझे धोखा देंगे, एंड ऑटोमेटिकली दैट एनर्जी विल ट्रेवल टूवर्ड्स यू एंड इट विल क्रिएट दैट थॉट विद इन यू एंड यू विल गेट इंस्टिगेटेड टू बिहेव लाइक दैट टू मी। आप ऑटोमेटिकली झूठ बोलने वाले नहीं थे, लेकिन आप बोलेंगे क्योंकि मैंने वो आपको फ्लड किया है उस एनर्जी से। इट्स ऑल एनर्जी अराउंड एवरीवेयर। तो हमारी बिलीफ सिस्टम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रियलाइज नहीं करते हैं कि थॉट पावर मतलब कितना कुछ कर रही है। यू नो आज इतना फियर जेनरेट हो गया है, हम कहते हैं जी ये काम करना है तो ये पहन लीजिए, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपकी ग्रहचारी बैठी हुई है, आप ये वाली अंगूठी पहन लीजिए, विच इज ऑल ओके,
1: That's what
0: देयर
1: I'm
0: इज
1: saying. Even I was
0: नथिंग।
1: very unwell. Somebody made me wear this, you know, black thread because
0: राइट,
1: कि आप नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे.
0: वो ठीक है, मतलब ओके, उसके पीछे कोई भावना है, उसके पीछे कोई विज्ञान भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए ये सोचने वाली बात है कि जब आपको वो धागा पहनाया गया, तब आपको बताया गया कि आप ये धागा पहनिए आप ठीक हो जाएंगे, तो आपने मान लिया उस बात को, आपने स्वीकार कर लिया। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे वो धागा आपके लिए काम नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: तो अगेन दिस इज माय बिलीफ.
0: दिस इज बिलीफ, आपने वो धागा पहना एंड आपने बिलीव किया कि ये धागा पहनने से मैं ठीक हो जाऊंगी, तो एक्चुअली वो फिजिकल धागा बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जो थॉट पावर है, इसको पहनने से मैं ठीक हो
1: और
0: जाऊंगी,
1: उसने मेरी डेस्टिनी क्रिएट कर दी.
0: उसने आपको ठीक किया।
1: वही डेस्टिनी, मेरी डेस्टिनी है बन गई.
0: आपसे
1: वाह, दिस इज
0: अगर कोई
1: वंडरफुल.
0: आपको कह दे जी आपके ऊपर अभी ये दशा बैठी हुई है, अगले 6 महीने तक आप जो भी करेंगे इट्स गोइंग टू फेल, तो आप ये मान लेते हैं,
1: छोड़ देते हैं ना फिर आपके
0: तो आप गिव अप कर देते हैं। अगर कोई कोशिश भी करते हैं, सबकॉन्शियस ये थॉट है, लेकिन जी चलने वाला तो नहीं है, ये चलने वाला नहीं, क्योंकि जी किसी ने मुझे बताया था ये चलने वाला नहीं है, तो आपका एफर्ट भी कितना होगा उसके अंदर। ठीक है, उसी 6 महीने के दौरान आपको कोई और दूसरा व्यक्ति मिलता है, कहते जी ये अंगूठी पहन लो, आपकी ग्रहचारी उतर गई। आपने अंगूठी पहन ली, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, आपका बिलीफ चेंज हो गया, ये अंगूठी पहन ली है अब मेरा सब कुछ ठीक चलने वाला है। इज दिस व्हाट्स डूइंग द वर्क? नहीं, तो ये दिस शुड वर्क ऑन एवरीबडी बट इट डजंट। ये उन्हीं पर काम करता है हु बिलीव इन इट। जो मानेगा कि ये अंगूठी पहनने से मेरा काम ठीक हो जाएगा, उसी का काम ठीक होगा। इसका मतलब वो अंगूठी बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले कर रही है, मेरी थॉट के ये अंगूठी पहनने से मेरा काम ठीक हो जाएगा वो मुझे सफलता दिलाती है। तो ऑल द पावर इज विद इन मी, ऑल द एनर्जी इज विद इन मी। व्हाई आर वी गेटिंग डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड सो मच फियर फैक्टर? बिकॉज वी नॉट श्योर, यू नो, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट इनर पावर दैट वी हैव। हमारी जो पोटेंशियल है, जो थॉट पावर है, इट्स लाइक एनर्जी।
1: Wonderful. And the way you've said it, you know, like it's a whole cycle. Thoughts say we move towards feeling. Feeling say we move towards attitude. And attitude creates personality.
0: Action mein aata hai wo attitude. Definitely. Fir personality banti hai.
1: And right? Then it leads us to the, our destiny. Lekin biggest aspect of the whole process, our destiny, is a thought generation. Yeah.
0: And वो हमारे beliefs पर भी based है.
1: That depends upon our beliefs. Yeah. So finally, we have to somewhere look at our beliefs. Yeah. You know?
0: एंड कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पूरी जीवन कुछ गलत मान्यताओं को लेकर चलते हैं। जैसे आजकल बहुत कॉमन मान्यता है, टेंशन तो नेचुरल है। किसने बताया? हमने मान लिया। और क्योंकि हमने मान लिया तो हम उससे मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं करते। हमने स्वीकार कर लिया है कि टेंशन बिल्कुल नेचुरल है।
1: तो शिवानी, अगले कड़ी में हम टेंशन पे ही क्यों ना बात करें, क्योंकि अभी वक्त है कि आपसे इजाजत लें। और बहुत अच्छा लगा आज हमने खुशी को कैसे अपने अंदर कायम रखें और किस तरह से ये पूरा एक मेरा एक थॉट मेरी डेस्टिनी बन सकता है। एंड हाउ टू हैव द रियल थॉट्स, यू नो, द राइट थॉट्स, द राइट थॉट्स, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसा थॉट है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो कुल बुला रहे हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके सभी सवालों को हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में शामिल भी करें। आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9873666555। और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अगली कड़ी में हम टेंशन का ही मुद्दा उठाएंगे कि क्यों है इतनी टेंशन, और टेंशन क्या कोई बाहर का व्यक्ति क्रिएट करता है या हम अपने अंदर से ही अपने थॉट्स को ही टेंशन में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त है आपसे इजाजत देने का। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हो गया आएगा आएगा आएगा ये क्या हो गया
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भीमाबाई इंदौर के शासक महाराजा यशवंत राव होलकर की पुत्री थी। राजा अपनी एक अतीव सुंदर दासी तुलसाबाई के प्रति आसक्त हो गए थे और राजकाज की ओर उदासीन होकर वे अपना अधिकांश समय तुलसाबाई के साथ व्यतीत करने लगे। उनकी पुत्री भीमाबाई अपने पिता यशवंत राव होलकर को यथासंभव तुलसाबाई से दूर रखने का प्रयत्न करने लगी, यहाँ तक कि वो राजकाज में भी उनकी सहायता करने लगी। तुलसाबाई को भीमाबाई का यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया और उन्होंने परामर्श दिया कि भीमाबाई की शादी कर दी जाए। दुर्भाग्य ये हुआ कि कुछ समय पश्चात भीमाबाई के पति का असमय देहांत हो गया। भीमाबाई ने राज्य शासन स्वयं अपने हाथों में ले लिया। वो अपनी योग्य दादी महारानी अहिल्याबाई होलकर की पौत्री जो थी, शासन प्रबंध उनको विरासत में मिला था। उन्होंने अपने शासनकाल में कृषि, उद्योग और व्यापार संबंधी अनेक सुधार किए। शासन संचालन की उनकी योग्यता देखकर पेशवा और महाराजा सिंधिया उनके प्रशंसक हो गए। अपने राज्य का संचालन करने के अतिरिक्त वे अपने पिता महाराजा यशवंत राव से भी संपर्क बनाए हुए थीं और अंग्रेजों की चाल के विरुद्ध उन्हें सावधान करती रहती थीं। अंग्रेजों ने इसका बदला लेने के लिए भीमाबाई के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भीमाबाई के व्यक्तित्व में एक कुशल योद्धा छिपा हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी सेना के साथ छापामार युद्ध की नीति अपनाई और कई युद्धों में अंग्रेजी सेनाओं को परास्त किया। भीमाखेड़ी गांव के युद्ध में उन्होंने अंग्रेजी सेना को करारी शिकस्त दी। इसी के कारण उसका नाम भीमाखेड़ी पड़ गया। एक वीरांगना के रूप में भीमाबाई ने इतिहास में अपना यश सुरक्षित रखा है।

इस गीत को सुनते ही मुझे याद आया, हमारे देश में अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वालों में स्त्रियां भी पीछे नहीं हैं। राजे रजवाड़ों ने भी अंग्रेजी हुकूमतों का विरोध किया। कई राजाओं ने अपनी सैन्य शक्ति को कमजोर आंककर सोचा कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर न करने में ही भलाई है, तो कई रियासतों ने अपने आत्मसम्मान के लिए जय पराजय की चिंता नहीं की और अंग्रेजी सेनाओं से जमकर टक्कर ली। इनमें राजघरानों की स्त्रियां भी शामिल थीं। इतिहास गवाह है कि महलों की दीवारों से बाहर निकलकर स्त्रियों ने भी अंग्रेजी सेनाओं को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। आज हम देश की ऐसी ही दो वीरांगनाओं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पहली क्रांति कथा इंदौर के होलकर घराने से शुरू होती है। ब्रिटिश हुकूमत अपनी राज्य हड़प नीति के तहत इंदौर के होलकर राज्य पर घात लगाए बैठी थी। उसकी कोशिश थी जैसे ही अवसर मिले इंदौर राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लें। होलकर राजघराने की वीरांगना भीमाबाई ने अंग्रेजों की इस हड़प नीति के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छेड़ा। सन 1817 में महितपुर में केवल 2500 सैनिकों की टुकड़ी के साथ उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं से लोहा लिया था।

0: इंदौर के शासक महाराजा यशवंत राव होलकर की पुत्री भीमाबाई विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, लेकिन उनका भाग्य उनके व्यक्तित्व की तरह तेजस्वी नहीं था। सन 1805 में सरदार गोविंद राव बोलिया से भीमाबाई का विवाह हुआ, लेकिन पति की असमय मृत्यु के बाद भीमा ने अपने राज्य की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ली। भीमाबाई के प्रशासन में दादी अहिल्याबाई की झलक दिखाई देती थी। उनकी योग्यता को पेशवा और महाराजा सिंधिया ने भी देखा, परखा और उनके प्रशंसक हो।
1: पेशवा जी, सचमुच ये भीमाबाई की योग्यता को देखकर हम तो हैरान हो गए। यूं तो उनके पिता यशवंत राव होलकर भी बड़ी चुस्ती से राज्य संचालन करते रहे हैं, लेकिन भीमाबाई की तो बात ही कुछ और है। जिस खूबी से उन्होंने अपनी रियासत में खेती, उद्योग और व्यापार के लिए सुधार किए हैं, वो तो सचमुच प्रशंसा की पात्र है।
2: आप सही कह रहे हैं सिंधिया महाराज, मुझे तो लगता है भीमाबाई ने अपने पिता से ज्यादा अपनी दादी अहिल्याबाई होलकर के गुण विरासत में पाए हैं, क्योंकि अंग्रेजों की बुरी दृष्टि के बावजूद यशवंत राव होलकर तो तुलसाबाई के मोहजाल में फंसकर कुछ लापरवाह हो गए, लेकिन भीमाबाई ने पहले तो अपने राज्य को अपने रिश्तेदारों से बचाया और फिर पूरी रियासत का कायाकल्प ही कर दिया। आप देखिएगा, लोग भीमाबाई को देवी अहिल्या की तरह ही पूजेंगे।
1: सच कहते हो पेशवा, बेटियां भी मौका मिलने पर अपने कुल का नाम रोशन कर देती हैं। एक दिन भीमाबाई से मिलने की इच्छा है, हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं।
2: तो चलते हैं एक दिन महितपुर की तरफ।
1: ठीक है।
0: उधर भीमाबाई ने भी अपने पिता यशवंतराव होलकर से संपर्क बनाए रखा था। राज्य संचालन में वे अपने पिता से विचार विमर्श भी करती और अंग्रेजों की चाल के विरुद्ध उन्हें सावधान भी करती रहती थी।
3: पिताश्री, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्षमा कीजिएगा, छोटे मुंह बड़ी बात कह रही हूँ।
4: बोलो पुत्री भीमा, तुम हमारी बेटी ही नहीं बल्कि सलाहकार भी हो। फिर जिस खूबी से तुमने अपना राजकाज संभाल लिया है, उस पर तो किसी भी पिता को गर्व होगा।
3: पिताश्री, अंग्रेजी हुकूमत जिस तरह नित नई शर्तें रखती जा रही है और आप उन्हें मंजूर करते जा रहे हैं, समूचे राज्य के लिए खतरनाक होगा। मैं नहीं मानती कि ब्रिटिश हुकूमत की राज्य हड़प नीति से आप अनभिज्ञ हैं, लेकिन जिस कारण आप अपने राजकाज में लापरवाही कर रहे हैं, वो होलकर महाराज को शोभा नहीं देता।
4: तुम कहना क्या चाह रही हो भीमा? हैं?
3: आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं ही नहीं बल्कि ये बात दूसरी रियासतों में भी चर्चा का विषय बनती जा रही है। कड़ी चुनौतियों से सामना करने की वजह अगर आप दामन बचाने लगेंगे तो सोचिए, आपको वीर पुरुष कहते हुए आपकी प्रजा को कितना संकोच होगा। आप सौंदर्य के मोहजाल में।
4: चुप! तुम अपनी सीमाएं लांघ रही हो। मुझे पता है तुम हमेशा से तुलसाबाई के खिलाफ रही हो, हालांकि उसी ने तुम्हारा विवाह करवाया था। अब यदि सरदार बोलिया अधिक समय तक जीवित नहीं रहे तो इसमें उनका क्या दोष है?
3: पिताश्री, मैं अतीत के पन्नों को पलटना नहीं चाहती। आप मेरी बात को सही अर्थ में समझने का प्रयत्न करेंगे तो मुझे खुशी होगी। और मैं बता दूं कि जिस दिन अवसर आएगा उस दिन अंग्रेजों की सेनाओं से टकराने में भी मैं पल भर की देर नहीं करूंगी। सारी दुनिया देखेगी कि महाराजा यशवंतराव होलकर की पुत्री और देवी अहिल्याबाई की पौत्री किस तरह अंग्रेजी सेनाओं पर टूट पड़ती है।
0: अंग्रेजी हुक्मरानों ने जब सुना कि भीमाबाई उनकी चालों के खिलाफ महाराजा होलकर को भी सावधान करती रहती है, तो अंग्रेजों ने इसका बदला भीमाबाई से लेने के लिए उनके राज्य पर ही आक्रमण कर दिया। सन 1817 की बात है, अंग्रेजी सेनाएं पूरे लाव लश्कर के साथ भीमाबाई की छोटी सी टुकड़ी पर टूट पड़ी। भीमाबाई के व्यक्तित्व में एक कुशल योद्धा भी छुपा हुआ था।
3: सैनिकों, हमें पता है कि हमारे पास ना तो उतने हथियार है ना उतना गोला बारूद कि जिनसे अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध को जीता जा सके, लेकिन हमारे पास 2,500 ही सही, लेकिन अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण रोछावर करने का संकल्प लिए जावाद सैनिकों की टुकड़ी तो है, और युद्ध हथियारों से नहीं लड़े जाते, उन्हें जीतने के लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। हम अंग्रेजों को अपने राज्य की 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े।
2: लेकिन महारानी, सीधे युद्ध में हम अंग्रेजी सेनाओं का मुकाबला शायद ही कर पाए।
3: तो फिर ठीक है, हम छापामार युद्ध की नीति को अपनाएंगे।
2: जी।
3: हमारी सेना छोटे छोटे समूह में रात बिरात समय असमय अंग्रेजी सैनिकों पर छापा मारो की तरह टूट पड़े, जैसे झाड़ियों से चीता निकलता है और पल भर में अपने शिकार को खत्म कर देता है। यही हश्र होगा अंग्रेज सैनिकों का। भीमाबाई की सेना निश्चय ही विजय होगी। आप युद्ध की तैयारी करें और हम युद्ध की घोषणा करते हैं।
0: इस युद्ध में भीमाबाई की सेना ने अंग्रेजी सेनाओं से जबरदस्त टक्कर ली और अंग्रेजी सेना को अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। ये युद्ध जिस गांव में लड़ा गया, बाद में उसका नाम भीमाबाई के नाम पर भीमा खेड़ी रख दिया गया। एक वीरांगना के रूप में भीमाबाई का नाम पूरे यश के साथ सुरक्षित है।

0: मैना नाना साहब पेशवा की पुत्री थी। 1857 के महासमर में जब अंग्रेजों का विजय क्रम आरंभ हुआ तो छिन्न भिन्न सेना को एकत्र कर एक और संगठित मोर्चा लेने की दृष्टि से नाना साहब को जाना पड़ा। नाना मैना को बिठूर के राजमहल में छोड़कर जाने के पक्ष में नहीं थे। तब मैना ने उन्हें समझाया कि महल में रहकर क्रांतिकारियों की जो सूचनाएं समय समय पर वो दे सकती थी वे सूचनाएं सेवक नहीं दे सकते थे। नाना के जाने के बाद अंग्रेजों ने बिठूर के महल पर छापा मारकर उसे गोलों के प्रहार से गिराना चाहा। तब मैना ने सेनापति से तर्क करके महल को गिरने से बचाने का प्रयास किया। अभी तर्क चल ही रहा था कि अंग्रेज प्रधान सेनापति आ गया और उसने न सिर्फ राजमहल को गिराने का बल्कि मैना को गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया। मैना को गिरफ्तार करके जब नाना साहब और अन्य क्रांतिकारियों के पते ठिकाने पूछे गए तो मैना साफ मुकर गई। तब अंग्रेज अधिकारियों ने उसे जिंदा जला देने की धमकी दी। धमकी को सुनकर मैना ने कहा कि सच्चे क्रांतिकारी को मृत्यु भय या कोई प्रलोभन कर्तव्य से विचलित नहीं कर सकते। मैना ने अपनी मृत्यु को ब्रिटिश हुकूमत के पतन का कारण बनने की भविष्यवाणी भी की, जिसे सुनकर अंग्रेज सेनापति तिलमिला उठा। उसने मैना को वृक्ष से बांधकर जला देने का हुक्म दे डाला। जलाने से पहले मैना को एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए नाना साहब का पता बताने की पेशकश की गई। तब मैना ने कहा कि एक जन्म तो क्या, अगर कई जन्मों तक भी उसे जलाया जाए तो भी वो क्रांतिकारियों का पता नहीं बताएगी। मैना ने कहा कि भारत की वीरांगनाओं को आग की लपटें चंदन की तरह शीतल लगती हैं। मैना अविचल खड़ी रही और लपटें धू धू करके उसके शरीर को जलाती गईं। भले ही 100 साल लगे हों, मगर जब 15 अगस्त 1947 को आजादी का सूरज अवतरित हुआ तो मैना की भविष्यवाणी का उजास उसमें समाहित था।
1: बच्चों, आज की दूसरी क्रांति कथा में भी एक और क्रांतिकारी महिला की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है बिठूर के राजमहल से। अंग्रेजों का विजय क्रम आरंभ हो चुका था। नाना साहब पेशवा ने अंग्रेजी सेनाओं से मोर्चा लेने के लिए अपनी छिन्न भिन्न सेना को संगठित करने की ठानी, लेकिन अपनी बेटी मैना को लेकर उनके मन में असमंजस बना हुआ था।
2: बेटिया, तुम्हें पता है कि सेना को संगठित करने के लिए हमारा बिठूर छोड़ना कितना जरूरी है? अगर हम यहीं रुके रहे तो अंग्रेजी सेनाओं का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैना बिटिया, मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैं फिर कहता हूं, तुम हमारे साथ चलो। इस महल को हम किसी सेवक की देखरेख में छोड़ सकते हैं।
3: पिताजी, हम महल को किसी सेवक की देखरेख में छोड़ें या फिर उसे सूना छोड़ दें, दोनों स्थितियों में क्या अंतर पड़ता है? प्रश्न तो इस बात का है कि यहाँ रहकर क्रांतिकारियों की जो सूचना समय समय पर मैं आपको दे सकती हूँ वे सूचनाएं कोई सेवक तो नहीं दे सकता। इसलिए मैं स्वयं यहाँ रहना चाहती हूँ। और फिर ये महल तो मेरा घर है, ये बिठूर मेरी मातृभूमि है। अगर मेरा जीवन इसकी रक्षा के काम आ जाए तो भी क्या बुरा है?
2: पर बेटी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारा यहाँ अकेले रहना खतरनाक भी हो सकता है। इन वैश्य अंग्रेजों से इंसानियत की उम्मीद करना बेवकूफी है।
3: पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें। आप अपने गंतव्य की ओर निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। मैं यहाँ राजमहल में सुरक्षित रहने का प्रयास करूंगी। आपके सेवक तो है ही यहाँ, फिर इस महल के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। देखते हैं इस आंख में चोली में अंग्रेज जीतते हैं या आपकी बेटी मैना।
2: ठीक है मैना बिटिया, अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटा, हम चलते हैं।
4: बिठूर के राजमहल में मैना अकेली रह गई। हालांकि कुछ सेवक मैना की सेवा के लिए छोड़ दिए गए थे। एक दिन गुप्तचरों की सूचना पर अंग्रेज सेनापति हे ने बिठूर के राजमहल पर छापा मारकर सेवकों को कैद कर लिया, लेकिन मैना उनके हाथ नहीं लग पाई।
5: हम पूछता है राजकुमारी मैना, आखिर गया तो किधर को गया? उसको जमीन का गया या आसमान? लड़की है या कोई चिड़िया? तुम सब कोई काम का नहीं है।
6: सर, हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं मिली। हो सकता है वो महल छोड़कर चली गई हो।
5: नहीं होने को सकता, हमारा पास पक्का खबर है, मैना इसी महल में है। तुम लोग ऐसा करो कि टोपचियों को बोलो महल पर टोप चलाए और पूरे महल को मिट्टी में मिला दो। प्रिंसेस मैना, हम आपको आखिरी वार्निंग देता है, महल से बाहर आ जाओ, नहीं तो हमारे पास ब्रिटिश हुकूमत का ऑर्डर है, हम इस महल को चोप से उड़ा देंगे। अपनी जान प्यारी है तो बाहर निकल आओ। हम तीन तक गिनेंगे, 1, 2, सैनिकों तैयार हो जाओ।
7: ठहरो, ठहरो, मैं कहती हूँ रुक जाओ। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम मुझे पकड़ो, महल को क्यों गिराने पर तुले हो?
5: आपकी आवाज सुनाई देता है पर आप दिखाई नहीं देता। प्रिंसेस बाहर आओ।
8: हुजूर, हमने महल का कोना कोना छान डाला था, लेकिन लेकिन ये लड़की कहाँ से आ टपकी?
6: लगता है धरती फोड़कर बाहर निकल गई है।
7: हाँ, मैं धरती की बेटी हूँ।
5: लेकिन प्रिंसेस, तुम चाहती क्या हो?
7: मैं चाहती हूँ कि बिठूर के इस महल को गिराया न जाए।
5: लेकिन इसको बचाने से क्या होगा, तुमको क्या मिलेगा?
7: और इसे गिराने से तुम्हें क्या मिलेगा?
5: ये महल ब्रिटिश सरकार के दुश्मन नाना साहब का है। सरकार ने इसको खत्म करने का ऑर्डर दिया है।
7: सरकार का नुकसान नाना साहब ने किया है या इस ईंटगारे के महल ने? नाना साहब का बदला इन दीवारों से लेने में कौन सी वीरता है?
5: एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, युद्ध में सब कुछ जायज है। तुम हमको जानता नहीं है, हमको तुमसे बात करने का भी ऑर्डर नहीं है। हमारा अफसर बोला उड़ा दो, तुमको महल उड़ाना है। तुम हमको जानते नहीं है।
7: मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, आप सेनापति हे हैं।
5: लड़के, तुमको हमारा नाम कैसे मालूम?
7: भूल गए, आप मेरे पिता के दरबार में आया करते थे। आपकी पुत्री मैरी से मेरी घनिष्ठ मित्रता रही है।
5: आहा, अब तुम सामने आया तो हम पहचाना, तुम हमारे डॉक्टर का फ्रेंड है। अब पहचान लिया तुमको, वो तुमको बहुत याद करती थी। मुझे मालूम है, जब मेरी डॉटर का डेथ हुआ था तो तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। मुझको याद आ गया, अच्छी तरह याद आ गया। तुम कितनी बड़ी हो गई प्रिंसेस, आज मेरी होती तो वो भी इतनी बड़ी होती।
7: ये क्या, सेनापति हे की आंखों में आंसू? मैं तो समझती थी कि आप सिर्फ एक सेनापति हैं, सेनापति, कोई इंसान नहीं।
5: मैं भी इंसान हूँ, पिता भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मुझे कंपनी सरकार का ऑर्डर मानना है। तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे अपना काम करने दो।
9: सर, जनरल आउटराम आ रहे हैं।
5: जनरल आ रहे हैं, जनरल आ रहे हैं।

0: की मातृभूमि है ये।
1: ऑफिसर,
2: व्हाट है ऑफिसर, अभी चक महल को गिराया क्यों नहीं गया?
3: नाना साहब की लड़की मैना इस महल को नहीं गिराने का प्रार्थना करती है।
2: लेकिन आप इसका बात सुनता क्यों है? जो ऑर्डर दिया है उसका पालन कीजिए।
3: सब ये लड़की मेरी बेटी जैसी है, उसकी बचपन की दोस्त रही है।
2: हम कुछ नहीं जानता, इस सब कहानी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो बस इस महल को गिराना मंशा है।
3: जनरल, क्या नाना साहब का ये महल किसी तरह बच सकता है?
2: What are you talking है? तुम क्या बोलता है? गवर्नर जनरल के ऑर्डर के बिना इसे कोई नहीं बचा सकता।
3: क्यों ना लॉर्ड कैनिंग से इस महल को बचाने का परमिशन ले लिया जाए?
2: नो, आई डोंट एग्री। मैं तुम्हारा बात नहीं मान सकता है। एक सैनिक को इमोशनल नहीं होना मंशा। सोल्जर्स, चुप चलाओ और महल को गिरा दो, लेकिन इससे पहले उस लड़की को गिरफ्तार कर लो।
4: एक बार फिर गोरे सैनिक महल की तरफ झपटे। उन्होंने मैना का पीछा किया, लेकिन एक बार फिर मैना गायब हो चुकी थी। जनरल आउटरम के आदेश पर तोपें दागी गई और देखते देखते राजमहल को ध्वस्त कर दिया गया। प्रिंसेस किधर को गया?
2: अब वो भी इस मलबे में दबकर मर गया होगा। तुम यहां से चलने का तैयारी करो, सवेरे हमको आगे चलना है।
4: पस्त महल की मिट्टी हो चुकी दीवारों के बीच सेनापति हे खामोश बैठा था। उसे राजकुमारी मैना और अपनी बेटी मैरी याद आ रहे थे। तभी राजकुमारी मैना एक तलघर से निकलकर बाहर आई। अपने गिरे हुए महल को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी।
0: नहीं, मेरा महल ध्वस्त कर दिया, मेरा महल ध्वस्त कर दिया।
4: इस समय मैना भूल गई कि उसे भी कोई देख रहा है। अंग्रेज सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सिहनी अंग्रेजों के जाल में फंस चुकी थी।
2: प्रिंसेस मैना, आखिर तुम हमारे जाल में फंस गई हो। अब हमें नाना साहेब और दूसरे क्रांतिकारियों का ठिकाना बताओ, नहीं तो हम तुमको भी खत्म कर देगा।
0: तुम मेरे शरीर को खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। आग की लपटे भी मुझसे क्रांतिकारियों का भेद नहीं निकलवा सकेगी, कभी नहीं निकलवा सकेगी।
2: ओ प्रिंसेस मैना, अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है? तुम अपनी जान देने पर क्यों चुली हो? देखो, हम जो पूछता है हमको बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे और इनाम भी देंगे।
0: मेरा बलिदान ही मेरा इनाम है। एक सच्चे क्रांतिकारी को मृत्यु का डर या इनामों का लालच कभी विचलित नहीं कर सकता, लेकिन

0: लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी मृत्यु ब्रिटिश शासन के पतन का कारण बनेगी। जैसे जैसे ये महल ध्वस्त हुआ है, एक दिन तुम्हारा शासन भी ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, ये शासन ध्वस्त हो जाएगा।
1: अंग्रेजी हुकूमत के पतन की बात सुन जनरल तिलमिला उठा। उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि वो मैना को पेड़ से बांधकर आग लगा दे। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी, लेकिन फिर भी मैना एक ही बात दोहराती रही।
0: एक जन्म तो क्या, कई जन्मों तक मुझे इसी तरह जलाते रहोगे। भारत की वीरांगनाओं को आग की लपटें भी चंदन की तरह शीतल लगती हैं। याद रखना, तुम्हारे अत्याचार ही तुम्हें ले डूबेंगे। मेरी मृत्यु ब्रिटिश शासन के पतन का

निर्देशन वीरबाला श्रोत्रिय, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग। इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच।
1: मैं आज एक बहुत खूबसूरत लाइन से ये एपिसोड स्टार्ट करना चाहता हूँ। प्लीज लिसन टू दिस। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप अ ग्रज अलाइव।
2: ये पावरफुल लाइन है ना?
1: आगे बहुत पावरफुल है।
2: अच्छा।
1: इससे ज्यादा पावरफुल है। द लॉन्गर देर इज अ लैक ऑफ फॉरगिवनेस द मोर बिटरनेस एंगर एंड सेल्फ पिटी पॉइजन्स द ब्लड एंड ईट्स द हार्ट। हैंड इट ओवर टू गॉड एंड अलाउ हिम टू शो यू द पाथ टू फॉरगिवनेस।
2: सच अ ब्यूटिफुल लाइन ना,
1: कितना सुंदर।
2: एंड इवन जिस चीज को हम नेचुरल समझते हैं, एंड वो लाइन कितनी ब्यूटिफुल है कि टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप अ ग्रज अलाइव। और हमारे अगर हम आज सिर्फ दो मिनट रिफ्लेक्ट करें, हमारे पास कितनी यहाँ ग्रजेस पड़ी हैं जो अलाइव हैं आज।
1: अब हमेशा कहते हैं ना डिप्लीट डिप्लीट डिप्लीट। मैंने कहा था ये डिप्लीट एनर्जी क्या बोलती है सिस्टर।
2: सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप वन ग्रज अलाइव। और यहाँ हमारे पास तो पता नहीं कितनी सारी पड़ी हुई है। एंड इट सेज एंगर रिजेंटमेंट सेल्फ पिटी, क्योंकि यही तो चलेगा ना। इट पॉइजन्स योर ब्लड एंड ईट्स योर हार्ट अवे। कितना इम्पैक्ट। और हमने कहा ये तो नेचुरल है।
1: और मैं सोचता था इतने हमारे पास इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, मैं एक आत्मा हूँ, तो फिर मैं इतने खराब काम क्यों करता हूँ। मतलब डिप्लीट कर करके एक एनर्जी की तो बात कर रहे हैं। मेरे पास तो मिलियन जैसी एनर्जी है।
2: ऐसी है,
1: मतलब फ्रॉम सो मेनी जन्मस
2: ग्रजेस है ना, इतने सारे जो पकड़ के रखे हुए।
1: जन्म के भी पहले के मिला के, तो फिर आत्मा का हाल क्या हो गया होगा।
2: इसीलिए ना हाल है, इसीलिए हाल है। और इसीलिए ठीक करना भी बहुत इजी है। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इंस्टेड ऑफ ऑलवेज थिंकिंग कि अब हमारा क्या हाल हो गया।
1: थैंक गॉड इट्स रिपेयरेबल।
2: इट्स नॉट ओनली रिपेयरेबल, इट विल बिकम एब्सोल्युटली व्हाट इट ओरिजिनली वॉज। कई चीजें तो रिपेयर होके कभी भी ओरिजिनल की तरह नहीं बन सकती, लेकिन आत्मा तो बिल्कुल वैसी हो जाएगी जो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी थी।
1: रीबॉर्न।
2: यस। एंड दिस फॉरगिवनेस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द पावर टू लेट गो। जब हम किसी बात को लेट गो करेंगे, पुरानी बातों को खत्म करेंगे, ऑटोमेटिकली हमने क्या कर दिया, हमने उस आत्मा को फॉरगिव किया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने खुद अपने आप को फॉरगिव किया फ्रॉम ऑल द पेन दैट आई हैड गिवन टू माई सेल्फ। जब हम लेट गो करने की बात करते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हमें लेट गो करनी है, आर दी एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैव फ्रॉम पीपल। वी हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल अराउंड अस, वेदर इट्स फैमिली, वेदर इट्स फ्रेंड्स, वेदर इट्स पीपल इन सोसाइटी। आप देखो सारा दिन में हम कहते हैं आई एक्सपेक्ट कि उनको इतना तो करना चाहिए था। एक प्रोग्राम में बैठे आई एक्सपेक्ट कि सब लोग मोबाइल तो ऑफ करेंगे। आई एक्सपेक्ट मीन्स क्या, कि मीन्स दुनिया जैसा मैं सोचती हूँ वैसे चलेगी।
1: गुड मॉर्निंग नहीं किया था, कम से कम स्माइल ही कर देता।
2: आई एक्सपेक्ट
1: मेरी तरफ देख ही लेता। न्यूज पेपर पढ़ता जा रहा है अपना।
2: हाँ, ये छोटे छोटे ग्रजेस है ना। हम तो अभी वो देख रहे थे कि जो जीवन में कोई बड़ी बात हुई हो और हमने यहाँ दर्द पकड़ के रखा, यू नो, सम इंसिडेंट, सम पावरफुल चीज कोई हुई और हमने वो दर्द पकड़ के रखा। लेकिन ये छोटे छोटे जिसको हमें लगे
1: दिस ड्रॉप्स आल्सो ऐड टू दैट बिगर वन।
2: हर बार हमने क्या थॉट क्रिएट किए,
1: नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव
2: नेगेटिव। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितनी बार हम अपनी एक्सपेक्टेशंस हमारी फुलफिल नहीं होंगी, हमें अच्छा नहीं लगने वाला है। तो क्यों ना हम इस पर पुरुषार्थ करें, थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी मेहनत करें कि दूसरी आत्मा मेरे अनुसार चलने वाली नहीं है। तो आई हैव टू लेट गो ऑफ माई लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एंड उसको भी जब जैसे ये थॉट आए, उनको ऐसा तो करना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था, इतना तो कर देते, इतना नहीं तो इतना ही कर लेते, मैंने उनके लिए इतना किया, वो इतना भी नहीं कर सकते थे, उस समय भी आई लेट गो ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन टूडे। अगर एक्सपेक्टेशन को ही लेट गो करना शुरू कर दिया ना, तो उसके बाद दर्द आएगा और फिर फॉरगिव करना पड़ेगा और फिर उस बात को लेट गो करना पड़ेगा, उधर तक जाना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन रखी, फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ही कुछ अलग ही हो गया, फिर हर्ट हुए, फिर उसको लेट गो किया, फिर फॉरगिव करना पड़ा, कितना लंबा काम है।
1: एक्चुअली आपकी जो एक्सपेक्टेशन की बात सुन रहा हूँ मैं, मैंने अगर जैसे बोला कोई मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, ठीक है, यहाँ मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, यहाँ मेरी कहीं ना कहीं उसकी एक बुराई दिखी मुझे, और डीप में चला गया अभी सोचते सोचते कि एक्चुअली वो एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, मैं अगले पर्सन की एक बैड हैबिट या बुराई कमजोरी दिखा रहा हूँ कि देखो इतनी अकल नहीं है, तमीज नहीं है, कौन से स्कूल में पढ़ा, किस घर से आया, बता, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल सकते,
2: वीकनेस ही ढूंढ रहे हैं ना सामने वाले की। यस, क्योंकि वो वीकनेस भी हमें, वो चीज हमें वीकनेस क्यों लगेगी, वो चीज हमें वीकनेस इसलिए लगेगी क्योंकि इट डजंट मैच विद माई लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन।
1: अब वर्ड याद आ गया, निंदा, ये मैं निंदा ही कर रहा हूँ।
2: लेकिन निंदा भी, निंदा इसलिए कर रहे हैं, निंदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आप अपेक्षा रखते हैं लोगों से, जब वो उस अनुसार नहीं चलते तो वो लोग गलत हैं, और फिर हम उन लोगों की निंदा करेंगे जिन लोगों की लाइफ में एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि किसी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, उनको नहीं है एक्सपेक्टेशन, तो फिर उनको वो वाली बात भी सामने वाले की गलत लगेगी नहीं,
1: ना गलत लगी ना अच्छी, तो वो पता भी नहीं चलेगा,
2: तो वो रजिस्टर ही नहीं होगा ना यहाँ पे कुछ भी। तो इट कम्स डाउन टू हमने क्या क्या अपेक्षाएं रखी हुई है। ये तो बहुत छोटी वाली है, इसको तो हम काउंट भी नहीं करेंगे, लेकिन सारा दिन में आप देखो हम हर्ट किस बात से होते हैं, जब दूसरे हमारी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करते, और हम जीवन भर उस दर्द में रह सकते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ से, चाहे ओल्ड एज में पेरेंट्स बच्चों से, वो बहुत डीप है वहां पर पेन, क्योंकि आज समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, आज जो आत्मा है उसकी शक्ति भी कम है। सी आज एक पेरेंट, क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग नाउ, क्योंकि आज जो पेरेंट्स है एल्डरली, वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बच्चों से, एंड उनके हिसाब से वो एक्सपेक्टेशन रखना तो नेचुरल है ना, कि बच्चा है, हमने उसके लिए इतना किया, इतना हमारा प्यार है उसके साथ, इतना हमने केयर किया, आज वो मुड़ के दो बात भी प्यार से नहीं कर सकता, वो कहना नहीं मानता, तो चलो वो तो वो फिर कहेंगे चलो हम उतना तो एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन दो मिनट प्यार से भी बात नहीं कर सकता, इतना भी नहीं कर सकता, पूछ भी नहीं सकता आके कि आप ठीक हो के नहीं। अब ये एक्सपेक्टेशन
1: जाते कम से कम मैं जा रहा हूँ, आने के बाद मैं आ गया, दो ही टाइम मिल ले,
2: इतना ही कर ले, ये जो छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस है जिसके लिए हम कहेंगे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करे क्या हम बच्चे से, फिर यू नो दैट्स हाउ नाउ दिस इज वेयर इट कम्स, दैट सेल्फ पिटी, ये सेल्फ पिटी है कि हम इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करे। एक पेरेंट के नजरिए से हम देखें तो यस, हम चाहेंगे कि वो बच्चा आकर दो मिनट प्यार से बात करे, वो करे, लेकिन अगर हम कई बार दूसरे तरफ से देखें कि आज का वो बच्चा जो 30-40 साल का है, जिसके वर्क पे इतने स्ट्रेस है कि वो अपने वर्क को आज हैंडल नहीं कर पा रहा, इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी है आज,
1: वर्क है, बीवी है, बच्चे हैं,
2: बीवी है, फिर बच्चे हैं, आज रिश्ते वैसे नहीं है हस्बैंड वाइफ के जो वो पेरेंट के अपने हुआ करते थे, आज जो उस छोटे बच्चे को संभालने के स्ट्रेस है वो वैसे नहीं है जो उस पेरेंट के हुआ करते थे जब वो अपने बच्चे को संभालते थे। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि आज की आत्मा 40 साल पहले से कमजोर है, तो उस कमजोर वीक आत्मा के लिए हर चीज मुश्किल है, एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप निभाना उसके लिए आज मुश्किल हो रहा है, बच्चे को संभालना उसके लिए आज मुश्किल हो रहा है। आज लोग कहते हैं पेरेंटिंग सबसे डिफिकल्ट चीज है, 50 साल पहले लोगों को पेरेंटिंग तो एक मतलब क्या, इट्स एज नेचुरल एज ब्रीदिंग, नेचुरल चीज हुआ करती थी, आज वो स्ट्रेसफुल चीज हो गई है। तो वो बच्चा आज बहुत बहुत तनाव में है, बहुत दर्द में है, इस बच्चे से, आत्मा से एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय हम इस आत्मा से हम प्यार से बात करें। तो अगर वो उस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दे, लेट गो कर दे, तो वो उस बच्चे को सही सही पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे।
1: और सपोर्ट भी तो मांगता है ना बच्चा उस वक्त।
2: वो मांगेगा नहीं ना, वो हमें अपने आप समझना पड़ेगा कि वो दर्द में है। See, this is not a
1: मांगता
2: support.
1: मतलब उस वक्त उसको जरूरत है।
2: Need of the hour, yes. लेकिन ऐसे ही हम सबके साथ ये देखें कि कितनी एक्सपेक्टेशंस जो हमने रखी,
1: वो किस जल्दी में था होगा, किस टेंशन में था होगा, निकल गया
2: पर्टिकुलर सिचुएशन।
1: नहीं, जब मैंने
2: ओवरऑल में हो सकता ना कई बार,
1: जैसे आपसे मैंने शुरू में बात की थी कि भी जाते जाते हेलो कर दे, बाय बाय कर दे, या मिलके पहले तो जाता था, पहले तो पांव छू के जाता था, पहले हग करके जाता था, ये अब तो पूछता भी नहीं है। यू नो वी स्टार्ट डूइंग ऑल दैट, एक्चुअली हो सकता है वो कितना टेंशन में हो, ऑलरेडी लेट हो गया हो, किधर से फोन कितने आए होंगे, भाई तू निकल, लेट गो,
2: लेट गो। सी, अच्छा वर्ड है ना, लेट गो,
1: लेट गो।
2: क्या पकड़ के रखा हुआ है, और वो भी किसके प्रति पकड़ के रखा हुआ है, अपनों के प्रति। क्या वाइब्रेशन उन्हीं को भेज रहे हैं जिनके लिए हर रोज दुआ करते हैं, उन्हीं को कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं, रोज उन्हीं के लिए प्रार्थना की, उन्हीं को आशीर्वाद दिया, उन्हीं के लिए दुआ मांगी, और उन्हीं को ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं।
1: फ्रीडम,
2: फ्रीडम अपने को देना है, अपने को इन थॉट्स से फ्रीडम देना है।
1: मच बेटर लाइन जो आपने कही, फ्रीडम अपने को देना है,
2: अपने को देना है कि ये बंधनों से उलझन जो यहाँ पर हम बांध लेते हैं ना, इससे अपने को फ्रीडम देना है। तो लेट गो, जो अपेक्षाएं हमने औरों से रखी है उनको धीरे धीरे, एकदम से नहीं हो जाएगा ये, धीरे धीरे आएगा माइंड में, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते जाना है। एक और चीज जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन उसको बड़ी गहराई से देखना है, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट अदर पीपल हैव फ्रॉम अस।
1: The other people have from us?
2: From us. हम बहुत ज्यादा सारा दिन लोगों की अपेक्षाओं को मीट करने की कोशिश करते जा रहे हैं।
1: हो सकता है मेरी खुद की अपेक्षा है कि मुझे लोग तारीफ करें।
2: हाँ, वही, यही। तो ये हम,
1: मेरी तारीफ हो तो मैं इतना अच्छा करूं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? लोग तो बोलते हैं वो अपनी मर्जी से काम कर रही है, मर्जी से खाना पका रही है, मर्जी से हमको कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: जब हम वो करते हैं तब हमें लोगों से अप्रिसिएशन मिलती है, महिमा मिलती है, या हमें लगता है, हम तो उसको महिमा और अप्रिसिएशन नहीं बोलते, हम कहते हैं हमें प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है, बिकॉज वी कंफ्यूज बिटवीन ऑल दीज वर्ड्स। तो हमें लगता है हम प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है और उसके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की अपेक्षाओं को मीट करते जाना इसका कोई अंत नहीं है। और अगर जीवन का लक्ष्य दूसरों की अपेक्षाओं को मीट करना बना देंगे,
1: एंड एक्सपेक्टिंग एप्रिसिएशन एवरी टाइम,
2: तो देन इट्स नॉट पॉसिबल टू बी पीसफुल। ये मन हमेशा, क्योंकि ये भी तो एक क्रेविंग ही है ना, हमेशा ये हमेशा एक क्रेविंग बनी रहेगी। हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, हरेक के लिए अच्छा सोचेंगे, लेकिन हरेक जो हमसे एक्सपेक्ट करेगा उसको हम हर बार मीट नहीं कर सकते, और उसका बोझ हम अपने ऊपर नहीं लेकर चलेंगे। वी विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज दैट विल ब्लॉक आर वाइब्रेशंस ऑफ प्योरिटी टुवर्ड्स देम।
1: आई एम डूइंग माय बेस्ट, मैं नहीं कर सकता।
2: डूइंग माय बेस्ट ना,
1: बस।
2: एंड लेट मी डू माय बेस्ट अकॉर्डिंग टू माय ओरिजिनल आइडेंटिटी। आज हम फिजिकल आइडेंटिटी, मैं सो एंड सो हूं, वो इमेज और उसके साथ जुड़ी हुई इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस कि आप ये हैं तो आपको ऐसे होना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे पहनना चाहिए, आपको ऐसे काम करना चाहिए, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेशंस विच कम विद द इमेज ऑफ हु आई एम एज अ फिजिकल एंटिटी।
1: एक सिंपल एग्जांपल है, बहुत छोटा सा। मेरे घर में दो ड्राइवर है, एक गाड़ी भी चलाता है, स्कूटर भी चला लेता है। एक ड्राइवर है, बड़ा अच्छा ड्राइवर है, बोलता था मैं स्कूटर नहीं चला सकता। बच्चे साइकिल चलाते, लड़कियां उसको नहीं, मैं मुझसे नहीं चलाई जाती, मैं गाड़ी चला लूंगा। एक्सेप्टेड हिम और कर रहे काम,
2: सिंपल।
1: तो इतना मतलब वो भी क्लियर हुआ, मैं भी क्लियर हुआ,
2: बिल्कुल।
1: ऐसे हम जीवन में क्यों नहीं कर पाते?
2: आप देखो सारा दिन में, ये बहुत सूक्ष्म है लेकिन इसको तो हमें, हम अवेयर ही नहीं है, क्योंकि ये हम नेगेटिव में नहीं रजिस्टर करते। यू नो दिस डजंट गिव अ वेरी नेगेटिव अनकम्फर्टेबल।
1: आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि एक आदमी बोलता है ना, भी मेरी लिमिटेशंस ये हैं, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ,
2: बिल्कुल।
1: तो ये अगर हम अपने लिए जान लें और हर बार लोगों से एक्सपेक्ट करें और खुश करने की कोशिश करें,
2: हर बार लोगों से एक्सपेक्ट करें, वो तो फिर भी इजिली दिखाई देता है हमें कि हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम जो हर बार लोगों के अनुसार और लोगों के एक्सपेक्टेशन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, दिस इज हाउ पीपल शुड सी मी, दिस इज वॉट पीपल थिंक अबाउट मी, दिस इज वॉट पीपल शुड थिंक अबाउट मी, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचें, लोग मुझे ऐसा देखें, लोग समझें कि मैं ये हूं, ऐसा बनने की कोशिश करते जाना अपनी ओरिजिनलिटी से हमें दूर लेकर जाता है। हम इसीलिए आज हम कहते हैं कि बहुत आर्टिफिशियल, बहुत सुपरफिशियल इन चीजों में हम खुशी और शक्ति को देख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ये हूं तो मैं बड़ा हूं, तो मैं पावरफुल हूं, तो मैं रिस्पेक्टेड हूं, ये है लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करना।
1: यानी कि सिंपल लैंग्वेज में सबको खुश करने की कोशिश करना,
2: सबको खुशी देनी है, खुश करना नहीं है, दो चीजों में बहुत फर्क है। सबको खुशी देने के लिए मुझे सिर्फ खुश रहना है, मुझे कुछ करना नहीं है उसके लिए। आई ओनली हैव टू बी लाइट एंड हैप्पी। जैसे आपने पिछली बार कहा कि आप लाइट थे तो ऑटोमेटिकली आसपास के लोगों को फील हुआ कि कुछ चेंज है, सो दे फेल्ट नाइस, तो आपने खुश रहकर ऑटोमेटिकली खुशी दी। और एक है आप अंदर भारी रहकर लेकिन कुछ कुछ करने की कोशिश करते जाएं दूसरों को खुश करने के लिए, देयर इज नो एंड, यहाँ बोझ बढ़ता जाएगा। एक इमेज अपने बारे में क्रिएट कर लेते हैं और उसको सैटिस्फाई करने की कोशिश करते जाना, नो आई हैव टू बी लाइक दिस, आई हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसे कर दिया, इवन इफ आई एम कंफर्टेबल डूइंग इट। हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, इसका कोई अंत नहीं है, और ये हमें लाइटनेस से बहुत बहुत बहुत बहुत दूर चल ले जाता है। वी हैव टू ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट इज द सिंपलेस्ट वे टू बी हैप्पी एंड पीसफुल इन लाइफ। तो कितनी सारी चीजें लेट गो करनी है अब हमने देख ली इतने सारे एपिसोड्स में। लेट गो ऑफ पुराने बिलीफ सिस्टम्स कि लोग जिम्मेवार हैं हमारे दर्द का, दुख का। लेट गो ऑफ पास्ट मेमोरीज, पुरानी बातें, पुरानी सिचुएशंस जो हुई। लेट गो जो दूसरे के बारे में हमने नजरिया उनके बारे में बना के पुराना रखा हुआ है, उसका लेट गो। लेट गो एक्सपेक्टेशंस हमने जो दूसरों के बारे में रखे हुई है, लेट गो वो एक्सपेक्टेशंस जो दूसरों ने हमारे बारे में रखी है। जीवन में जितना मैं सिर्फ एक आत्मा हूं ये याद रख के जीवन में जितना चलेंगे,
1: और दूसरा भी एक आत्मा है
2: तो ट्रैवल लाइट नेचुरल हो जाएगा। अगर हर बार ये सोचेंगे मैं ये हूँ, ये ऐसे होना चाहिए, मुझे ऐसे करना है, लोगों को मेरे साथ ऐसे व्यवहार करना है क्योंकि मैं फला हूँ, तो फिर लाइट रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके लिए लेट गो के लिए जो क्वालिटीज हमने देखी, एक तो करेज, हिम्मत चाहिए पुरानी बातों को छोड़ने की, और एक जो आपने इतना आज ब्यूटीफुल सुनाया, फॉरगिवनेस, क्षमा करना,
1: उसमें भी हिम्मत चाहिए।
2: करेज तो इज ऑलवेज, दैट्स व्हाई लाइक वी सॉ अर्लियर,
1: बीइंग शक्ति तो हमें हमेशा चाहिए।
2: सारा दिन में जितना ये बार बार याद रखेंगे, मैं आत्मा हूँ, ये जीवन जी रही हूँ, वो इमेजेस, वो पोजिशंस, सोसाइटी ने जो एक्सपेक्टेशंस रखी उस पोजीशन से, उस लेबल से, वो सैटिस्फाई करना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य है आत्मा की क्वालिटीज को यूज करना। हमने वो चीजों की एक्सपेक्टेशन को मीट करते करते कोशिश करने में आत्मा की क्वालिटीज को छोड़ते गए। जितना सारा दिन में ये जो आइडेंटिटीज हमने और क्रिएट कर ली ना अपने बारे में, उसको सैटिस्फाई करने की कोशिश करते, फादर हो तो ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड हो तो ऐसा होना चाहिए, आप एक्टर हैं तो एक्टर हो तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, कितनी चीजें हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कंफर्टेबल भी नहीं है करने में। दे डोंट कम नेचुरली टू अस, बट वी विल डू इट ओनली फॉर अदर पीपल।
1: दिस काइंड ऑफ बिहेवियर के स्कूल भी है अमेरिका में कि एक एक्टर को ऐसा बिहेव करना चाहिए, एक क्रिकेटर को, एक पब्लिक जो मैं फिगर बन गया है, और टेनिस के जो चैंपियंस हैं उनको भी क्लासेस देते हैं कि भाई आपको ऐसा बिहेवियर करना चाहिए, कोई न्यूज़पेपर वाला आपसे बात करे तो इस तरह इतना जवाब देना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहां नहीं चाहिए। इतनी लाइफ को थका देते हैं तो फिर
2: जब तक अंदर लाइट नहीं होंगे ना, अंदर हल्कापन नहीं होगा, ये हम ट्रेनिंग्स भी कर लें कितनी भी, जैसे आपने सपोज सेलिब्रिटीज के लिए भी कहा कि अखबार वाले से क्या बोलना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, लोग मिले तो क्या, इतनी सिंपल चीज भी अगर देखें, अंदर अगर लाइट नहीं होंगे, परिस्थिति आई, अंदर स्ट्रेस है, प्रेशर है, सामने वाले से वो प्रेस मीडिया वाले ने कुछ लाइन कह दी, तो आपको याद लगता है ये सारी ट्रेनिंग याद रहेगी उस टाइम?
1: मुंह खुल जाता
2: है. This is what will happen.
1: कई बार लोग हाथ उठा देते हैं, लड़ लेते हैं.
2: एंड द अदर वे राउंड, अगर आप अंदर लाइट है, पीसफुल है, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि किसके सामने क्या कहना है.
1: ये ट्रेनिंग कितनी सुंदर है.
2: आपके मुख से गलत निकलेगा ही नहीं. ये अभी ट्रेनिंग क्या हो रही है, आउटसाइड से हो रही है, कि अंदर भले आप टेंशन में है, भले आपको गुस्सा आ रहा है, उसकी बात पर आप जवाब ऐसे देना. This training will not work every time. Will not work. And most important, हम understand करते हैं कि vibrations तो फिर भी चारों तरफ फैल रही है ना. अगर आपने रोक के, दबा के बोल भी दिया, करेक्ट बात कर भी ली, लेकिन thought में तो कितना कुछ भेज दिया. And most important, अपने अंदर कितना pressure accumulate करके चला. You know, जब ये training हमें मिलती है कि अंदर कुछ भी सोचो लेकिन बाहर ऐसे बात करो. Customer care industry, पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उनको ये ट्रेनिंग नहीं मिल रही कि अंदर कैसे सोचना है, उनको ये ट्रेनिंग मिल रही है कि बाहर कैसे मुस्कुराना है.
1: सेल्समैन को है ना,
2: लेकिन वो सप्रेशन जो होता है कि अंदर गुस्सा भी आ रहा है, इंसल्ट भी फील हो रही है, नफरत भी क्रिएट हो रही है, ऊपर से स्माइल करना है, ऊपर से प्यार से बात करनी है, ये ट्रेनिंग हम मेजोरिटी सब कर रहे हैं. रिश्तेदारों के साथ प्यार से बात करनी है, अंदर से मन कर रहा है उसको, तो ये जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं.
1: थोड़े दिन पहले एक यंग मैन था, एक पहचान का तक, तो ही वॉज गेटिंग प्रमोशन आफ्टर प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन. यहाँ से उसको सिंगापुर भेज दिया, वहां भेज दिया, ऑल इंडिया का हेड बना दिया. ही डाइड, मर गए
2: एट अ वेरी यंग एज,
1: बस सोता सोता मर गए.
2: प्रेशर, प्रेशर टू परफॉर्म,
1: कह रही है ना.
2: एंड दिस इज
1: इंडस्ट्री
2: बिकमिंग कॉमन. तो ये हमें रियलाइज करना हो कि बाहर अचीव करते गए लेकिन अंदर लाइट नहीं रहे, तो आत्मा और शरीर ले नहीं पाएगा इस चीज को बहुत ज्यादा. तो ये ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए आज से जो हमारी फर्स्ट पावर है वो है पावर टू लेट गो. और इस पावर के बारे में परमात्मा हमें, सारी जो बातें हमने डिस्कस की वो तो परमात्मा का ही ज्ञान है जो हमें हर रोज मिलता है, लेकिन डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य उसके बारे में क्या है वो थोड़ा सा सुनते हैं.
1: एक लाइन में बोलूंगा आप शुरू करने से पहले कि अगले एपिसोड में सिस्टर मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि बीइंग ओरिजिनल. मैं आज तक समझता आ रहा था कि मैं ओरिजिनल गुस्से वाला पैदा हुआ था, ओरिजिनल मैं ऐसा चलता हूँ, ओरिजिनल मेरे मुंह पे लोगों की बात कर देने की आदत है, तो आई एम बीइंग ओरिजिनल, आई एम बीइंग नॉर्मल एंड नेचुरल. लेकिन आपने आज जो बोला कि ओरिजिनल क्या है, वो अगले एपिसोड में जरूर आपसे पूछूंगा. अब ये पढ़ते हैं प्लीज. थैंक यू सो मच.
2: जो पावर टू लेट गो, जिसको हमने देखा पावर टू पैकअप भी, कि समेट, इसको कहते हैं हिंदी में समेटने की शक्ति, कि जो यहाँ है उसको समेट लिया. तो परमात्मा कहते हैं जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है. सरल स्वभाव,
1: सरल स्वभाव वाले
2: जो सरल है, इजी नेचर है, बातों को पकड़ के नहीं रखते, जो सरल स्वभाव वाला होगा वो सभी का सहयोगी भी होगा, हर एक के साथ कोऑपरेट करेंगे. जो सभी का स्नेही होता है उनको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त भी होता है. एक वो सबके सहयोगी होंगे और फिर सबका सहयोग भी उनको प्राप्त होगा. इसलिए सभी बातों को सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है. वो सरल रहेगा, इजी रहेगा, तो सभी बातों को इजीली समेट लेगा. जो जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी. माया मतलब अपनी वीकनेसेस, अपनी नेगेटिविटीज. हम सरल हैं.

0: इजी नेचर है, लेट गो कर रहे हैं बातों को, तो नेगेटिविटी तो हमारा कोई सामना फिर करेगी ही नहीं। वो सभी को प्रिय लगता है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता। नेगेटिव वेस्ट थॉट्स होंगे ही नहीं। समय व्यर्थ नहीं जाता, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरादेशी रहती है। व्यर्थ नहीं है यहाँ कुछ भी, वेस्ट नहीं है, तो मन और बुद्धि कैसे रहेगी? विशाल और
1: दूरादेशी, आगे का भी सोचेगी।
0: क्लैरिटी, विजन, दूरादेशी, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकते। जितना सरल होंगे उतना स्वच्छ भी होंगे।
1: Beautiful.
0: क्योंकि मन और चित्त को कैसे रखेंगे?
1: क्लीन
0: रखेंगे। स्वच्छता सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जितना मन चित्त स्वच्छ होगा ना, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव, लाइक अ चाइल्ड।
1: कैसे आकर्षित करता है बच्चा? हम इधर 25-50 आदमी हो, छोटा सा बेबी सारे लोग को आकर्षित करता है।
0: क्योंकि मन चित्त पर अभी अक्यूमुलेट करना शुरू नहीं किया ना कुछ भी, तो उसका मन चित्त साफ है। स्वच्छता सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई, ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड
1: क्लीनलीनेस।
0: सोल, सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। इजी नेचर, खत्म, छोड़ दिया, लेट गो किया, डिलीट किया, इजी नेचर होगी, सच्चाई और सफाई होगी, तो ऑटोमेटिकली सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे।
1: इसका तो मंत्र है, लेट गो,
0: लेट गो,
1: ड्राइवर लेट आया, लेट गो, गाड़ी उसने खड्डे में डाली और गलती से बम्प ज्यादा मार दे, लेट गो।
0: चित्त को साफ रखना है, और ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेट गो करते जाएंगे ना, तो फिर बड़ी बात को लेट गो करने का इतना इजी हो जाएगा, क्योंकि लेट गो करना हमारा संस्कार बन जाएगा। एब्सोल्युटली। तो मंत्र लेट गो, और जितना ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली हल्के होकर फरिश्तों की जीवन जिएंगे। एंजल्स हमेशा उड़ते हैं। उड़ते हुए क्यों उनको दिखा रहे हैं? वो कोई फिजिकली थोड़ी उड़ते हैं, मन उड़ रहा है क्योंकि वो इतना हल्का है। तो जो जितना लेट गो करेगा ना,
1: उड़ने के बाद चीजें भी छोटी छोटी लगने लगती हैं।
0: जितना
1: परिस्थितियां, दुनिया, वर्ल्ड,
0: बात छोटी लगेगी,
1: सब कुछ छोटी लगेगी।
0: राइट।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति।
1: थैंक यू।
2: इन एवरी सीन एंड सिचुएशन we have expectations from people around us, expectations of how they will respond in situations, expectations of how they will be with us, expectations of what they will do for us. Expectation means wanting people to be the way we want them to be. When people are not as we expected them to be, we hold grudges and create hurt. We then have to let go of the grudge and heal the pain. But if we let go of the expectations in the first place, then there will be no pain. When family and friends are not according to our expectations, the hurt we create radiates as constant negative vibrations to them. We become instruments of sending strong negative energy to those whom we love the most and for whose happiness we pray daily. Let us do our best for each soul and radiate our purity and love to everyone. But if we live our life trying to meet up to the expectations of others, even if it is not in our capacity, then we will not be happy. Our unhappiness will also radiate pain.

0: और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज का हमारा विषय है आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। जैसा कि हम देखते हैं, शरीर की सुंदरता पर लोग उसकी खूबसूरती के आधार पर उसके आंतरिक भी गुणों का पता करते हैं। उन्हें लगता है कि यह सुंदर है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन सुंदरता शरीर में नहीं, सुंदर तो होते हैं कर्म में। तो एक दिन हम देखते हैं कि गुब्बारे वाला लाल पीले हरे गुब्बारे काले गुब्बारे बेच रहा था। कभी कभार वह एक दो गुब्बारे हवा में छोड़ देता था ताकि बच्चे आकर्षित हों। एक सांवरे रंग का छोटा बच्चा गुब्बारे वाले के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा था। अपने सांवरे रंग की वजह से उस बच्चे को कई बार अवमानना का सामना करना पड़ता था। बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काले रंग का गुब्बारा हवा में छोड़ेंगे तो वह भी आसमान में उड़ जाएगा। गुब्बारे वाला सोच में पड़ गया। उसकी नजर बच्चे पर गई तो दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। उसने बड़े प्यार से बच्चे को जवाब दिया, बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर जो गैस है उसकी वजह से आसमान की ओर जाता है। हम भी बाहरी दिखावे या बाहरी संपत्ति के कारण नहीं, अपितु अपने दिव्य गुणों, श्रेष्ठ व्यवहार, उत्तम विचार, मीठे बोल, दया और करुणा आदि के आधार पर जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो देखा आपने, सुंदरता शरीर में नहीं, सुंदर होते हैं कर्म। जैसे कि हम देखते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र, जिसके जीवन में ये सुंदरताएं हैं, वही दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। जमाना भी उसी का दीवाना है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। सुंदर मन के बिना सुंदर चेहरा कांच की उस आंख जैसा होता है जो चमक तो सकती है लेकिन किसी चीज को देख नहीं सकती। चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, परंतु चरित्र की सुंदरता मृत्यु के बाद भी स्मरण रखी जाती है। अतः हम देखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कर्म करे तो जीवन सुंदर बन जाएगा। अच्छी सोच जिनके पास होती है वो लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं। जिंदगी में उन लोगों की जो पसंद है उन्हीं लोगों को आप पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत है। जिस शरीर को आप सुंदर कहते हो जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखाई देगी कि इसके अंदर क्या है। भीतर तो बस रक्त मल रोग और कचरा भरा पड़ा है। जिस शरीर को की अदाओं पर हम मर मिटते हैं, रात रात करवटे बदलते हैं, मृत्यु के बाद वह आकर्षण कहाँ चला जाता है? लोग इसी सुंदर शरीर की मृत्यु के बाद उसे जितना जल्दी हो सके घर से निकालने की कोशिश करते हैं कि कहीं सड़ने न लगे। यह शरीर मिट्टी बन जाता है, फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? सुंदरता शरीर में नहीं होती, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा में है, जो न मरती है न जलती है न कटती है और न ही गलती है। तो देखा आपने, सुंदरता शरीर में नहीं आत्मा में है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। जैसे कि हम देखते हैं हमें क्या चाहिए जिंदगी में, साधन नहीं, साधना सुंदर हो, चित्र नहीं चरित्र सुंदर हो, भवन नहीं भावना सुंदर हो, साधन नहीं साधना ही सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर हो, तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं परंतु अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। संकल्प शब्द और कर्म में पवित्रता जीवन की सुंदरता है और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। एक सुंदर मन हमारे सुंदर चेहरे से कई गुना अच्छा है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। रंग रूप और कद काठी को लेकर जब किसी प्रकार की भावनाएं मन और मस्तिष्क पर हावी होते हैं, तब व्यवहार में ईर्ष्या क्रोध नफरत चिड़चिड़ापन नजर आने लगता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, कार्य क्षमता प्रभावित होती है, आत्मनिर्भरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, असुरक्षा की भावना जागृत होती है और निराशा हताशा के कारण इंसान कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है। हमें अपनी कमियों को भी ताकत बनाना है, अपनी कमी को ताकत बनाए, प्रेरणा ले और आगे बढ़े। खुद की छवि की तुलना दूसरों से करने से पहले यह भी जानना है कि सूरज से कहीं ज्यादा सीरत मायने रखती है। अच्छा व्यवहार और सद्गुण हमें दूसरों से अलग और बेहतर बनाएंगे। ऐसे लोगों के बीच रहें जिनके लिए रंग रूप और शारीरिक खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, जो केवल व्यवहार और गुणों की वजह से ही हमसे जुड़े हैं। याद रखें, जीवन की कुछ चीजें ऐसी है जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे छोटे कद की लंबा या ज्यादा लंबे को छोटा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार

सांवरे रंग और गोरा नहीं बनाया जा सकता। और यदि कोई समस्या अनुवंशिक है तो उसे भी बदला नहीं जा सकता। लिहाजा इन्हें स्वीकारें और श्रेष्ठ गुणों से स्वयं को भरपूर बनाने की कोशिश करें। बहुत से अन्य लोग भी हमारे जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कैसे अपनी कमियों को ताकत बनाया, उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़े। व्यक्ति के गुण सर्वोपरि होते हैं, इसलिए अगर हम लगातार किसी नए हुनर को हासिल करने से खुद को जोड़े रखते हैं तो दिखने दिखाने की तरफ हमारा भी ध्यान नहीं जाएगा। हुनर की कद्र करने वालों और देह के पार मन को समझने वालों के साथ रहें। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और इसी तरह हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। जैसा हम देखते हैं कि हीन भावना अक्सर लोगों पर हावी होने लगती है, ध्यान रहे अपने ऊपर हीन भावना का विचार हावी न होने दें। अक्सर हम सामान्य से कुछ कम दिखने या प्राप्त होने की स्थिति में हीनता के विचार में डूब जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। ऐसे में स्वयं के नकारात्मक विचारों का समर्थन न करें और सकारात्मक पहलू पर ध्यान देकर स्थिति चाहे जैसी है उसे स्वीकार करें। आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं, शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है। सुंदर से सुंदर देह से भी एक दिन सुंदरता छूट जाती है। जगत की व्यर्थता को पहचाने ताकि हम भीतर की श्रेणियां उतरने लगे। सुंदर होने का अर्थ सौंदर्य प्रसाधनों से उसके उपयोग में नहीं है। ध्यान, योग, मेडिटेशन हमें सुंदर बनाता है। जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता जाएगा वैसे वैसे हमारे भीतर एक अपूर्व सौंदर्य लहराने लगेगा। दया भावना से हमें देखना है हम अधिक युवा कैसे बने रहेंगे। आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। वर्तमान समय युवा पीढ़ी आकर्षण बने रहने के लिए आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक का अधिक उपयोग कर रही है, लेकिन वह यह नहीं जानती यह असली खूबसूरती नहीं है। दूसरों के लिए सदा दया की भावना रखने से हम अधिक युवा और आकर्षक बने रहेंगे। ब्रेन भी सदा एक्टिव रहेगी क्योंकि आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है और यही सुखी जीवन जीने का भी सबसे शक्तिशाली उपकरण है। दूसरों से सदा सहानुभूति रखेंगे तो उदासीनता या नापसंद को भुलाकर आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दयालुता का भाव बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास जरूरी है। मेडिटेशन से दया की भावनाएं चारों तरफ फैलती है। तो देखा आपने कैसे हमें मेडिटेशन से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो इसे हम आगे अपने जीवन में जारी रखें इसकी हम सब कोशिश करेंगे और आप सभी कोशिश करें कि मेडिटेशन अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसे बनाना है जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर बना रहे और हमारी आंतरिक खूबसूरती जो है वो भी बनी रहे। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। तो ओम शांति, नमस्कार।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। चल, चल, चल,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप जाइए वहां, वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

भाषा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप खोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: बालियों के बगैर कान कितने सूने सूने लगते हैं।
1: यहाँ भी आ पहुँचे?
0: आया हूँ, अभी पहुँचा नहीं।
1: पहुँचे हुए मालूम होते हो।
0: आपकी दुआ है।
1: काम करते हो यहाँ?
0: कहिए क्या सेवा करूँ?
1: हार चाहिए?
0: जरूर, ऐसा हार पेश करता हूँ कि आपके गले से लग कर हार नहीं जीत लगे। ये देखिए, इस मखमल से गोरे गले में सच्ची मोतियों का सफेद हार, ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी से धुले हुए आसमान में आकाश गंगा लहरा रही है। 10,000 शायद दाम आपके लिए कुछ ज्यादा है।
1: बहुत कम, कोई महंगी सी चीज दिखाइए।
0: जरूर, ये कैसा लगता है आपको? मालूम होता है दूध की झील है, उस पर सोने के पत्तों में लाल कमल खिले हैं। 25,000।
1: बस इतनी हल्की नहीं, कोई भारी सी चीज पेश कीजिए।
0: और ये देखिए, झील मिलाती हुई किरणें सिमट कर आपके गले से लिपट देंगे। ये हीरे आपकी आंखों से बाजी लेना चाहते थे, मगर लगता है लजा गए बेचारे। और ठीक भी है, कहा है ना, लाज ही औरत का जेवर है। 1,00,000।
1: बात हुई ना कुछ, हीरो से बढ़कर तो आपकी जुबान है।
0: और मेरी जुबान से बढ़कर आप।

दीवाना दीवाने को समझाने दो।

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो।

इंद्र आरती को उसके माजी से निकालना चाहता था, लेकिन वो मुड़ मुड़कर अंधी आंखों से अंधेरा माजी टटोलती थी। इंद्र की आवाज में उसे शून्यता ही शून्यता सुनाई देती थी।

तालियों के शोर में एक गुमसुम खामोशी भी थी, एक ऐसी खामोशी जो घटाओं के बरसने से पहले सुनाई देती है। आरती की छलकी हुई आंखों में वो खामोशी यूं ठहर गई थी जैसे कह रही हो, अब के न सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के न सावन बरसे।